हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं, 102.6। 5:56 हुए हैं। लीजिए अब लेते हैं एक रूपरेखा उन कार्यक्रमों की जो अब से लेकर दिन भर तक आप आकाशवाणी रेनबो चैनल पर सुनेंगे।

अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनिएगा हिंदी में समाचार। इसके बाद भावना नायर होंगी स्टूडियो में और आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।

सुबह के 7 बजे एक बार फिर से आप समाचारों में जुड़ेंगे। इसके बाद निखिल कुमार लेकर आएंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। इस सूचनाबद्ध कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी जाएगी चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म वर्षगांठ पर, और इसके अलावा जन्म वर्षगांठ पर ही लोकमान्य तिलक को करेंगे हम श्रद्धा सुमन अर्पण इसी कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जो कि लेकर आएंगे निखिल कुमार। इसके बाद पुनः भावना नायर होंगी हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, तरोताज़ा शहर की घटनाओं पर आधारित इस कार्यक्रम को सुनिएगा सुबह 8:02 से।

निखिल कुमार एक बार फिर होंगे हमारे साथ स्टूडियो में आकाशवाणी रेनबो पर, जिसमें आप सुनिएगा सुबह के 9:02 से दिल के तराने, गाने नए पुराने।

शलिका कपूर लेकर आएंगी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक। हमारे इस नियमित वेस्टर्न म्यूजिक प्रस्तुति में आज आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आवर 10:02 से शलिका कपूर के साथ। रंजन अरनेजा लेकर आएंगे बॉलीवुड ट्रेल्स 11:02 से। शलिका कपूर के साथ ही एक बार फिर से जुड़ेंगे वेस्टर्न म्यूजिक पर हमारे नियमित एक और प्रस्तुति प्लेट कूल में। इसके बाद रंजन अरनेजा से ही सुनेंगे मेरा वाला सॉन्ग, रिक्वेस्ट सॉन्ग पर ये कार्यक्रम हमारा आधारित रहेगा 1:02 से। दोपहर 2:02 से जुड़िएगा मुनीश जौली के साथ कार्यक्रम आशियाना में। इसमें हम एक प्रायोजित कार्यक्रम भी पेश करेंगे एनसीईआरटी। इसके बाद मीना जैन से सुनिएगा रेडियो डॉक्टर। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में आप जुड़ेंगे हमारे साथ 3:00। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो अब से लेकर दिन भर आप सुनेंगे आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुबह के 6:00 को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन।

में बदलना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। भारत के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्जानोवस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, जो कि गर्व की बात है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलीपींस के मनीला में कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री दी गई। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आयुष आहार से प्रेरित स्वस्थ आहार प्रथाओं को बढ़ावा देना है। चीन के चांगजोऊ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी संधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 पर शुरू होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इस बार इस प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यही सत्य वचन है कि सत्य की खोज में इंसान सब कुछ करने को हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन सत्य आखिर क्या है? अगर हम इंसानों को इसका बोध हो जाए तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सत्य स्वयं तुम्हें ढूंढ लेगा। क्योंकि सत्य यही है कि हम सब ईश्वर के द्वारा उसके हाथों से और उसकी समानता में बनाई गई वो रचना है जिससे वो प्यार करता है। उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और दोस्तों, जैसे ही हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगते हैं, हमें अपने आप ही सत्य का ज्ञान प्राप्त होने लगता है।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सत्य जान लेने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम एक नई सृष्टि बनकर अपने प्रभु की महिमा करोगे और इस बात का भी अंगीकार करोगे कि सब नामों में वही श्रेष्ठ है और उसके नाम से ही शांति और मुक्ति प्राप्त होती है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब तुम्हारा मन व्याकुल हो, परेशान हो और तुमको कोई रास्ता न सूझे, तब तुम प्रभु का नाम लेना और प्रार्थना करना और प्रभु से सहायता मांगना, क्योंकि यही सत्य वचन है कि प्रभु प्रार्थनाओं का सुनने वाला और उसका जवाब देने वाला जीवित प्रभु है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जितनों ने प्रभु पर भरोसा किया, उनके आंसुओं को पोंछकर प्रभु ने उनके जीवन में भरपूर आनंद और खुशियाँ भर दी।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें मैसेज करके जरूर बताएं। मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, सुप्रभात। 23 जुलाई की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। हर सुबह ना अपने साथ एक बड़ी ही खूबसूरत रोशनी नहीं लाती, वह हमारे भीतर एक नई रोशनी भी जगाती है। और वही रोशनी आज ये 23 जुलाई गुरुवार की सुबह जगा रही है। बस आपको समझने और एहसास करने की जरूरत है। रात चाहे ना दोस्तों कितनी भी लंबी रही हो, मन चाहे कितनी भी उलझनों से भरा हुआ रहा हो, अगर सुबह उठकर ना मुस्कुराकर अपना दरवाजा अगर वो खटखटाती है ये प्यारी सी सुबह, तो उसका मतलब है कि जिंदगी अभी भी आप पर भरोसा करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी ना दुनिया बदलने से पहले हमें अपने मन को बदलना पड़ता है, क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले जो अंदर की शांति है ना, वो बड़ी जीतनी जरूरी होती है। मन में चाहे बहुत कुछ चल रहा हो, बहुत सारी बातें चल रही हो, रात शायद ऐसा लग रहा हो कि कट ही नहीं रही हो, लेकिन अगर ये मन में शांति आ जाए, ये लगना शुरू हो जाए कि एक रात के बाद सुबह जरूर होती है, तो बस वहीं से ही उस मन की शांति की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि पता है क्या होता है कि गुस्सा उस आग की तरह होता है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। इसलिए कभी भी रिएक्शन देने से पहले ना स्वयं को शांत होने का अवसर दीजिएगा। अपने मन में एक बार ही कहते हैं ना वो रूल होता है, काउंटडाउन शुरू कर दीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब भी कुछ शुरू होने वाला होता है तो हम काउंटडाउन कहते हैं, तो बस वही, अगर आप वो काउंटडाउन शुरू कर देंगे या 1 से 10 तक गिनती या 10 से 1 तक गिनती, तो देखिए शायद एक मैजिक ट्रिक आपको दे रही हूँ, बहुत कुछ बदल सकता है। सुनते रहिए 102.6 FM, बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है 23 जुलाई गुरुवार के दिन, जो कि एक बेहद खूबसूरत सुबह लेकर आया है। चलिए इस प्यारे से गाने के साथ शुरुआत करें।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो बस अब बहुत हो गया है, अब नहीं होगा आगे और अब सब मेरे खिलाफ जा रहे हैं, फिर मेरी कोई बात नहीं समझता है। ऐसे पल ना जीवन में डर पैदा करते हैं और किसी न किसी के जीवन में कभी न कभी ज़रूर आते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो, रिश्तों में हो या फिर अपनों के बीच हो। धीरे धीरे मन शिकायतों से भरने लगता है, गुस्सा भी जरूर आता है, वाजिब भी है गुस्सा आएगा क्योंकि मन अशांत है। ऐसा लगता है कि अगर अभी कुछ ना हुआ ना तो शायद मैं टूट जाऊंगा, और टूटा नहीं तो आक्रोश में शायद कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो स्थिति के लिए ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, यही जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला ना मेरे दोस्त अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, लेकिन शांत मन में लिया गया फैसला हमारी सबसे बड़ी ताकत। आज की कहानी भी इसी पर है। ये गाना सुनिए और फिर आपको वो प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। जुड़े रहिए 102.6 FM के साथ। आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: चलिए वो कहानी सुनाने का समय आ गया है। कहानी उस पर कि गुस्से पर कैसे पाया काबू एक शिष्य ने। एक शिष्य जाता है अपने गुरु के पास बहुत परेशान। कहता है, गुरुजी मुझे हर बात पर गुस्सा आता है, लोग मुझे समझते नहीं, हर जगह मेरे साथ गलत ही होता रहता है। गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने पानी से भरा एक गिलास उसके हाथ में थमा दिया और कहा, इसे पकड़कर खड़े रहो। 5 मिनट बीते, सब ठीक था। 20 मिनट बाद हाथ में दर्द शुरू हो गया। 1 घंटा बीता, हाथ कांपने लगे। शिष्य बोला, गुरुजी अब यह गिलास भारी लगने लगा है। गुरुजी ने पूछा, गिलास का वजन बदला क्या? शिष्य बोला, नहीं। फिर गुरुजी बोले, बदला सिर्फ इतना है कि तुम इसे बहुत देर से पकड़े हुए हो। फिर मुस्कुराकर बोले, गुस्सा भी बिल्कुल वैसा ही होता है, अगर कुछ मिनट के लिए आए तो सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन अगर उसे घंटों दिनों महीनों तक पकड़कर रखोगे ना, तो उसका वजन बढ़ता नहीं लेकिन वह तुम्हें तोड़ देता है। इसलिए कुछ बातें ना छोड़ देना भी जरूरी होता है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, और कभी कभी मन को कहना पड़ता है, मैं सही समय पर सही बात करूंगा लेकिन अभी मैं शांत रहूंगा। इसी शांति में कभी कभी भलाई होती है, क्योंकि जब मन बहुत आक्रोशित होता है, क्रोध से भरा होता है, तब बहुत सी ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो शायद उस वक्त नहीं निकलने चाहिए, और उसके बाद एक गिल्ट रहता है और एक रिग्रेट रहता है, जिसको जो बोले गए शब्द है ना, वो कहते हैं ना, वापस नहीं आते। तो कभी कभी गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते और फिर उसके बाद उसके बारे में बुरा लगता रहता है और फिर वो मन में और भार इकट्ठा होता रहता है। इसलिए कभी कभी जब गुस्सा आए तो उस समय शांत रहना एक कला है, और उस कला को आकर अगर आपने उस पर महारत हासिल कर ली तो समझिए कई बार टूटते हुए रिश्ते बच जाते हैं।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि अगर गुस्सा आया और मैं शांत रह गया तो ये तो मेरी कमजोरी होगी। शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। क्योंकि पता है क्या होता है कि प्रतिक्रिया देना यानी रिएक्शन देना बहुत आसान है, लेकिन परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हुए उसका जवाब देना सही।

ही समय पर जवाब देना, यही परिपक्वता है। पता है क्या होता है, पानी शांत जब रहता है, आपने देखा है, स्टैटिक रहता है, तभी उसमें आपको अपना सबसे ज़्यादा चेहरा साफ दिखाई देता है। और ऐसे ही जब मन शांत होता है ना, तभी जीवन में सही दिशा भी दिखाई देती है। तो मेरे दोस्त, शांत रहना बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं है। अगर आपको लगे ना कि गुस्सा आ रहा है और ये तो सोशल मीडिया का समय है, धैर्य का मतलब चुप रहना नहीं होता, धैर्य का मतलब होता है सही समय पर खुद को संभाल कर रखना। क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट में गुस्सा, 2 मिनट में पोस्ट और 5 मिनट में पछतावा। लेकिन रिश्ते शब्दों से ही बनते हैं, और ये जब शब्द टूटते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो शांत रहना, धैर्य रखना।

तो दोस्तों, आज की सुबह सिर्फ आपको एक बात याद करा रही है कि दुनिया हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती, लेकिन आपका मन आपके हिसाब से जरूर चल सकता है। उसे शिकायतों का घर मत बनाइए, उम्मीदों का घर बनाइए, क्योंकि शांत मन से लिया गया हर फैसला जीवन को सही दिशा देता है। अगला कार्यक्रम लेकर आएंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। निखिल, फिर आपसे 1 घंटे बाद होगी मुलाकात एक और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ, जो कि होगा पार्ट 2। तब तक के लिए हर सुबह एक नया विश्वास, एक नई दिशा और अपने बेहतर कल की ओर एक नया कदम बढ़ाइए। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और यही याद रखिए कि मन को शांत कैसे रखना है। सुप्रभात, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स।

नमस्कार। सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मा सानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन चुका है। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सेल्जानोवस्का दावाकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति

महिला हैं और ये गर्व की बात है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलीपींस के मनीला में कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सीय सहायता की पहली खेप भेजी है। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री दी गई है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आयुष आहार से प्रेरित स्वस्थ आहार प्रणालियों को बढ़ावा देना है। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और भारत तथा जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

इस बहुत ही खूबसूरत सी ट्रैक के साथ शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आपके दोस्त आरजे निखिल के साथ में। और जब हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो आपको बताते हैं उन प्रमुख घटनाओं के बारे में जो आज के दिन के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, कुछ खास का हम आपके सामने जिक्र करते हैं। तो आपको बता दें कि वर्ष 1829 में आज का दिन था जब पहली बार अमेरिका में विलियम ऑस्टिन बर्ट ने टाइपोग्राफर यानी कि टाइपराइटर का प्रारंभिक रूप सामने रखा और उसका पेटेंट कराया था। वर्ष 1877 में आज के दिन ही हवाई में पहली बार टेलीफोन और टेलीग्राफ की लाइन शुरू हुई। वर्ष 1881 में आज के दिन ही दुनिया के सबसे पुराने खेल परिसंघ अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना हुई थी। और आपको हम बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार की बिक्री की थी। वर्ष 1952 में आज के दिन ही मिस्र में सैन्य क्रांति के बाद राजा फारूक को सत्ता से हटाया गया। और वर्ष 1998 में अमेरिका ने 7 भारतीय वैज्ञानिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। वर्ष 2001 में आज के दिन ही मेघावती सुकर्णोपुत्र इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी थी। और आज का ही वो दिन था जब 2008 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने राष्ट्रपति रामवरण यादव को अपना इस्तीफा सौंपा था। आपको ये भी हम बता दें कि वर्ष 1993 में आज के दिन ही भारत ने स्वदेशी संचार उपग्रह NSAT-2B का सफल प्रक्षेपण किया था। और आज के दिन ही वर्ष 2015 में नासा ने पृथ्वी के समान ग्रह केपलर 452b की खोज की घोषणा की थी। तो ये ऐसी आज के दिन की प्रमुख घटनाएं थी जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया। प्रोग्राम फिलहाल शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आपके दोस्त आरजे निखिल के साथ में। एंजॉय कीजिए इस और एक ब्यूटीफुल से ट्रैक को FM रेनबो 102.6 पर।

इस बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक को आप सुन रहे थे आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर। और श्रोताओं, आज आपको हम ये बता दें कि मना रहे हैं हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, जो कि हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे मनाने का क्या कारण था, इसके बारे में बात करते हैं। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रेडियो की एक अपनी ख़ास पहचान है। देश के अधिकतर इलाकों, या यूं कहें कि दूर दराज के इलाकों तक खबरें, शिक्षा

और मनोरंजन पहुंचाने वाला रेडियो भारत के इतिहास में अपनी एक लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत आज़ादी से पहले हुई थी। साल 1923 में आज के दिन ही मुंबई की रेडियो क्लब ने देश में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया था। वैसे तो ये एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन यहीं से भारत में प्रसारण की नींव पड़ी और इसके कुछ महीनों बाद कोलकाता में भी रेडियो क्लब की शुरुआत हुई और इसके बाद लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का ये माध्यम धीरे धीरे इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे देश में छा गया। और फिर 23 जुलाई 1927 को भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई और इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी कि IBC ने मुंबई और कोलकाता में आधिकारिक रूप से रेडियो सेवा शुरू की और यही वजह है कि हम हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में कई सारी चुनौतियां भी सामने आई थी, लेकिन साल 1930 में सरकार ने रेडियो प्रसारण को अपने नियंत्रण में लिया और इसके बाद इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम दिया और फिर रेडियो का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ और 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया और साल 1956 में आकाशवाणी का नाम अपनाया गया, जो आज भी हम सभी के बीच में बेहद लोकप्रिय है। और आपको हम ये भी बता दें कि वर्ष 1957 में विविध भारती की सेवा की शुरुआत हुई, जो कि लोगों के दिलों की धड़कन मानी जाती है। और रेडियो सिर्फ आप तक मनोरंजन नहीं पहुंचाता, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी भी पहुँचाता, जैसे मैंने आप तक पहुँचाई है। फिलहाल रेडियो पर एक बड़ा अच्छा सा गाना है जो मुझे बड़ा पसंद आता है, तो आपके लिए प्ले करता हूँ। इसे आप सुनिए रेनबो पर।

और शुद्ध आप समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले आपके सामने हम जिक्र करते हैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का, जिनकी आज जयंती है। वे भारत के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, और हालांकि उनका नाम था पूरा चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, और किशोरावस्था में ही असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने पर उन्होंने अदालत में अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीनता और पता जेल बताया था, जिसके बाद वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में एक प्रमुख नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभाई, और काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था उसके बाद संगठन को पुनर्गठित किया, और उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। उन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, और उनका दृढ़ संकल्प था कि अंग्रेजों के हाथ कभी भी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब हम वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, वहां पर वो अंग्रेज पुलिस से घिर गए, और उन्होंने अपनी पिस्टल की अंतिम गोली स्वयं पर चलाई और अपने संकल्प को निभाया। आज भी उनका जो समर्पण था, जो साहस था, जो त्याग था और अदम्य देशभक्ति, वो देश के युवाओं के लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। और श्रोताओं को बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, जो कि भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और राष्ट्रवादी नेता थे। आज उनकी भी जयंती है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी नेताओं के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और लोकमान्य की उपाधि जनता ने उनके प्रति सम्मान के रूप में उन्हें दी। उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये ऐसा नारा था जिसने देशवासियों में आज़ादी की भावना को प्रबल किया, और लोकमान्य तिलक ने शिक्षा के प्रसार के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में अपना योगदान दिया। उसके बाद केसरी और द मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार भी किया। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को सार्वजनिक रूप से मना करके देश के लोगों को संगठित किया, और इस आंदोलन को ऐसे जन आंदोलन का रूप दिया जिसने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपसे बात होंगी और भी, और उसके पहले आपके लिए प्ले करेंगे एक गाना, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहें रेनबो पर।

0: से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है। तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

इस बात में तो कोई डाउट नहीं हो सकता है कि आपका हमसे और हमसे और हमारा आपसे मिलने का हमेशा दिल करता है। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि और कौन सी हस्ती को हम याद कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज ही जयंती है ताराशंकर बंदोपाध्याय की, जो बंगला साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार और साहित्यकार थे। आज उनकी जयंती है। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में ग्रामीण जीवन, सामाजिक परिवर्तन, मानवीय संबंधों और बंगाल की लोक संस्कृति का अत्यंत सजीव चित्रण किया। उनकी प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करते हैं तो गणदेवता, हंसुली, बांकेर, उपकथा और आरोग्य निकेतन है। गणदेवता के लिए उन्हें 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ताराशंकर बंदोपाध्याय भारतीय साहित्य में अपने योगदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और आज भी बंगला साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर गिने जाते हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, चिकित्सक और समाज सेविका थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA की रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया और स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की चिकित्सा सेवा और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके राष्ट्रप्रेम, साहस और सेवाभाव के लिए उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और आज भी वे भारतीय महिलाओं के साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की प्रेरणा की प्रतीक के रूप में भी जानी जाती हैं। फिलहाल एक और बहुत ही खूबसूरत संगीत आपके लिए आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को। इसके बाद बातें होंगी और भी, और गीत होंगे आपके लिए और भी प्यारे प्यारे।

और श्रोता, आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, हास्य कलाकार, गायक और निर्माता महमूद को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हालांकि उनका नाम था महमूद अली और हम सभी उन्हें महमूद के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1950 से लेकर के 1970 के दशक के दौरान अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग, बहुमुखी अभिनय से दर्शकों के बीच में विशेष पहचान बनाई थी। पड़ोसन, गुमनाम, बॉम्बे टू गोवा, कुंवारा बाप, प्यार किए जा जैसी अनेक लोकप्रिय फिल्में रही हैं उनकी, जिसमें उन्होंने अपनी यादगार भूमिकाएं निभाई। और फिल्म कुंवारा बाप का निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने किया था। और आपको बता दें कि उन्होंने सामाजिक संदेश को मनोरंजन के साथ प्रस्तुत किया और हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय हास्य अभिनेताओं के तौर पर उनको गिना जाता है। उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि लगभग 3 दशक तक जो उनका लंबा करियर चला, उतने करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया और हर बार एक ऐसी भूमिका लोगों के सामने रखी जो हमेशा लोगों के जहन में बनी रही। और फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता 4 बार उन्हें पसंद किया गया। वर्ष 1961 में आई ससुराल उनकी करियर की सबसे अहम फिल्म मानी जाती है, जिसमें उन्होंने बतौर हास्य कलाकार काम किया था।

0: और शायद आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को, जिनकी आज मतलब जिनका आज जन्मदिन है। देश के जाने माने वायलिन वादक, संगीतकार और संगीत निर्देशक रहे हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के महान कलाकारों में से गिने जाते हैं। उन्होंने वायलिन वादन में अपनी अद्भुत प्रतिभा से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाई और भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी संगीत से जोड़कर कई नए प्रयोग किए और अनेक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया। उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई सारे पुरस्कारों से उन्हें अलंकृत किया गया। फिलहाल समय है ब्रेक का, उसके बाद आपके लिए गीत। आप बने रहें रेनबो पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

हर्षित हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं जहां पर हम आपको खेल जगत की खबरों के बारे में बताते हैं। तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच में पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज खेला जाएगा हरारे में, और ये मैच बड़ा ही ख़ास होगा क्योंकि भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा पूरा करके लौटी है। तो ऐसे में ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत की जो टीम है वो कहीं ना कहीं अपनी खेल की जो प्रतिभा है उसे और ज़्यादा उसे निखारे। और ये मैच शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार शाम को 4:30 बजे। वहीं वेस्टइंडीज़ और न्यूजीलैंड के बीच में जो मुकाबले हो रहे थे एक दिवसीय क्रिकेट में, उसमें पांचवें एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज़ ने 2 विकेट से जीत हासिल की है। पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 268 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज़ ने जब अपनी दूसरी पारी खेली तो उन्होंने 48 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बना लिए थे। और श्रोताओं आपको बता दें कि चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। फिलहाल मैं आपसे लूंगा कुछ देर के लिए अनुमति, आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर। एंजॉय कीजिए इस एक और ब्यूटीफुल ट्रैक को रेनबो पर।

पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसे पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अपन 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। उत्तर मासेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्विस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, यह गर्व की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने फिलीपींस के मनीला में कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी। 4.5 टन चिकित्सा सामग्री दी गई। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली के आयुष भवन में प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आयुष आहार से प्रेरित स्वस्थ आहार प्रथाओं को बढ़ावा देना है। चीन के चांगझाऊ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 पर शुरू होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। नमस्कार।

0: आकाशवाणी
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। यह है 102.6 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और एक बार फिर से अपने वादे के अनुसार मैं हाजिर हूँ आपकी प्यारी भावना। थर्सडे यानी कि थ्रिलिंग थर्सडे है, 23 जुलाई का दिन है, वीकेंड अब बस दस्तक देने ही वाला है। तो जरा मुस्कुरा दीजिए, एक बार बड़ा जोर का ठहाका लगा दीजिए। अगर सोमवार से बुधवार तक आपका सफर खुशहाल तरीके से निकल गया हो तो यकीन मानिए मंजिल अब दूर नहीं है। लेकिन ये जो आजकल दिन चल रहे हैं ना, दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल इम्तिहान से भरे हुए दिन हैं, क्योंकि ट्रैफिक ने परीक्षा ली हुई है। क्योंकि कहीं प्रदर्शन तो कहीं मेट्रो स्टेशन घंटों तक बंद हैं, सड़कों पर लंबी लंबी कतारें, ऑफिस पहुंचने की जद्दोजहद। लेकिन दोस्त, यही तो है हमारी दिल्ली, रुकती है, संभलती है और फिर उसी रफ्तार से दौड़ पड़ती है। और ये मौसम, हाय ये मौसम बड़ा फिल्मी सस्पेंस बना के रखा है इस मौसम ने। बादल आते हैं, लगता है बस अब बरसोगे, अब बरसेंगे, लेकिन फिर सूरज मुस्कुराकर कहता है अरे अभी नहीं। मौसम विभाग चाहे कुछ भी कह ले, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं। कभी धूप कभी बादल, बिल्कुल हाइड एंड सीक चल रहा है आसमान में। अभी ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले घने घने बादल छा गए थे, ऐसा लग रहा था बस अभी बरसे, लेकिन फिर से धूप आ गई है। लगता है कि बारिश बस आने वाली है और अगले ही पल लगता है कि पूरा सीन बदल गया है ना, फिल्मी सीन बिल्कुल। तो अगर आज आप घर से निकल रहे हैं तो छाता भी रख लीजिएगा और धूप का चश्मा भी रख लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली का मौसम ना आजकल किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करता। तो चलिए, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का कारवा आगे बढ़ाते हैं। पूरे एक घंटे में आपके साथ रहने वाली हूँ, बातें होंगी, मुस्कुराहटें होंगी, मौसम का हाल भी मिलेगा, ट्रैफिक की अपडेट भी होगी, दिल्ली में क्या कुछ नया हो रहा है, कौन सी बात आपके लिए ज़रूरी है, और रेडियो की गर्मजोशी तो आपके साथ लगातार बनी ही रहेगी। तो दिल्ली जब सबसे ज़्यादा व्यस्त होती है ना, किसी के हाथ में टिफ़िन होता है, किसी के कंधों पर लैपटॉप होता है, किसी के स्कूल बस छूटने वाली होती है और कोई मेट्रो पकड़ने की जल्दी में होता है, ऐसे हर सफ़र में हम आपकी आवाज़ बनकर रहेंगे आपके साथ। हमें आप अकेला मत छोड़िएगा और हम आपको कहीं भी बोर नहीं होने देंगे। मेट्रो में आगे अपनी जगह संभाल लीजिए इस समय और अगले एक घंटे बस यही कहिए हमारे साथ कि All is well.

दोस्तों जरा सोचिए, सुबह की शुरुआत अगर किसी अपनी सी आवाज़ से हो, रास्ते में ट्रैफिक की सही जानकारी मिल जाए, मौसम का हाल भी पता चल जाए, कोई प्यारा सा गीत मन को छू जाए और ज़रूरी खबरें भी भरोसे के साथ मिलती रहे, तो यकीन मानिए ये सिर्फ प्रसारण नहीं बल्कि एक रिश्ता है। आज है 23 जुलाई। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। आज ही के दिन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसने भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की मजबूत नींव रखी। फिर समय के साथ यही सफर आगे बढ़ता रहा। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना, 1956 में इसे आकाशवाणी नाम मिला और 1959 में दूरदर्शन ने भारतीय प्रसारण को एक नई पहचान दी। आज आकाशवाणी एक सिर्फ रेडियो नेटवर्क नहीं बल्कि देश की धड़कन है। 591 प्रसारण केंद्र, 23 भाषाएं, 182 बोलियां और लगभग पूरे देश की पहुंच। यही वजह है देश के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलने के बावजूद एक ही भावना से जुड़ जाते हैं। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन प्रसारण की आत्मा नहीं बदली।

एफएम आया, डिजिटल रेडियो आया, मोबाइल ऐप, यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जुड़ गए। लेकिन आज भी जब मन की बात रेडियो का प्रसारण होता है तो करोड़ों लोग एक साथ इसे सुनते हैं। यह साबित करता है कि रेडियो आज भी लोगों के दिल तक पहुंचने का सबसे सहज और भरोसेमंद माध्यम है। और हाँ, हम जैसे रेडियो वालों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि हर दिन हर सुबह हम सिर्फ माइक्रोफोन के सामने नहीं बैठते बल्कि लाखों श्रोताओं के साथ एक रिश्ता निभाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े हुए वर्तमान और पूर्व साथियों को, तकनीकी टीम को और सबसे बढ़कर आप सभी श्रोताओं को दिल से शुभकामनाएं। आप सुनते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी असली फ्रीक्वेंसी है। 102.6 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

दोस्तों, इस समय अगर आप मेट्रो से ऑफिस जाने की तैयारी में हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए बेहद ज़रूरी अपडेट है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक कई मेट्रो स्टेशनों की एंट्री और एग्जिट बंद कर दी है। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवातीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन शामिल है। हालांकि राहत की बात यह है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन इन स्टेशनों पर फिलहाल एंट्री और एग्जिट की अनुमति नहीं होगी। तो अगर आपका सफर इन स्टेशनों से होकर गुजरने वाला है तो घर से निकलने से पहले अपना रूट एक बार जरूर चेक कर लें। जहां संभव हो ऑल्टरनेटिव मेट्रो स्टेशन या दूसरे परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें और थोड़ा ज्यादा समय निकालकर जरूर घर से बाहर निकलें। हम भी लगातार आपको ट्रैफिक और मेट्रो से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देते रहेंगे। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो, दिल से दिल तक, और मैं हूं आपके साथ भावना। सफर सुरक्षित रखिए, धैर्य बनाए रखिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है।

जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप जागरूक रह सकते हैं तो बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। काम की खबर है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। जब भी हम कैंसर का नाम सुनते हैं, एक मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है और समय पर अगर जांच हो जाए ना दोस्तों, तो जीवन बचा सकती है। इसी सोच के साथ ना दिल्ली सरकार और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ने 25 से 27 जुलाई तक भारत मंडपम में एक निःशुल्क यानी कि फ्री कैंसर स्क्रीनिंग शिविर आयोजित कर रहा है। सुबह 10 बजे से ये शिविर शुरू होने वाला है और खासकर महिलाओं के लिए ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर की मुफ्त जांच, साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टरों से परामर्श और कैंसर से बचाव और शुरुआती पहचान से जुड़े कई जागरूकता सत्र यहाँ होने वाले हैं। अगर आप या आपका परिवार की कोई भी महिला इस सुविधा का लाभ उठा सकती है तो ये जानकारी उनसे जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि समय पर की गई जांच ना जिंदगी को एक नई उम्मीद दे सकती है, और खासकर जब बीमारी इतनी गंभीर हो तो समय पर अगर जांच हो जाए, कोई भी आप ऐसे लक्षण हैं जो शायद आपको ना पता हो लेकिन आप जानना चाह रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है शरीर में, और जब इस तरीके के शिविर लगते हैं तो ज़रूर उसका लाभ उठाया जा सकता है। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूँ आपके साथ भावना।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

दोस्तों, अगर आप वीकेंड पर कुछ प्लान कर रहे हैं तो हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं कि ऐसा अगर आप नेचर लवर हैं तो बहुत एंजॉय कर सकते हैं इसे। क्योंकि वैसे तो आप जब भी तितलियों की बात करते हैं ना, तो रंग बिरंगी पंखों वाली तस्वीर आँखें आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तितलियों के दूर के रिश्तेदार मॉथ्स यानी पतंगे भी उतनी ही दिलचस्प होते हैं। फर्क बस इतना सा होता है कि ज़्यादातर मॉथ्स रात में सक्रिय रहते हैं और इन्हें बटरफ्लाइज ऑफ द नाइट भी कहा जाता है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि 25 जुलाई यानी कि शनिवार के दिन को पहली बार दिल्ली चिड़ियाघर में मॉथ वॉच का आयोजन किया जा रहा है। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले इस खास अनुभव में आप अलग अलग प्रजाति के मॉथ्स को करीब से देख पाएंगे और जानेंगे कि ये सिर्फ रोशनी के आसपास मंडराने वाले कीड़े नहीं, बल्कि प्रकृति के बेहद खास हिस्से हैं। दरअसल आपको बताते हैं, मॉथ्स कई पौधों के पॉलिनेशन में मदद करते हैं, कई पक्षियों और दूसरे जीवों के लिए भोजन बनाते हैं और जंगलों के पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और आपको बताऊं, दुनिया में मॉथ्स की 1.6 लाख से ज़्यादा ब्रीड्स प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी तितलियों से भी कहीं ज़्यादा। तो अगर आपको प्रकृति, फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी है तो 25 जुलाई की ना ये शाम आपके लिए बहुत खास हो सकती है। कौन जानता है कि रात के अंधेरे में आपको प्रकृति का एक बिल्कुल नया और खूबसूरत रंग देखने को मिले। साथ ही आपको बताऊं कि अगर आप इस अनोखी और दिलचस्प दुनिया से रूबरू होना चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा ticket.nzpnewdelhi.gov.in पे। एक बार फिर रिपीट करूंगी, ticket.nzpnewdelhi.gov.in पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। सुनते रहिए 102.6 FM, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: दिल्ली वालों एक बात तो है, हम ना ये सब चाहते हैं कि दिल्ली में सांसें थोड़ी आसान हो जाए, समझ गए ना? अब सांसें थोड़ी और साफ हो जाए तो कैसे हो सकती हैं? हम सभी प्रयास कर रहे हैं कुछ कुछ मिलके, एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चल रहा है। तो सर्दियों में क्या होता है कि पोल्यूशन, गर्मियों में धूल और

मानसून के बीच कई जगहों पर निर्माण कार्य तेजी से आगे चल रहा है, लेकिन होने क्या वाला है कि दिल्ली की हवा पर अब नजर रखने का तरीका जो है वो बदलने जा रहा है। इस साल के आखिर तक राजधानी के करीब 550 यानी कि 550 बड़े निर्माण स्थलों पर AI आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। तो क्या कहते हैं ना कि ये जो स्मार्ट कैमरे हैं वो पूरी तरीके से आपके निर्माण स्थलों की निगरानी करेंगे, है ना। अब आपको सुपरवाइजर रखने की ज़रूरत नहीं है, AI सब काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैमरा आखिर प्रदूषण कैसे पकड़ लेगा। हाँ भाई, वाजिब सवाल है। दरअसल होगा क्या कि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचेंगे, ये कैमरे देखेंगे कि निर्माण स्थल पर धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव हो रहा है या नहीं, निर्माण सामग्री ढकी हुई है या नहीं, ट्रकों के पहिए साफ किए जा रहे हैं या नहीं, और अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो तुरंत ये AI अलर्ट कर देगा। यानी अब प्रदूषण पर सिर्फ इंसानी निगरानी नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नजर रखने वाला है। दिल्ली जैसे शहर में जहां हर साल एयर क्वालिटी एक बड़ी चुनौती बन जाती है, वहां तकनीक का ये इस्तेमाल आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव जरूर ला सकता है। उम्मीद है कि आने वाले मौसम में सिर्फ मौसम की चर्चा होगी, प्रदूषण की नहीं। बिल्कुल सही बात है। और जब हम प्रदूषण से इतने परेशान रहते हैं तो फिर गवर्नमेंट भी कोई ना कोई ऐसे उपाय ढूंढ रही है ताकि इस प्रदूषण को कैसे कर्ब किया जा सके। सुनते रहिए 102.67। इट्स अ थर्सडे मॉर्निंग, वीकेंड इज वेरी नियर। डू नॉट वरी, सब ठीक हो जाएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 102.67 रेनबो, दिल से दिल तक।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: तो दोस्तों, अगर आप किसी ढाबे पर चाय पी रहे हो या किसी लोकल मार्केट में खरीदारी कर रहे हो, QR कोड स्कैन किया लेकिन तभी नेटवर्क आया और फिर शुरू होता है, जरा थोड़ा रुकिएगा भैया, नेटवर्क नहीं आ रहा। लेकिन अब शायद ये परेशानी जल्द खत्म होने वाली है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट किया जा सकेगा। यानी मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो, इंटरनेट अगर बंद हो, फिर भी छोटे डिजिटल भुगतान संभव हो पाएंगे। ये सुविधा खास तौर पर उन इलाकों के लिए बड़ी राहत देगी जहां नेटवर्क की ज्यादातर दिक्कत रहती है। आपको बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है और अब उसकी कोशिश है कि डिजिटल भुगतान सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि हर गांव और हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचे। यानी भविष्य में शायद नेटवर्क नहीं है बहाना भी पुराना हो जाएगा। सुनते रहिए 102.6 FM। मैं हूँ आपके साथ भावना।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा, बहुत कम दिन रह गए हैं, तो अपना ITR जरूर भर दीजिएगा। तो आपके लिए ये जानकारी बेहद ही अहम है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे बताने की क्या जरूरत है, लेकिन इस बार नियम थोड़ा अलग है। ITR भरते समय आपको अपने सभी सक्रिय बैंक खातों की सही जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, अगर किसी खाते में से ब्याज मिला है तो उसे अपनी आय में शामिल करना जरूरी है। गलत या अधूरी सूचना देने पर आपका रिफंड अटक सकता है या फिर आयकर विभाग आपसे जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो रिटर्न भरने से पहले एक बार अपने बैंक खातों, ब्याज की जानकारी और दस्तावेज जरूर जांच लें, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी ना आगे चलकर काफी समय और परेशानी भी बचा सकती है। तो आप सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो मेरे साथ यानी भावना के साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। वक्त हो चला है 8:52।

0: दोस्तों, कैसे एक घंटा आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है कि आज की सुबह आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लेकर आई होगी। सफर थोड़ा आसान जरूर हुआ होगा, दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई होगी। याद रखिएगा कि दिल्ली की रफ्तार ना कभी थमती नहीं है। मौसम चाहे जितने रंग बदल ले, जाम चाहे जितना भी लंबा हो, मंजिल हमेशा उनका इंतजार करती है जो चलते रहते हैं। मैं हूँ आपके साथ भावना। अगला कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने निखिल, जिसमें आप नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक सुनेंगे, साथ ही रेट्रो का तड़का भी रहने वाला है। सुनते रहिए 102.6 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, और याद रखिएगा कि वीकेंड बस अब दूर नहीं, बस आ गया। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।
1: हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हु

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सेल्जानोवस का दावकोवा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, ये गर्व की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलीपींस के मनीला में कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। भारत ने इबोला से बचाव के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज शाम 4:30 बजे हरारे में होगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हो रहे हैं।

0: गारे गारे
1: गारे बड़े दे
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये हम को बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह दिए ये सूर ये इन्ना आया है तो।

0: चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पेरा है ना, या घोड़ा बोला या चतुरा बोला,
1: एक चतुर नार।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: just love me.
1: और श्रोताओं को बता दूं, मेरे जाने के बाद आप कौन से खास प्रोग्राम सुन पाएंगे। तो आज रेडियो डॉक्टर जो दिन में 3 बजे प्रसारित होगा, उसमें आज का टॉपिक है वेक्टर बॉर्न डिजीज। इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन LHMC से। तो ये प्रोग्राम आप ज़रूर सुनिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। और संदेश टू सोल्जर्स आप सुन पाएंगे मुनीश चौली के साथ में शाम को 4:02 पर। वहीं सिटी लाइट्स होगा शाम को 5:02 पर मीना जैन के साथ में। और इसके पहले जो प्रोग्राम होने उनके आपके उनके बारे में आपको बता दूं, मुनीश चौली के साथ में आप सुनेंगे आशियाना दिन में 2 बजे से। और फिलहाल आपके लिए खास प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं, इसे आप सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। हम लोग बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी का FM रेनबो 102.6। और अभी ये हमारी ये खास पेशकश आपके लिए, सुनिए इसे आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। फिर मिलेंगे।
2: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस बाय एना एप्रिया, Associate Legal Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
3: जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी जूरिस्प्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं, एंड देन वी सी, वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पिक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड, बिकॉज द टर्म इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें। बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड, विच आई ऑल्सो अग्री विथ, सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डज नॉट मीन कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21, जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। और ये मेन प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में, और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है। ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन, सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट।

अंडर से ही एमिनेट करता है. एंड देन टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, देन अगेन आफ्टर स्टॉकहोम इंडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज कन्वेंशंस, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, पेरिस अग्रीमेंट, इन विच मेनी बिग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एग्जिटिंग एंड एंटरिंग इट अगेन एंड अगेन, बट इंडिया हैज बीन कमिटेड टू इट्स प्रिंसिपल्स अंडर पेरिस अग्रीमेंट. देन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, साइट्स एंड बेसल कन्वेंशन, जो वेटलैंड्स की बात करता है. तो ऑल्सो वी नो, तो आफ्टर अडॉप्टिंग ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, वी हैव ऑल्सो एज फार एज पॉसिबल द पार्लियामेंट हैज ऑल्सो अडॉप्टेड इट इन टू आर डोमेस्टिक लॉ. सो दिस इज ज्यूरिस्प्रूडेंस. में वेन वी टॉक अबाउट ज्यूरिस्प्रूडेंस, इट इज ऑल अबाउट लॉ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ राइट बेस्ड मैनर कि कितने तरीके के राइट्स हैं, एनवायरमेंट लॉ कहाँ कहाँ से आ सकता है. सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि लाइक आई मेंशन इन द वेरी बिगिनिंग, उसमें मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे डेवलप हुआ थ्रू अमेंडमेंट्स. बट उसमें सुप्रीम कोर्ट का पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द केसेस, तो इट इज समथिंग विच पीपल से इन एनवायरमेंटल लॉ सर्कल्स कि इफ यू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ एनवायरमेंट लॉ, वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्ती चंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के, वहाँ पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में CRPC जो पहले हुआ करता था, विच इज नाउ BNSS, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास

0: पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजंस हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्सन्स हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है, बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा, कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी, कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कर। थर्ड वाज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ एनजीटी आल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेस बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और लीजिए अब समय है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। भारत 2023 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्जानोस्का दावकोवा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं, ये गर्व की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने फिलीपींस के मनीला में कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। चीन के चांगजोंग में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 पर शुरू होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा

ही दिन में आप बड़े अच्छे चंगे भले हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। आपसे पूछेंगे बॉलीवुड सरताज का सवाल, बट आफ्टर दिस सॉन्ग।

0: जी हाँ, कई बार हमारा मन करता है कि हम देश में हैं या विदेश में हैं, कहीं भी हैं, और अगर काम में कहीं व्यस्त हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक अगर आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो आपका मन करता है कि आप उस काम से लापता हो जाएं और कहीं ब्रेक पर चले जाएं, छुट्टी पर चले जाएं। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ किया है हाल ही में रकुल प्रीत ने, जो बता रही हैं कि उन्होंने पिछले 13 साल से कोई लंबी ब्रेक नहीं ली थी, बिकॉज वो इतनी व्यस्त रही अपने फिल्मी करियर को बनाने में, उसे संवारने में, सजाने में, दैट हार्डली कोई समय मिला। और ऐसी बात कभी शाहरुख खान ने एक दफ़ा कही थी किसी के सामने कि भाई इतना बिजी हूँ, इतना व्यस्त हूँ कि बिल्कुल आराम करने का भी समय नहीं मिलता। तो ऐसे में आई थिंक सरोज खान उस समय उनके आसपास थी, उन्होंने कहा कभी भी ऐसा मत कहिए, क्योंकि जब काम नहीं होगा तो फिर आराम होगा और आप काम के लिए तरसेंगे। खैर, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। और हम अभी बात कर रहे हैं रकुल प्रीत की, तो रकुल प्रीत 20 दिनों के लिए लंबी छुट्टी पर गई, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज You know, it's always interesting to unwind yourself. और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन लंबी छुट्टी के लिए पैसा नहीं है, तो फिर वो एक अलग तरह की परेशानी है। लेकिन अगर आपके पास समय ही नहीं है तो कितना भी पैसा हो तो ये डबल द प्रॉब्लम है। हाँ? तो खैर, अब अपना अपना आप देख लीजिए। सुनिधि चौहान की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना,
1: इश्क तेरा ले।
0: अगर आप हॉलीडे मूड में हैं तो घूमने जाइए, निकल जाइए, मॉनसून का टाइम है।

सुपुत्र तो उसकी देखभाल में लगी हैं और बहुत मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। लेकिन उनकी बड़ी खास फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है, एक था टाइगर, उसके अंदर उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसका आपने नाम बताना है और हो सकता है आप आज बन जाएं बॉलीवुड सरताज। भेजिए इसे, व्हाट्सएप कीजिए इस आंसर को 9868107070 पर। That's 9868107070।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आज है 23 जुलाई 2026 और वैसे आज ही के दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो आप सभी को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और हम सभी से कुछ जानते हैं कि 1927 में जो सफ़र शुरू हुआ था बॉम्बे स्टेशन से और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत, वो बाद में ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी के नाम से, जैसे आप हमें जानते हैं, इस स्वरूप में हम आप तक पहुंचे और ये 90 सालों से ज़्यादा का सफ़र हम आपके साथ मना रहे हैं। और आज साथ ही साथ आज हम एक बड़े खूबसूरत बात और आपको बताने जा रहे हैं, मतलब एक और बात है, यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल है। और उसका रीज़न है, आज है हिमेश रेशमिया का बर्थडे भी। तो देखिए, वैसे म्यूज़िक से उनका नाता है, आवाज़ का उनका नाता है, बहुत मल्टीफेसेटेड व्यक्ति हैं ये व्यक्ति। तो सिर्फ ये म्यूज़िक डायरेक्टर ही नहीं है, सिंगर भी हैं, इसके अलावा ये प्रोड्यूसर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, बहुत सारे काम ये जानते हैं। और सिंगिंग में कई लोगों को हिमेश की आवाज़ उतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन एक दौर था जब लगातार इनकी बहुत सारी पर्सनल हिट एल्बम्स इन्होंने दी, फिल्मों में काम किया। सलमान खान की फिल्म के साथ इन्होंने डेब्यू किया था और फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या एज अ कंपोज़र। और फिर इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। इनको बहुत से अवार्ड्स से भी नवाजा गया है। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि

जी हम बात कर रहे हैं आज हिमेश रेशमिया साहब की, और वो मना रहे हैं अपना आज जन्मदिन। मैं शायद आपको बताना भूल गया कि वो ना सिर्फ डायरेक्शन में रहे, म्यूजिक डायरेक्शन में रहे, साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी रहे और एक्टिंग में भी उन्हें हाथ आजमाया। अपने गीतों पर तो आप उन्हें गाते हुए देख ही लेते हैं, साथ ही साथ उनकी एक मूवी आई थी आपका शुरू, खैर बहुत नाम कमाया। और एक दौर था, मैं जैसे कह रहा था कि हर दूसरी

0: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन, आकाशवाणी रेनबो पर। और बस अब आपको एक बार आखिरी बार हम सवाल पूछ लेते हैं बॉलीवुड सरताज बनाने के लिए, और क्योंकि थोड़ी देर में हम किसी को एक सरताज बनाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। हमारा जो सवाल है आज का वो ये है कि कैटरीना कैफ की एक फिल्म आई थी, एक था टाइगर, उसमें उन्होंने जो रोल जो किरदार अदा किया था उसका नाम क्या था। आपको अगर सही जवाब पता है तो 9868107070 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आएंगे और बताएंगे कि अनुपम खेर कौन सी आवाज़ किस मूवी के अंदर देने वाले हैं और वो मूवी कितनी बड़ी है या छोटी। बट दिस एंड लॉट्स मोर आफ्टर ब्रेक।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने।

मैसी के आने वाले प्रोजेक्ट का क्या है नाम? ओटीटी पे आई थिंक कल ही रिलीज होगी ये मूवी, वो बताऊंगा बट इस प्यारे से गाने के बाद। और थोड़ी देर में बनाएंगे किसी एक को बॉलीवुड सरताज। जुड़े हैं हमारे साथ, सुनते रहें आकाशवाणी पर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: जो भी है वो सब आपके लिए है, क्योंकि हम जो ये प्रसारण करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, आपको ध्यान में रख के करते हैं। और हमारे साथ इस समय कोई जुड़ गए हैं। हेलो
1: हेलो
0: भुवनेश्वर नेतम जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
1: गुड मॉर्निंग सर,
0: कैसे हैं आप आज?
1: जबरदस्त सर, आज का दिन बहुत आपके साथ बात हो रहा है और जबरदस्त लग रहा है।
0: और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपने छत्तीसगढ़ से

0: अक्टूबर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण

दोपहर के 1 बज गए हैं। लीजिए पेश हैं एफएम रेनबो मुक्तानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और कार्यक्रम शुरू हो गया है आपका अपना पसंदीदा, जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और जो लोग पहली दफा जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है, और जो हमेशा रेगुलरली जुड़े रहते हैं आपका भी स्वागत है। हमारा नंबर रहेगा 9868107070, दैट्स 9868107070। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। अपनी पसंद का गाना हमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेड टू ऑर्डर यानी ऑर्डर कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, जिस भी तरह आप चाहें। आपके लिए गर्मा गर्म गाने चाय पकौड़ी के साथ हाजिर हैं जनाब। हाँ, बाकी चाय पकौड़ी का इंतजाम आप खुद कीजिएगा, रादर लंच का टाइम है तो लंच करते करते पसंद का गाना और पसंद का खाना, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन आकाशवाणी रेनबो, मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ रंजन।

मैसेजेस आना चालू हो गए हैं जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग और आपकी पसंद के गाने आप ज़रूर लिख के भेजिए। देखिए क्या हो रहा है कि बहुत से लोग हैं हमें दिन भर सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, बार बार सुनते हैं और हमेशा एक मैसेज ज़रूर करते हैं कि इस प्रोग्राम में आई हैव स्पेशली नोटिस्ड कुछ एक लोग हैं जो ये कहते हैं कि कोई भी गाना आप सुना दीजिएगा और हम आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो जब देखिए हम आपको मौका दे रहे हैं कि अपनी पसंद का अपनी पसंद का गाना डिमांड कीजिए, तो आपकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। डिमांड रखिए, डिमांड है ना। यू कैन रिक्वेस्ट ऑल्सो इफ़ यू फील लाइक, यू कैन ऑलवेज से, जैसे हम क्लास में स्कूल में नहीं कहते थे, बच्चे जब होते हैं उन्हें एप्लीकेशन लिखना सिखाया जाता है, टू द प्रिंसिपल मैडम और प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड सर, और फिर टॉपिक लिखा जाता है आप जो एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं वो किस बारे में है। आप कहते हैं कि मैं स्कूल के माहौल में ढल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं जो है कुछ डिमांड नहीं कर पाता हूं, टीचर्स मुझे कहती हैं कि आप सवाल नहीं पूछते हैं। और देखिए आप समझ रहे हैं ना, बचपन में गए कि नहीं आप मेरे साथ, तो आपकी ये जो आदत है ना चुप रह जाने की, आपसे तो कहा जा रहा है कि गाना बताइए कौन सा सुनना चाहते हैं। मैं स्पेशली देखिए आपके नाम बताया तो जिन्होंने फारूक अली खान ने ये लिख के भेजा है कस्बा गुनार यूपी से, और ऐसे ही एक और हमारे बड़े प्यारे रिस्पेक्टेड लिसनर हैं, वो भी यही कहते हैं कोई भी गाना बजा दीजिएगा। ये कोई भी गाना नहीं ना, ये मेरा वाला सॉन्ग है। जैसे हम अभी हमने किसी का गाना चूज भी कर लिया है, वो मैं बजाने जा रहा हूँ, नाम मिलते ही आपको ज़रूर बताऊँगा जी। नाम आपका है सीमा, आपने लिखा है मेरठ से, गाना आपने पसंद किया है मेघा रे मेघा, आपकी पसंद चल रही है आकाशवाणी रेनबो पर। क्यों पसंद है ये गाना ये भी लिख के आप बता सकते हैं। फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, मेघा उमड़ के घुमड़ के आ रहे हैं और जैसे कि हमारे देश में अधिकतर इलाकों में मानसून है और दिल्ली में भी रुक रुक के बारिश हो ही जाती है, कभी किसी इलाके में कभी कहीं। और वैसे भी बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है मानसून का, बारिशों का समय कुछ ऐसा होता है। अगर आप उतने रोमांटिक नहीं हैं या बहुत खुश नहीं रहते, लेकिन आप देखिएगा कभी बारिश में बाहर निकल के नहा के भीग के आपका मूड तरोताज़ा हो जाएगा। खैर, हमारे पास पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, इनकी पसंद का गाना हम अगला बजाने जा रहे हैं, ना कजरे की धार।

ना मोतियों के हार, मोहरा फिल्म से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कुछ लोग सिर्फ गाना का उसका बोल लिख के भेज देते हैं। जिन गाना के अगर आप जो बोल लिखते हैं, कई दफ़ा वो गाना उस बोल से हमारे पास नहीं होता है, तो फिल्म का नाम भी ज़रूर लिख के भेजिए। कई बार क्या होता है ना, हमने गाना सुना मुखड़ा, तो हमने सुना और कहीं और से हमने गाने का कोई भी बोल याद रहा हो, बस वो लिख के भेज दिया, तो मेरे लिए बड़ा एक समस्या सी हो जाती है कि एक फिल्म के अंदर, कई फिल्मों के अंदर एक ही बोल से गीत होते हैं, तो उसमें भी ढूंढने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। खैर, तो जो गाना हमने अभी आपको बताया वो हम प्ले करने जा रहे हैं, पंकज उदास साहब की सदाबहार आवाज में, ना कजरे की धार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। हमें मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। यहाँ वो वाला कार्यक्रम चल रहा है, वो प्रोग्राम चल रहा है जहाँ आप अपनी पसंद का गाना डिमांड करते हैं, इसीलिए तो हम इसे बड़े प्यार से कहते हैं मेरा वाला सॉन्ग।

जी हाँ, अगर आपकी भी पसंद है कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसे नगमे जो आपको सोने के जैसे खरे लगते हैं या फिर चांदी जैसे, तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ नहीं रिक्वेस्ट करने के लगते कोई पैसे। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, जैसे अगला गाना हम बजाने जा रहे हैं अनूप कौशिक की पसंद, झज्जर हरियाणा से इन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट अपनी की है। फिल्म दिलवाला का गीत सुनना चाहते हैं। कितना हंसी चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। तो अनूप, आपकी पसंद का गाना बज गया है आपकी डिमांड पर, आपके अपने पसंदीदा चैनल आकाश

जी हाँ, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। और जाहिर सी बात है, बहुत सी चीज़ें हैं, या बहुत क्यों, हर एक चीज़ में आपको समय लगता है, बहुत फुर्सत से काम करना पड़ता है। और ये तो हमने सुना ही है ना कि खुदा ने बहुत से लोगों को, बहुत सी ऐसी वस्तुओं को बहुत फुर्सत से बनाया होता है। लेकिन एक जब संगीतकार होता है, जब वो संगीत देता है किसी गाने के लिए, या फिर गीतकार गीत लिखता है, बोल लिखता है उसके, तो उसे बड़ी फुर्सत से सोच समझ के, अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस उसके अंदर जाता है, कितनी मेहनत जाती है, तभी तो आपको ऐसे गीतों से प्यार हो जाता है। जैसा अगला गाना हम बजाने जा रहे हैं, सुनीता शर्मा की रिक्वेस्ट पर, शालीमार बाग दिल्ली से लिखती हैं, हम आपके हैं कौन मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं, ज़रूर वो गाना हम अभी थोड़ी देर में प्ले करने जा रहे हैं। कुछ नाम यहाँ मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, डॉली का मैसेज आया, इन्होंने भी एक गाना रिक्वेस्ट किया है, आपको कोल्ड मेघा के बरसने से हुआ लगता है। मुझे कोई कोल्ड वोल्ड नहीं हुआ है, स्टूडियो चेंज हुआ है तो माइक डिफरेंट है। आप कितना नोटिस करते हैं आप लोग, है ना। तो क्या होता है, हम जिस स्टूडियो से जाते हैं, उस स्टूडियो के अलावा एक स्टूडियो और है हमारे पास, वो डिफरेंट स्टूडियोज में आते हैं, हर एक का अलग सेटअप होता है, तो माइक की जो सेटिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं, हाँ माइक भी डिफरेंट है। तो सुकलाल बाला लिख रहे हैं फलाकाटा वेस्ट बंगाल से, ओए राजू प्यार ना करियो मूवी, और इसका हद कर दिया आपने गाना सुनना है। तो ऐसे बहुत सी रिक्वेस्ट है, मैं, अरे सुनीता जी आपने तो पहले ही थैंक यू लिख के भेज दिया, अभी तो गाना तो बचा भी नहीं। चलिए ज़्यादा देर या ज़्यादा विलंब नहीं करते।

हम आपके हैं आकाशवाणी रेनबो स्टेशन, जहां कार्यक्रम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। और ये गाना सुनने के लिए ये जो प्रोग्राम है आपकी पसंद का है,

जी हम हैं आपके दोस्त आकाशवाणी रेनबो जो रहते हैं आपके साथ साल के 365 दिन 2400 घंटे उसमें से आप चूज करते हैं आप हमें कितना समय देना चाहेंगे और जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन भी आपके साथ ही रहते हैं हम कहीं चले नहीं जाते और अगर आप चाहें आप कहीं जाएं हम आपका हाथ नहीं रोकते। अब कहीं भी जाइए दुनिया भर में घूमिए खूब पैसा कमाइए नाम कमाइए अपने रोज़गार के वजह से कहीं आपको जाना है वहाँ जाइए ऑफिस जाइए घर आइए कुछ भी कीजिए वेकेशन पे जाइए लेकिन हमारा न्यूज़ ऑन एयर ऐप अपने फ़ोन में डाल के अपने संग रहिए ताकि आपका हमारा ये रिश्ता यूं ही चलता रहे। ऋषिकेश से बड़ा प्यारा मैसेज आया है पुनीत रावत लिखते हैं धूम फिल्म का दिल भरा सॉन्ग सुनाइए। तो पुनीत रावत आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए बस थोड़ी देर में आपकी पसंद का गाना चलाने जा रहा हूँ और वो मुझे कंप्यूटर के ऊपर उसे मैंने पकड़ लिया है गाने को और वो कहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों से तेज़ गाड़ी रफ्तार में चलते हुए कहीं पहाड़ी से उतर ना जाए गाना इसलिए उसे ट्रैक पे ला के मैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए ये लीजिए प्ले भी कर दिया है। कुछ एक नाम साथ साथ मैं पढ़ता चला जाता हूँ बहुत से लोग हैं मैसेजेस करे जा रहे हैं देखिए कोशिश रहती है से ज़्यादा लोगों की फरमाइश को हम ऑन एयर कर सकें। ए के पांडे साहब का हमारे पास मैसेज आया है मध्य प्रदेश से। मोहम्मद इम्तियाज का जवाहर कैंप कीर्ति नगर दिल्ली से मैसेज आया है और मालवीय परिवार की तरफ से हमारे पास मैसेज आया है इसे भी पढ़ता हूँ थोड़ी देर में आप यूं ही जुड़े रहें मैसेज करें हमें हमारा नंबर है 9868107070 और अपनी पसंद का गाना पाएं कहां पर बस यहीं पर जिस कार्यक्रम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग।

0: जी हाँ सोच लीजिए। अभी काफी समय है इस कार्यक्रम में और अपनी पसंद का गाना जो है, जो आप जब आपका मन चाहता है आप गुनगुनाने लगते हैं, कोई ऐसा गाना जो आपने हाल में सुना हो या कुछ साल पहले सुना हो, कहीं आपके दिमाग में वो घर कर गया है और बार बार आपका मन करता है उसे सुने, तो आप हमसे ये बात कह सकते हैं। 9868107070 पर आप व्हाट्सएप करके वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपने फिल्म का जो टाइटल है वो लिख के भेजिए, गाने का बोल लिख के भेजिए और अपने नाम के साथ भेज दीजिए, जैसे हमारे पास भेजा है तेज कुमार गुप्ता ने, जनता विहार मुकुंदपुर दिल्ली से। आपकी पसंद का गाना है बिच्छू मूवी का एक वारी तक सानू, है ना, वो गाना हम बजाएंगे लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट के आते हैं। तो फिर तेज कुमार गुप्ता जी, आप भी हमारे साथ यूं ही बने रहें, सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने 30

0: दूसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग और हमारे पास अगली रिक्वेस्ट जो आई है वो है आरुषि की उत्तराखंड से और ये लिखती हैं कि मुझे दिल है तुम्हारा फिल्म से गाना सुनाया दीजिए दिल लगा लिया। आरुषि अगर आप मुझे इस समय सुन पा रही हैं क्योंकि आप जानते हैं हम लाइव आप तक पहुँचते हैं, मेरी जो कंप्यूटर साहब हैं वो दो गाने मुझे इस मूवी के दिखा रहे हैं, एक है कसम खा के कहो और एक है मोहब्बत दिल का सुकून। और अब देखिए हो सकता है ये मुखड़ा है या गाने में आपने कहीं बीच में वो लाइन सुनी है इसलिए इसी में से कोई है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इन दोनों में से कोई प्ले कर दूँ तो जल्दी से आप इसका लिख के रिपीट कर सकती हैं, कसम खा के कहो प्ले कर दूँ या मोहब्बत दिल का सुकून है वो प्ले कर दूँ। मैं अगले 10 सेकंड और आपकी वेट करूँगा नहीं तो अगले मैसेज पे चला जाऊँगा। और मैं देख रहा हूँ आप कुछ टाइप करने की कोशिश कर रही हैं और यस कम ऑन आरुषि यू कैन डू दिस। और उत्तराखंड में बैठी आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं और हमने आपको चॉइस दी है कि क्या होता है, देखिए सारे गाने हमारी लाइब्रेरी में कई बार इस वजह से भी नहीं होते हैं, कुछ गाने हमारे हिसाब के नहीं होते हैं, उनके बाकायदा गानों को सुन के एक टीम होती है जो उन्हें वेट करती है यानी कौन से गाने बजाने लायक हैं। यस सर वही प्ले कर दीजिए, देखिए अभी भी आप उन दोनों में से कौन सा आरुषि तो कन्फ्यूज़न हो गई, वही मतलब मैंने आपको दो चॉइस दी है उनमें से आपने कहा वही प्ले कर दीजिए, मतलब कोई भी प्ले कर दूँ। ओके इफ दैट इज़ द वे यू वॉन्ट इट टू गो तो ठीक है इसी तरह से ये काम हो। अलका याग्निक की आवाज़ में मैं आपको एक कुमार सानू साहब की आवाज़ में है और दूसरा गाना कसम खा के कहो। तो दिल है तुम्हारा मूवी से अलका जी की आवाज़ में देखिए टेक्नोलॉजी का कितना फायदा होता है। एटलीस्ट मुझे अब इस बात का भी सुकून मिला कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं बड़े ही गौर से वेट कर रहे होते हैं कि उनका गाना कब बजाया जाए, तो ऐसे मेरे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करते रहिएगा, मेरी दुविधा मेरे सवालों का जवाब तुरंत आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा आपके पसंद का गीत।

भगवती जी का मैसेज आया है और बहुत से लोगों का मैसेज आया है जहां वो आज प्रसारण दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी तहे दिल से सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप भगवती जी, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। तकदीर वाला फिल्म से आपने जो गाना मांगा है, अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म का ही गाना मेरे पास कोई भी नहीं शो कर रहा है, तकदीर फिल्म का गाना एक ज़रूर शो कर रहा है। चलिए मैं आप लोगों की थोड़ी सी उलझन हटा भी देता हूँ। देखिए, ये गाना तो जाहिर सी बात है कुछ मूवीज़ इसलिए भी शो नहीं करती हैं या कुछ मूवीज़ के कुछ गाने इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि बाकायदा क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से अच्छे गाने जो सब जन हिताए सब जन सुखाए, यू नो, उस मंत्र को लेते हुए किसी गाने के अंदर कुछ ऐसे जो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होते उन्हें भी नहीं रखा जाता। तो कुछ लोगों की मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट देखी हैं, वो जब मुझे नहीं मिलती हैं तो मैं आज आपको ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि आप एक से ज़्यादा नहीं तो दो रिक्वेस्ट भेज दीजिए। एक फिल्म का गाना आप भेजते हैं, साथ में एक रिक्वेस्ट और भेज दीजिए। कई बार होता है आपकी वो फिल्म का वो गीत नहीं है, फिल्म के बाकी गीत हैं या दूसरी फिल्म का कोई गीत है, तो आप यू नो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कंचन लिख रही है सोनिया विहार से, मुझे प्रेम रतन धन पायो का टाइटल सॉन्ग सुनना है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपकी रिक्वेस्ट को, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ साथ के साथ मैं अपने कंप्यूटर को आदेश दे रहा हूँ कि वो इस फिल्म के गानों को सामने लाए, और कोशिश करता हूँ कि वो आपके लिए मैं प्ले कर पाऊँ। देखिए, बिल्कुल लिस्ट में गाने सामने आ गए हैं। प्रेम रतन धन पायो की जगह पहले जो मेरे पास आया है वो आया है मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से गाना, फिर तेरे मन में तेरी मैं प्रेम दीवानी उस फिल्म का भी आया है, प्रेम रतन धन का। बस मैं यूँ खोज रहा हूँ अभी, देखिए कंप्यूटर की अपनी एक अपनी एक सीमा है जिसके अंदर भीतर रह के वो काम करता है। तो लेट्स सी, पायो धन पायो नायो नाय अभी नहीं आयो, तो हम दूसरा गीत आपके लिए बजा रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड ना, मतलब क्योंकि हम आपके पास लाइव आते हैं, अगर तुरंत हम कोशिश करते हैं आपकी पसंद को लाने की तो उसके पीछे कितने सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो हैं सामने आ जाते हैं कई दफा। फिलहाल ये मेरी पसंद का गाना आप सुनिए साथ के साथ, वो दिन फ्रॉम द मूवी छिछोरे, बहुत ही प्यारा गाना है, आपको अपने उन बेहतर हसीन दिनों के बारे में उस यादों की तरफ लेके जाता है।

0: जी हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी पसंद है, जो आपकी डिमांड है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपका अपना पसंदीदा गाना है, उसके बारे में कई दफ़ा अगर एक आध लाइन बताना चाहें कि भाई ये गाना इस वजह से भी पसंद है, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भगवती जी, वापस अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी देर तक कोशिश की, प्रेम रतन धन पायो डाला ना, प्रेम रतन तो मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कंप्यूटर कुछ और ही दिखा रहा था मैं सीरियसली, मगर जैसे ही मैंने दूसरा गाना बजाया, मैंने उसके बाद फिर से ट्राई किया, देखिए हमारी हमारी कोशिश में बिल्कुल कमी नहीं तो इस बार फाइनली कंप्यूटर ने आपकी पसंद का गाना पलक मुच्छल की आवाज में, तो देर से ही आए लेकिन आए तो सही,
1: धन भी
0: हम भी कहीं मानसून के बादल तो नहीं हो गए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, कहीं मचाएगा।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो और

0: बदल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग. मोहम्मद फुरकान कांट से लिखते हैं. एक ही मैसेज को आपने कई दफ़ा लिखा और बाकायदा आपकी पसंद का गाना अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इसकी साजन फिल्म का आपने रिक्वेस्ट किया और एक और किसी और कॉलर ने भी मैसेज किया है हमारे पास लिसनर ने. तो आप कोई और चॉइस है तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया वो नहीं मिला. तो उसके बाद अगर ये लिखना कि मैं आपका गाना नहीं प्ले कर रहा हूँ तो बताइए, मैं गाना खुद तो नहीं गा सकता ना. तो बोल हो सकता है आपने या तो गलत लिख दिए हैं. आपने लिखा है कहाँ गया. एक तो बहुत सारी बातें आप लिखते हैं. तहे दिल से स्वागत है. रंग मूवी का तुझे ना देखे तो चैन मुझे आता नहीं. सुना दीजिए. साजन मूवी का पहली बार मिले हैं सुना. अच्छा, दो चीज़ें आपने एक साथ लिखी हैं. बीच में थोड़ा आप तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं. ठीक है, तो मैं आपकी पसंद का इसमें से एक गाना बजाने जा रहा हूं जस्ट अ लिटिल वाइल. और बड़ी जल्दी आप नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि आपके मैसेज पर अगर गौर नहीं किया या नहीं बजाया तो आप हमारी अदायगी के ऊपर ही तंज कसने लगते हैं कि इतनी हंस हंस के आप बात कर रहे हैं. अब ये भी कोई जुर्म है तो बताइए सर. मैं मानता हूँ अपना जुर्म. मैं हंस के बाद मैं दुख होके दुख के साथ बात करूँ वो आपको अच्छा लगेगा क्या. तो डोंट लूज हार्ट. आपका देर सवेर हर एक का मैसेज लिया जाता है और मेरी आपने समानता कर दी किसी क्या मैं कहूँ, मुझे ढीठ तक आपने कह दिया. दिल तोड़ दिया आपने फुरकान साहब. खैर, आपके लिए हम तुमसे मिलने की तमन्ना है गाना बजाने जा रहे हैं. आपने जो लिखा कोई बात नहीं. हम चाहेंगे कि आपका दिल खुश रहे, दिन बना रहे क्योंकि ये कार्यक्रम ही है आपका अपना मेरा वाला सॉन्ग.

और जैसा हमने कहा था, एक और कॉलर, एक और लिसनर हैं जिन्होंने मैसेज किया था साजन फिल्म से ही। तो पहली पहली बार मिले हैं फुरकान साहब, ये आपकी रिक्वेस्ट, और जो पहले बजा वो उनके लिए था। बस अब समय ज़्यादा नहीं है, चलते चलते कुछ एक नाम और मैं यहाँ लेना चाहूँगा। कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिखती हैं, हमारा गाना प्ले कीजिए, हमारा मनोरंजन कीजिए। वेल, अब टाइम उतना नहीं है, बट आई विल स्टिल ट्राई कि एक आध शायद एक गाना और बजा पाए। नहीं, दिस वुड बी द लास्ट सॉन्ग। तो रंजन को दीजिए यहाँ पर इजाजत, अगले कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे मुनीश। यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग। टेक केयर, बाय बाय।

दो बच्चों के आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। श्री मोदी ने दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलीपींस की मनीला में कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा, पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। आज राष्ट्रीय प्रसार

रण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी तेज बारिश की संभावना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: तुम्हारी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आशियाना में आप सभी का स्वागत है। हर बृहस्पतिवार को आशियाना हम समर्पित करते हैं अपने सीनियर सिटीजन्स को, और ये ताजी सी हवाएं, ये फिजाएं, ये जिंदगी जिसका हम लुत्फ उठाते हैं, उन्हीं की तो देन है।

0: आशियाना सुन रहे हैं आप और मेरा नाम है मुनीर जौली और हमारे साथ एक खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और इनकी खास बात यह है कि ये एक एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। इनका नाम है श्री राजीव भटनागर जी, जो बीटेक आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माफ कीजिएगा, उसे हासिल करके उन्होंने अपनी जिंदगी का जो सफर है आगे बढ़ाया, लेकिन आज एक सीनियर सिटीजन है और अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। आपका स्वागत कर रहा हूं सर।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: कैसे हैं आप सर?
1: हम बिल्कुल बढ़िया है,
0: फर्स्ट क्लास से भी बेहतर सर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आशियाना जो है हर बृहस्पतिवार को हम लोग सीनियर सिटीजन्स पे फोकस करते हैं। आपकी मोटिवेशन का सबसे बड़ा राज जानना चाहूंगा।
1: देखिए, जिंदगी में इतने वर्ष गुजर जाने के बाद आदमी बहुत सारी ऊंचाइयां नीचाइयां पार करते हुए जब जाता है तो कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। एज दे सेड, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी अपने आप को मोटिवेटेड और खुश रखने के लिए और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ
0: जी,
1: वो ये है कि आई ट्राई टू हेल्प एज मेनी पीपल एज मच एज आई कैन, और इससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है।
0: अच्छा, ओके
1: जी,
0: तो थोड़ा इलैबोरेट कीजिए सर।
1: देखिए, क्या है कि जो इट्स अ वेरी कॉमन नॉलेज कि आदमी क्या चाहता है जिंदगी में। जब वो बचपन से जवानी में आता है तो बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं
0: जी,
1: पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज होना चाहता है। हर इंसान जो चाहता है, जरूरी कि उसको पूरा वैसा मिल सके
0: जी,
1: लेकिन वो अपनी रास्ते में आगे बढ़ता जाता है, कोशिश करता रहता है। कहीं ना कहीं ये तमन्ना उसके मन में आ जाती है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं,
0: यस,
1: और बहुत सारा नाम कमाऊं, लोग मुझे जाने
0: जी
1: और रिकग्निशन मिले। तो और उसमें कोई खराबी भी नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और आदमी और सीखता जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ अपने लिए ज्यादा पैसा कमा लेना या ज्यादा नाम कमा लेना
0: जी,
1: वो बहुत अंदर गहराई तक तसल्ली आपको नहीं देता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी खलती रहती है जिंदगी में, एक वैक्यूम सा छोटा सा रहता है जिसको हम पहचान नहीं पाते और हम फाइट करते रहते हैं पैसों के लिए, तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, सबके लिए, जो कि हमको करते भी रहना चाहिए, मैं उसे मना नहीं कर रहा हूं।
0: Okay.
1: लेकिन अगर एक बार ये एहसास आ जाए कि मैंने फलाने आदमी की नौकरी लगवाने में थोड़ी सी मदद करी और उसकी नौकरी लग गई, 10 लोगों के लिए मैंने कोशिश की जो मेरे पास आ रहे थे अप्रोच करने
0: जी,
1: और उसमें से मान लीजिए 4 की नौकरी लग गई, 6 की नहीं लग पाई
0: जी,
1: तो भी मुझे ये लगता है कि मैंने कोशिश तो बराबर की, 6 की नहीं लगी वो किस्मत की बात है, लेकिन जो 4 की लगी उसमें पता नहीं क्या अजीब सी तसल्ली सी मिलती है। अब ये अलग बात है कि वो बाद में बहुत सारे शुक्रगुजार होते हैं, लोग पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
0: ओके,
1: और बस एक अपने को जो तसल्ली मिलती है वही सबसे बड़ी है। और मुझे लगता है कि ये शायद जीवन में सबसे बड़ा तरीका है तसल्ली पाने का, सेटिस्फेक्शन पाने का, और एक तरीके का जिसको इटरनल सेटिस्फेक्शन बोलते हैं
0: जी,
1: या गोल्डन ब्लिस बोलते हैं, वो पाने का।
0: ऑलराइट,
1: जी।
0: एक बात मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने 2 दिन पहले ये बात पढ़ी।
1: जरूर,
0: कुछ लोग यू नो स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करते हैं,
1: लेकिन किसको?
0: स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को फॉलो करते हैं, लेकिन उस बात को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, क्योंकि आपने कम्युनिटी सर्विस की बात की, एक तरीके से कम्युनिटी सर्विस ही आप कर रहे हैं जब आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं। तो आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, आज के दिन 1927 में पहला रेडियो का प्रसारण हमारी कंट्री में हुआ था, बॉम्बे से, बॉम्बे स्टेशन, तब एक प्राइवेट कंपनी था। आप इस बात से परिचित हैं?
1: हाँ, मुझे थोड़ा आइडिया जरूर है
0: जी। तो 1936 में स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो थी वो ऑल इंडिया रेडियो बनी और उसके बाद आकाशवाणी, लेकिन आज ही के दिन 1927 में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। और मैं इस बात को जोड़ रहा हूं आपकी बात से, और सबसे बड़ी बात यह है राजीव कुमार भटनागर जी की आकाशवाणी ने जितनी कम्युनिटी सर्विस की है, दुख में, सुख में, हर मोड़ पे।
1: हाँ,
0: और मैं ये नहीं कहूंगा कि जॉब प्रोवाइड करवाई, वो तो करवाई है बहुत सारे लोगों को, लेकिन एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जब हम भी घुसते हैं आकाशवाणी में, उसका मकसद ये है कि वी आर डूइंग अ सर्विस टू द नेशन। क्या ये भी एक राज है कि आपको लगता है कि इतने सालों से आप भी आकाशवाणी के साथ जुड़े हैं, तो अगर कम्युनिटी सर्विस करने का कोई सबसे बड़ा उदाहरण मैं देखता हूं तो मैं तो आकाशवाणी मानता हूं, आप क्या मानते हैं?
1: ये पहली बात तो ये सवाल आपने बहुत ही बढ़िया पूछा, क्योंकि तो शायद मैं जब मैंने लोगों को जॉब दिलाने की बात करी तो मुझे मेरा मतलब ये नहीं था कि दैट्स द ओनली वे टू हेल्प पीपल। ये जो फीलिंग है ये हर, मतलब इट्स ऑल परवेसिव, ये हर फील्ड में लागू होती है। और देयर इज आल्सो अ सेइंग द चैरिटी बिगिंस एट होम, यू नो, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है। आपका आपकी आपकी माँ बाप हैं, बेटी बेटे हैं, वाइफ है, सब है, हम उनके लिए जो कुछ भी करते हैं, एक आमतौर पे हर इंसान जो करता हो तो करते ही, लेकिन अगर मन के अंदर ये भावना आ जाए कि आई हैव अ ड्यूटी टू हेल्प माई फादर इन अ पर्टिकुलर वे, आई हैव अ ड्यूटी टू हेल्प माई डॉटर इन अनदर पर्टिकुलर वे, एंड इफ आई एम डूइंग दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंट यू नो personalities, different conditions in life, I'm serving that. So my theory of, आपने रेडियो स्टेशन की बात करी, बहुत अच्छा उदाहरण है, पर मेरा कहना यह है कि that's not the only way. It starts from your charity begins at home and then it goes all over the world. और ये जो आपने रेडियो वाली बात करी, ये मैं इसको 100% कहूंगा कि ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू हेल्प द कम्युनिटी।
0: आप कब से आकाशवाणी सुन रहे हैं सर, मैं ये पूछना चाहूंगा।
1: जी सॉरी,
0: आप आकाशवाणी कब से सुन रहे हैं, रेडियो कब से सुन रहे हैं?
1: देखिए, एक जमाना था, मैं छोटा था उस वक्त, जबकि कुछ मुझे ठीक से याद नहीं, पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी इंडिया में आकाशवाणी के लिए, तो रेडियो सिलोन से हमारे प्रोग्राम्स आते थे, बिना का, गीतमाला वगैरह, तो हम तो तब से सुन रहे हैं उस बचपन से। और उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने लगे, बहुत सारी चीजें आने लगी लाइफ में।
0: तो उन्हीं चेंजेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए रिटायरमेंट, मैं उसे री अटायरिंग कहता हूँ, री अटायरिंग, यू री अटायर योरसेल्फ, तो आप अपनी लाइफ में अब कैसे लोगों को और जागृत कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। बहुत जल्दी से सर आपकी लाइफस्टाइल अभी जानना चाहूंगा।
1: जी साहब, मैं समय का ध्यान रखते हुए बोलूंगा कि मैं 3 या 4 ब्रॉड कैटेगरीज में ये काम कर रहा हूँ। एक तो मैं एक लीडरशिप एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का कोच भी हूँ।
0: ओके।
1: तो मैं कई जगह जाके बहुत सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स को और नीचे जो मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी लीडरशिप एक कैसे, हाउ टू बिकम

0: एम एन इफेक्टिव लीडर, इसके ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ।
1: वंडरफुल।
0: और वो मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे दिल के करीब है वो ट्रेनिंग।
1: अच्छा।
0: और मुझे अक्सर बहुत रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है।
1: जी।
0: दूसरा ये है कि आई बिसाइड्स बीइंग अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड अ स्टील मेकिंग एक्सपर्ट एंड थिंग्स ऑफ दैट काइंड,
1: जी,
0: आई एम ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड आई एम एन एक्टर। आई लव टू एक्ट एंड टू फुलफिल दिस नीड आई हैव ऑल्सो बिकम अ प्रोड्यूसर ऑफ शॉर्ट फिल्म्स। तो मैं वो भी करता हूँ और उसमें ये वाला माइंड में हमेशा रहता है कि मैं जितने भी मैंने सेविंग्स किए उसमें से कुछ पैसे वहां लगा के, तो बहुत सारे जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे में दिल्ली में बैठे हुए, बेचारों के पास पैसे नहीं है बट टैलेंट बहुत है, तो जब फिल्म बनती है तो उन सब की भी मदद होती है और मेरा शौक भी पूरा होता है। सो इट्स अ टू इन वन, देयर इज अनदर वे। और तीसरा यह है कि मैं छोटी मोटी कुछ कंपनीज जो डिफिकल्टी में है उसमें फ्रीलांस कंसल्टिंग भी कर लेता हूँ और उनको कैसे प्रॉफिट दिलाया जाए उसके ऊपर मेहनत करके को हेल्प करता हूँ। और बाकी अपनी जिम्मेदारियां घर की फैमिली की जो होती हैं तो उसमें उसमें कोई कमी ना आ पाए उसकी भी कोशिश करते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये आई वांट टू कीप लर्निंग। अब आज जो आपके साथ ये जो इत्तेफाक हो रहा है
1: जी,
0: ये शायद इस किस्म का इत्तेफाक रेडियो के थ्रू शायद पहले नहीं हुआ होगा, थिएटर में हुआ, फिल्म्स में हुआ। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आप के चैनल के कांटेक्ट में आया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजीव कुमार भटनागर जी इनकी आवाज़ आप सुन रहे थे। और पोस्ट रिटायरमेंट ये बीड़ा कुछ इन्होंने और अलग सा और बहुत बड़ा उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में और समय निकाल कर आपसे फिर और गुफ्तगू करेंगे, वार्तालाप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: I'll be so happy and thank you very much। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सुनने वालों।
1: जी जी
0: धन्यवाद।
1: राजीव कुमार भटनागर जी इनकी आवाज आप सुन रहे थे। और बातें करते करते ये पुराना गीत मेरे जहन में आ गया जिसे मैं प्ले कर रहा हूँ आप सभी के लिए।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: पानी पानी पानी, पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है। तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से

0: लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

माशियाना सुन रहे हैं आप, और बहुत ही जल्द आपके बीच में एक स्पॉन्सर प्रोग्राम आ रहा है NCERT द्वारा। ये स्पॉन्सर प्रोग्राम बस कुछ ही लम्हों में आपके बीच।

यहां से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे।

0: शबदंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलो दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
3: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में NCERT का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
3: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
2: जी।
3: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
2: जी।
3: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
2: जी।
3: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
3: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
2: जी,
3: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं, फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
2: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं, और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
3: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
2: जी।
3: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
2: जी।
3: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
2: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओ, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
3: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
2: जी।
3: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
4: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
5: भाग माधव भाग,
6: अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
7: चलो पकड़ते हैं माधव को।

0: इसी भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
1: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा।
0: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
1: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
2: जी महाराज, जी महाराज।
1: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
3: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
0: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा, क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
1: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
4: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
5: जी महाराज।
4: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
1: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
4: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
1: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
4: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटें महाराज, धर्मपाल को ही दे दें, मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
1: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
5: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
6: उसका ये दुस्साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहां पहुंचा। खेल चल रहा था।
7: आज मैं राजा बनूंगी।
8: आज मैं राजा बनूंगा।
3: आज तो मैं राजा बनूंगा।
9: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
1: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
7: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
10: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
7: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
10: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
11: हमने तो देखा है।
12: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।

0: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
1: महाराज की जय हो।
2: जय हो।
3: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया, लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
4: महाराज महाराज जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
5: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए, हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
3: शिला जब खोदकर निकाली गई तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
6: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
5: चोरी।
3: राजा ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
5: ये सच है, मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
6: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
3: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
6: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
5: झूठ।
3: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
6: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
5: चोट? वो
3: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
6: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
3: राजा को क्रोध आ गया,
5: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।

0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
3: क्या खूब रंग जमा गया, जब पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी अमृत वाला आ गया। अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया।
4: अरे मशकूब भाई,
5: जी जनाब,
4: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
5: लीजिए जनाब।
4: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
5: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
4: रखो रखो।
5: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
4: गर्मी में पानी पिलाया तुमने।
5: रखो, रखो। शुक्रिया
4: शुक्रिया।
3: अमृत वाला आ गया।
6: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी, जो चमड़े की बड़ी सी मशक पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
7: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
4: मशकूब भाई।
5: जी जनाब।
4: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
5: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
4: लाओ। बस बस,
5: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
4: सही कहा मशकूक भाई।
5: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
4: अभी तक तो कुछ नहीं।
5: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
4: अरे नहीं नहीं
5: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए साथ में।
4: भाई
5: जी,
4: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
5: क्या बात करते हैं,
4: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
5: इसमें नेकी की क्या बात है?
4: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
5: ये तो मेरा फर्ज था।
4: चाहता हूँ के रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूं।
5: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
4: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
5: अच्छा,
4: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
5: ये तो बड़ा नेक काम है।
4: अब ये लीजिए।
5: ये किताब, ये किताब किस लिए?
4: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
5: अच्छा,
4: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
5: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूंगा।
4: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत न लीजिए।
5: तौबा तौबा तौबा,
4: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
5: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे न लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।

0: सी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
1: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
0: पैसा लाए हो?
2: यकीन मानिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
0: जमूर है, खाली हाथ चले आते हो।
2: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है हकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब।
0: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
2: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
0: बच्चे को गोद में उठाओ।
2: बच्चे की जान बचा लीजिए हकीम साहब।
0: चलो निकलो बाहर, निकलो।
2: मर जाएगा ये।
0: उठा,
2: मर जाएगा हकीम साहब।
0: चलो निकलो बाहर।
1: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
3: अमृत वाला आ गया, क्या खूब।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी, मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
1: जरूर
2: भाई
1: जी,
2: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
1: क्या बात करते हैं,
2: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
1: अरे तो क्या हुआ?
2: खैर जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
1: क्या क्या कहते हैं आप?
2: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
1: अच्छा,
2: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
1: जी जी जी जनाब,
2: आप लीजिए ये किताब।
1: ये किताब किस लिए?
2: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
1: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
1: ये मैंने क्या

0: ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला। क्या किया? या खुदा माफी माफी रहे मुझे। अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक।
1: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
0: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमाक।
1: के एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं,
0: या खुदा माफ।
2: अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, बरसात का मौसम आ गया है, आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ये जो मौसम आता है तो अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आता है। हर मौसम के साथ ऐसा होता है, तो परेशानियां क्या होती हैं वो तो हम ध्यान नहीं देते हैं, परेशानियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर हाँ, जो परेशानियां हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करें या उस पर कुछ असर डालें उनको जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। तो रेडियो डॉक्टर तो आपको यही बताता है कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आज का विशेष अंक इसीलिए ज्यादा खास हो रहा है क्योंकि जो ये मौसम है इसमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस और क्यों बढ़ जाती हैं और हम कैसे इससे बच सकते हैं, ये जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो हमारे जितने सुनने वाले हैं उन सबसे ये अनुरोध कि आज का ये अंक भी बहुत ध्यान से सुने, जैसे आप हर अंक को सुनते हैं। और आपका इंट्रोडक्शन कराती हूं आज के रेडियो डॉक्टर के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रिंसी।
2: थैंक यू शालिनी मैम, और मेरे सारे लिसनर्स को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून।
1: तो जैसा मैम हमने बताया कि मच्छरों की तादाद खास तौर पर बरसात के मौसम में तो बहुत होती है। वैसे तो हम अगर कहें तो हमेशा ही मिलते हैं। मच्छर ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि ये कभी खत्म होंगे कि नहीं, और परेशान भी बहुत करते हैं, लेकिन उतना तक तो ठीक है, पर जब ये बीमारियां फैलाते हैं, और बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनसे संभलना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं ये कौन कौन सी हैं, कैसे फैलती हैं?
2: जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं बेसिकली वो डिजीजेस होती हैं जो जैसे एनिमल रिजर्वेयर्स होते हैं, पिग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनमें ये जो डिजीज कॉजिंग वायरसेस या ऑर्गेनिजम्स हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट उसमें ये डिजीज नहीं कॉज कर रहे हैं, उसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं थ्रू सम वेक्टर, थ्रू सम मीन्स, लाइक मस्किटोज हो गए, मस्किटोज में भी एडीज एनोफिलीज और क्यूलेक्स होते हैं, या फिर जैसे एक सैंड फ्लाई होती है, एक सेटसी फ्लाई होती है, या स्नेल्स के थ्रू या कुछ और ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो हमारे को ह्यूमंस को डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, और फिर ह्यूमंस में दे कॉज सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन। सो फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस थ्रू सम मीन्स, थ्रू सम वेक्टर्स, दीज आर कॉल्ड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस।
1: अच्छा, इसी में जूनोसिस भी आ जाता है, जूनोटिक।
2: मैम, जूनोसिस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो जूनोसिस है दैट इज कॉजिंग डिजीज इन बोथ द एनिमल्स एंड ह्यूमंस।
1: ओके,
2: वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर अदर डिजीजेस इन विच दीज माइक्रोब्स आर मल्टीप्लाइंग इन दीज एनिमल्स, दे आर नॉट कॉजिंग, ये उसमें डिजीज कॉज नहीं कर रहे हैं, बट जब ये ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो ह्यूमन्स में डिजीज कॉज करते हैं।
1: और मस्किटो इसका एक साधन बनते हैं ट्रांसमिट होने। जी, और भारत में भी अगर हम बात करें कि कितना भारत में लोग इससे प्रभावित होते हैं तो काफी बड़ी संख्या है।
2: मैम, इंडिया इज एंडेमिक फॉर मोस्ट ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीज। आप मलेरिया ले लीजिए, चिकनगुनिया ले लीजिए, डेंगी ले लीजिए, लिशमानियासिस ले लीजिए, या फिर आप जिका फीवर और येलो फीवर कम रैम्पेंट हैं, बट इंडिया इज एंडेमिक फॉर दीज डिजीजेस बिकॉज हम ट्रॉपिकल कंट्री है, वी आर नियर दी हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट, तो वहां पे जो ये मच्छर हैं, जो ये मस्कीटोज हैं, इनका ब्रीडिंग बहुत ज्यादा है, सो वी हैव हाई नंबर ऑफ दीज वेक्टर्स।
1: तो इस कारण से जब ये हमें इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित कर रहे हैं तो हमें इनके बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना बचाव भी इनसे कर पाएंगे। तो आप लोगों ने सुन लिया कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है हम पूरी तरह से इस पे डिवोट करेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन सी हैं और ये कौन कौन सी बीमारियां हम लोगों के अंदर यानी इंसान के अंदर पैदा करती हैं और उससे हमें क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से हम इससे बचाव भी कर सकते हैं। इसमें खासतौर पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा गाना सुनेंगे और फिर लौट कर आते हैं और ढेर सारी बातें होंगी ये सब बीमारियों पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, इसी तरह से सुनते रहिए, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, नाचने का मन है तो नाच लीजिए, छम छम छम छम, कोई मना नहीं कर रहा है, खुश होइए, नाचिए, गाइए, आपको मजा लेना चाहिए, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। लेकिन बस ध्यान ये रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ना बिगड़े, और इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, रेडियो डॉक्टर सुनना है जो हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं FM रेनबो 102.6 पर दोपहर 3 बजे, और साथ ही साथ इसका प्रसारण होता है प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। तो आप लोगों ने विषय तो सुन ही लिया है, आज हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पे बात कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता है डॉक्टर साहब जो लाइन पर जुड़ गए, फोन लाइन पर, कुछ पूछना चाहते होंगे तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार,
1: मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी जिला गाजीपुर।
0: जी यामीन जी, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
2: नमस्ते जी।
1: मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे बरसात का मौसम हो गया तो इसमें मच्छर वगैरह भी ज्यादा हो जाते हैं, तो डेंगू वगैरह बुखार भी चलता है
2: जी,
1: तो ये इसका घर पे रहकर भी उपचार किया जा सकता है डेंगू का, या हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है?
2: देखो, जो डेंगू होता है ना वो 3 फेजेज में होता है, ठीक है। एक होता है कि जो माइल्ड डेंगू है, फिर मॉडरेट सीवियर। तो माइल्ड वाला जो डेंगू है उसके लिए आपको एडमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। माइल्ड वाला हो गया कि आपको फीवर हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, लेकिन कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है, जैसे पेट दर्द हो गए, उल्टी हो गए, या फिर ज्वाइंट स्वेलिंग्स हो गई, या फिर पीलिया होने लग गया, या फिर सांस में दिक्कत होने लगी। तो अगर ऐसे कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है और प्लेटलेट आपके 50,000 के ऊपर है या कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो फिर आप घर रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर दिक्कत वाली चीजें आती है, जैसे जो हमने रेड फ्लैग साइंस भी डिस्कस किया, या प्लेटलेट 50,000 के नीचे जाता है, या कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, देन ऑब्वियसली पेशेंट को भर्ती कराना बेटर है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। अदरवाइज ट्रीटमेंट के लिए आपको घर में रहिए, अपना अच्छे से हाइड्रेशन करिए, दवाई पैरासिटामोल लीजिए और हाइड्रेशन अपना मेंटेन करिए।
0: तो ये जो आपने बताया सिर्फ डेंगू के केस में है कि ये चिकनगुनिया मलेरिया के केस में भी यही चीज लागू होती है?
2: चिकनगुनिया के केस में भी आप ये कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। मलेरिया के में भी माइल्ड मॉडरेट और सीवियर मलेरिया होता है, लेकिन उसके रेड फ्लैग साइंस डिफरेंट है। मलेरिया में जैसे आपका ये होता है कि जॉन्डिस अगर बहुत बढ़ गया या उल्टियां आ रही हैं, और अगर लिवर एंजाइम्स हमें देखने होते हैं वो बहुत डीरेंज हो रहे हैं, ये तो लिवर का हो गया। उसके अलावा अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो वो इंडिकेटर है कि कहीं पे खून टूट रहा है, रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं। या जो मलेरिया उसमें सिर्फ प्लेटलेट्स कम नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स और जो आपके जिनको हम इम्यून प्रोटेक्टिव सेल्स लिम्फोसाइट्स बोलते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो अगर वो गिर रहे हैं या फिर आपका यूरिन ब्लैक हो रहा है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तब डेफिनेटली मलेरिया ज्यादा सीवियर है एंड यू डेफिनेटली आपको फिर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर माइल्ड मलेरिया है, सिर्फ ठंड के साथ ब्रक्सिज्म, दांत किटकिट के साथ अगर बुखार आ रहा है, और अगर आपको कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, तो एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट लेके आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं
0: जी। तो जैसे आपने बताया

0: खासतौर पर जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भारत में है वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ही है। तो इन तीनों का हम अलग अलग अगर समझें कि क्या उनमें सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है, एक शॉर्ट में और एक आम भाषा में अगर हम समझाना चाहें तो।
1: एक तो इनके वेक्टर्स डिफरेंट हैं, जैसे मलेरिया के लिए हमारे पास फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, डेंगू चिकनगुनिया के लिए हमारे पास एडीज होता है। तो एक तो इनके वेक्टर्स मस्किटो हैं बट डिफरेंट है, एडीज डे टाइम मस्किटो है, मलेरिया वाला नाइट टाइम मस्किटो है। तो एडीज वाला अगर आप देखोगे कई बार आपके घर में व्हाइट ब्लैक स्ट्राइप्स होती है मस्किटो के लेग्स पे, सो दैट इज मोर, वो डे टाइम में ज्यादा एक्टिव है, एनोफ्लीज वाला रात को ज्यादा एक्टिव है। एक तो ये डिफरेंस है। मलेरिया जो है ना, मलेरिया आपका मल्टी सिस्टम अफेक्ट करता है, इन द सेंस कि मलेरिया आपके लिवर सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में मल्टीप्लाई करता है और उनको डिस्ट्रक्शन करता है। इस वजह से इट इज लाइक मोर सीवियर, इन द सेंस कि आपको जॉन्डिस होगा, आपका लिवर डैमेज होगा, आपके लिवर एंजाइम्स रेज करेंगे, और अगर आरबीसीज में जाके डैमेज कर रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन राइज फॉल कर सकता है, और उसमें हीम राइज करेगा तो वो किडनी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन में जाता है तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया बोलते हैं, तो उसमें आपके जो आपका सेंसोरियम है, जो आप जैसे अभी मैं और आप नॉर्मल बात करें, पेशेंट बेहोशी में आ सकता है, दौरा पड़ सकता है, तो मलेरिया प्रेजेंट्स लाइक दैट अगर कॉम्प्लिकेटेड है। डेंगू में आपका जनरली जो डेंगू वायरस है वो आपके प्लेटलेट्स पे और कोएगुलेशन पे अफेक्ट करता है, बहुत सीवियर होता है तो आपके ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, तो उसमें लीकेज क्रिएट कर सकता है, तो आपको जगह जगह पे पानी भर सकता है, पेट में भर सकता है, आपके हार्ट के अराउंड जो पेरिकार्डियम है उसमें है, लंग्स में आ सकता है, या बहुत ज्यादा सीवियर है तब ब्रेन में जाता है, ठीक है। और जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया में जो मेनली अगर आप डेंगू और चिकनगुनिया का डिफरेंस देखना चाहेंगे तो डेंगू में आपका रैश और हेमरेजिक जो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज्यादा हैं, चिकनगुनिया में आपका रैश आता है और जॉइंट पेन ज्यादा सीवियर होते हैं, इट इज कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड दैन डेंगू।
0: जी, ऐसा ही एक प्रश्न आया है, उमेश कुमार जी ने लिखा है मैसेज खयाला से, नमस्ते मैडम जी, चिकनगुनिया होता है तो उसके लिए क्या लक्षण है, और ये भी मच्छर के काटने से होता है, इसके लिए क्या करें। तो ये मतलब इन्हें ये दो पता होंगे, ये चिकनगुनिया के बारे में नहीं पता है कि ये भी मच्छर से ही होता है।
1: डेफिनेटली चिकनगुनिया भी एडीज मॉस्किटो से ही होता है।
0: जी, तो हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर।
1: जी
0: हेलो।
2: हेलो नमस्कार, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
2: कैसी हो रिनो पर्यावरण, सब कैसे हैं?
0: सब बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं?
2: मैं बहुत बढ़िया मैम।
0: अपना नाम बताइए तो हम तो, जी
2: डॉक्टर साहब का सोचते तो फिर ठीक हो ही जाते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और ठीक रहना भी चाहिए।
2: मैं मैडम अमित त्यागी बोल रहा हूँ, ग्राम नंगोला।
0: जी जी जी अमित जी, आपसे तो अब रोज बात हो रही है हमारी।
2: और मैं नेत्रहीन दिव्यांग हूँ मैम।
0: जी मैं जानती हूँ आपके बारे में।
2: मुझे पहले तो रेनबो मैसेज देना था कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, और मैं मेरे को ये जो रेनबो के प्रोग्राम है बहुत अच्छे लगते हैं, और जी जानकारी बहुत अच्छी लगती है, गाने बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए रेनबो परिवार को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि हमारे कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, एक सवाल मेरे अभी दिमाग में आया था, पहले नहीं था। तो मैडम जब रात को हम सोते हैं मच्छर लगते हैं तो इसके लिए हमें दवाई का उपयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए?
1: देखो ऐसा है कि मॉस्किटो कंट्रोल मल्टी एजेड वे से होगा, एक तरीके से नहीं होगा। पहली चीज तो आपको घर में साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए ताकि मच्छर ना हो। अगर कहीं पे वाटर स्टोर हो रहा है, वाटर कूलर में या प्लांट पॉट्स में या कहीं भी अगर आप पानी भर के रख रहे हो, उसको कवर्ड रखिए, और कोशिश करिए कि ओपन वाटर खाली ना हो क्योंकि उसमें मच्छर के लार्वा ब्रीड करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश करिए कि कॉटन के कपड़े फुल स्लीव्स कवर करके सोएं। तीसरी चीज आप हाँ जी, अगर आप पजामा जैसे फुल लेंथ लेंगे, और अगर जो आपका नाइट ड्रेस है उसका लेंथ फुल स्लीव्स होगा तो ऑब्वियसली आपका एरिया कवर हो जाता है, मच्छर वहां काट नहीं पाएंगे। बाकी फिर उसके बाद आप कर सकते हैं कि आजकल इंसेक्टिसाइड इम्प्रेग्नेटेड नेट्स आती हैं, आप वो लगा सकते हैं, और बॉडी क्रीम्स आती हैं इंसेक्टिसाइड्स वाली, तो आप वो यूज कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हमारे एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी,
3: शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
0: चट्ठा जी स्वागत है, प्रश्न कर लें।
3: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
1: नमस्कार चट्ठा जी।
3: डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि तीन जो आपने वेक्टर बोन डिजीज के बारे में बताया, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया,
1: जी
3: तो इनके अलावा कोई ऐसे भी वेक्टर बोन डिजीज है जो हमारे देश में विदेश से एंटर करते हैं और जिनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, कृपया बताने का कष्ट करें।
0: जी
1: हमारे देश में जापानीज एनकेफेलाइटिस विदेश से आया, वेस्ट नाइल फीवर आया है, जीका वायरस के केसेस आए थे, तो ऑब्वियसली अगर ये कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर ये थोड़े ज्यादा फेटल हैं।

0: इफेक्ट क्रिएट करते हैं।
1: जी, तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया चट्टा जी, और इन पे भी हम कार्यक्रम करेंगे जरूर। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो मुख्यतः भारत में वेक्टरबॉर्न डिजीजेस हो रही हैं, जिस पर हमारा केंद्र ज्यादा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पर है। तो एक छोटा सा हम गाना सुनते हैं और फिर जल्दी से आते हैं। बहुत खूबसूरत ये गीत है और इस गीत को सुनेंगे और उसके बाद आपके प्रश्नों को भी हम जरूर लेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, करते रहिए हमें फोन और लिखते रहिए हमें मैसेज। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आप हैं अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और मेरे साथ हैं मेरे आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर प्रिंसी जैन। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज।

कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, अभी गीत से पहले हमने कुछ बातें की थी सिम्टम्स के बारे में, कैसे मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया को हम पहचान सकते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जब कंफर्मेशन करना होता है, कुछ सिम्टम्स आपने बताए, पर जब पेशेंट आता है तो आप कंफर्म करेंगे मेडिसिन देने से पहले कि क्या है एक्चुअली उसको, तो ये क्या टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं या कोई और तरीका भी होता है?

0: करते हैं। तो अगर आपको ब्लड फिल्म ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनाते हैं और अगर उसमें आपको मलेरियल पैरासाइट दिख रहा है तो वो कन्फर्म है, या फिर एंटीजन टेस्ट। ऐसे ही जब आप रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो चिकनगुनिया और डेंगू के लिए बाय किट, अगर आपको कन्फर्म, मतलब दिस इज फॉर सेंसिटिविटी, अगर स्पेसिफिसिटी कन्फर्मेशन ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हमारे पास आईजीएम एंटीबॉडीज होती है, वो जनरली 5 to 7 days में डेवलप होती है। इनिशियली हम NS1 एंटीजन करते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है वील स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट, बट अगर हमें फिर भी डाउट है, हमारा डायग्नोसिस नहीं फिट बैठ रहा है, वील गो फॉर दी फर्दर कन्फर्मेशन विच इज डन बाय यूजिंग दी आईजीएम एंटीबॉडीज जो कि एलाइजा मेथड से होती है। तो अगर आईजीएम एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही है तो इट इज द कन्फर्मेशन।
1: जी, तो ये कई केसेस में तो इनकी शायद आवश्यकता पड़ती नहीं होगी, क्योंकि जैसा आपने शुरू में बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग है और कई बार आप घर में भी रहकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, कोई खास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो।
0: देखो, मलेरिया के लिए हमें एंटी मलेरियल्स लेने पड़ते हैं।
1: तो वही मैं एक्चुअली जानना चाह रही थी कि ये कब पता चले। हमारे सुनने वाले हैं वो इस समय सोच रहे होंगे कि अगर ये हमें हो गया तो कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो आप बता रही हैं और कुछ सिम्टम्स नहीं भी होंगे, तो कब वो ऐसा समझे रेड फ्लैग कि अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है हमारा केस।
0: देखो, ऐसा होता है कि जैसे हाई ग्रेड 100 के ऊपर 101-102 डिग्री फीवर आ रहा है, ठंड लग रही है जोर से और दांत किटकिट कर रहे हैं और फीवर जो है जो स्पॉन्टेनियसली उतर जा रहा है विद लॉट ऑफ स्वेटिंग, तो ये जनरली मलेरिया में होता है। अगर कंसिस्टेंटली हाई ग्रेड फीवर चल रहा है या आपको स्किन पे कोई रैशेज आने लग गए तो जनरली ये डेंगू और चिकनगुनिया में होता है। ठीक
1: अच्छा,
0: है। अब आप कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हो, तो अगर आपको जैसे पीले आना शुरू हो गया या सांस में दिक्कत होनी शुरू हो गई या यूरिन ब्लैक होना शुरू हो गया या फिर स्किन पे कहीं रैशेस, जो पेटिकल रैशेस बोलते हैं, अंडरनीथ द स्किन ब्लीडिंग्स होती हैं, वैसा लगा, या गम नोज माउथ से कहीं से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, या आप बैठे से उठ रहे हो और आपको चक्कर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप उठ रहे हो तो बीपी फॉल कर रहा है, तो दीज आर ऑल द रेड फ्लैग साइंस, यू शुड सी द डॉक्टर्स।
1: ये हमें एक मैसेज लिखकर भेजा है यशपाल जी ने द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार शालिनी जी एंड डॉक्टर मैम, टू क्वेश्चन है इनके। वेक्टर बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मस्किटो, वेयर इन्फेक्शन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम
0: एनिमल्स।
1: हाँ, ये एक तो ये क्वेश्चन था इनका, और दूसरा ये है फॉर लास्ट वन ईयर इनकी सीबीसी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, एक्सेप्ट दैट प्लेटलेट काउंट्स जो है वो बहुत कम है, अराउंड 90,000 की रेंज में है। व्हाट कैन बी द रीजन एंड किस तरह से मैं काउंट बढ़ा सकता हूँ प्लेटलेट्स का नेचुरली?
0: सी, जो आपका प्लेटलेट्स कम है ना, वो वेक्टर बॉर्न डिजीज कॉज नहीं लग रहा है आपका, क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिजीज में डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन के साइंस आएंगे, फीवर आएंगे, लिवर इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर अदर, आपका सिर्फ प्लेटलेट कम हो रहा है। तो बेसिकली प्लेटलेट मल्टीपल डिसऑर्डर्स में कम हो सकता है अदर देन इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमन बींग दी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाती है एंड इट अटैक्स आर पर्टिकुलर सेल्स। जो प्लेटलेट आपके लोअर साइड पे है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी एक पार्ट हो सकते हैं, उसके लिए एक अलग वर्कअप करना पड़ता है,
1: तो इनको दिखाना जरूरी है।
0: इनको डेफिनेटली दिखाना चाहिए, हेमाटोलॉजिस्ट जो ब्लड के डॉक्टर होते हैं उनसे ओपिनियन ले सकते हैं।
1: जी जी, ये क्वेश्चन एक अलग सा है पर मैं ले रही हूँ, आप बताएं। परिधि लिख रही है दिल्ली से कि यंग किड्स टेंड टू हैव लाइस इन देयर हेयर, जो जू होती है, इज देयर एनी सीरियस डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू देम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेकंड क्वेश्चन है कि कैन डिजीज ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम टिक्स टू पेट्स इन ह्यूमन एंड ह्यूमन्स। जो पेट, नो सॉरी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि टिक्स जो पेट्स में होती हैं उनसे।
0: एग्जैक्टली, ये आई कम टू दैट। लाइस, फर्स्ट आई आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लाइस कैन कॉज पेडिक्यूलोसिस, सो स्कैल्प में भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, दे कैन क्रिएट इन्फेक्शन इन द स्कैल्प। जनरली दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, देयर इज नो वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर दैट। वन थिंग इज दिस,
1: वेक्टर नहीं है इसमें कोई,
0: उसमें वेक्टर नहीं है, वो you taking your kid in your hand या you talking to someone close,
1: direct
0: right?
1: contact,
0: so it can't be transferred. एक तो ये है, दूसरा आपका question था regarding the ticks. So that is a good question. उससे they can also cause vector borne diseases such as rickettsial fever हो सकता है, Lyme's disease हो सकती है, borreliosis वगैरह हो सकता है।
1: तो ये pets में अगर
0: अगर है तो ticks से आपको transmit हो सकता है। So keep your pets clean and vaccinated.
1: तो ये बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये।
0: इन्होंने
1: लिखा है मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से, अगर 3 या 4 दिन में बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करें, क्या इसके बाद कोई विशेष ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? कुछ लोग कमजोर प्रवृत्ति के पतले दुबले होते हैं, ऐसे में बुखार हो जाए, भूख नहीं लगे, कुछ भी खाने से अगर उल्टी होने लगे, कुछ भी खाने की इच्छा ना हो, ऐसे में दवा कैसे और किस तरह खिलाएं? जैसे कहा जाता है ना, दवाई खाने से पहले कुछ खाना जरूरी है, पर वो खा ही नहीं पा रहा है। तो ये इनका प्रश्न है कि डॉक्टर

0: कहते हैं कुछ खाओ पहले और फिर दवाई लो, तो अगर वो खा ही नहीं रहा है तो हम क्या करें। नमस्कार भी बहुत भेज रहे हैं वो आपको भी और मुझे। तो
1: नमस्कार जी, देखिए ऐसा होता है कि अगर आपको फीवर है, 3 डेज तक हम वायरल फीवर को ज्यादा ट्रीट नहीं करते हैं, बस फीवर कम करने के लिए पैरासीटामोल की जो गोली होती है वो देते हैं, ठीक है, या फिर कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, नॉर्मल वाटर में कपड़ा डिप करके बॉडी पार्ट्स पे रख के टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फीवर के साथ क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, तो उनकी वजह से आपका फीवर भी हो सकता है, आपकी भूख भी कम हो सकती है और नोजिया वॉमिटिंग उल्टियां भी हो सकती हैं। तो अगर फीवर डाउन जाएगा तो ये चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी, बट बियॉन्ड 3 डेज अगर फीवर हो रहा है और बाकी जो हमने रेड फ्लैग साइंस मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया के लिए बात की उसमें जैसे आप कह रहे हो वॉमिटिंग परसिस्टेंट हो रही है, यू शुड सी द डॉक्टर। बट अगर कभी कभार जैसे इनिशियल फर्स्ट वॉमिटिंग हुई तो आप उल्टी की दवाई दे सकते हो, पेरिनॉम के नाम से भी आती है, बट वो मतलब ये है कि अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड सी द डॉक्टर। और जो आप कह रहे हो कि जो आप खाली पेट दवाई मतलब वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ज्यादातर ड्रग्स होते हैं उनसे पेट में गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस रहते हैं, तो वो ऑलरेडी पेशेंट वॉमिट कर रहा है, अगर गैस्ट्राइटिस और हो गया तो वॉमिटिंग्स बढ़ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा अगर खा नहीं पा रहे तो फ्लूइड वगैरह लेके कुछ, या एक छोटा सा जैसे 1 बिस्किट विद हेल्प, तो थोड़ा सा कुछ लेके आप दवाई लोगे तो वो गैस्ट्राइटिस वाले पार्ट से आप बच पाओगे।
0: जी जी, तो ऐसा नहीं है कि पूरा भरपेट भोजन करना है फिर दवाई लेनी है,
1: एक दो बिस्किट्स ले लीजिए, थोड़े फ्लूइड्स ले,
0: बिल्कुल थोड़ा बहुत, और फ्लूइड की बात आपने की है बहुत अच्छी बात है कि कुछ पी लें वो और उसके बाद दवाई ले लें। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आपने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और खासतौर पर जब हम डेंगू की बात करते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में हम आमतौर पर सुनते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाते हैं, और जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उसका सिम्टम क्या होता है, अगर टेस्ट कराना ही एक सिम्टम है कि सबसे पहले टेस्ट कराओ तो पता चलेगा डाउन हो, या कुछ अपने आप से पता लगता है, कोई वीकनेस या कोई ऐसी फीलिंग होती है?
1: मैम जो आप कह रहे हो, जनरली प्लेटलेट्स जो होते हैं ना डाउन होने का एज सच सिम्टम नहीं होता। डेंगी फीवर अगर हो रहा है और इट इज कॉल्ड अ ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि आप इतने वीक फील करते हो, इतना बॉडी एक मांसपेशियों में दर्द होता है और इतने जॉइंट पेन्स होते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली वीक लगने लग जाते हैं।
0: अच्छा,
1: बट प्लेटलेट जो होते हैं ना, जैसे कुछ पेशेंट्स में प्लेटलेट हम कब डाउन बोलते हैं, जब बिलो 1 लाख है, तो कुछ पेशेंट्स में वो अबव 1 लाख रहते हैं, कुछ पेशेंट्स में बिलो 1 लाख जाते हैं। अप टू 50,000 जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कई बार क्या होता है जैसे बिलो 50,000 जा रहे हैं, कुछ पेशेंट को 50 to 1 लाख के बीच में भी स्पॉन्टेनियस ब्लीड्स आने लग जाते हैं, नाक से ब्लीड आ रहा है, या आप ब्रश कर रहे हो थोड़ा गम ब्लीड कर रहा है, या स्पॉन्टेनियस आपको स्किन के नीचे जो वो ब्लू ग्रीन रैशेस पड़ जाते हैं वो हो गए, उस तरह से जैसे आप कई बार क्या होता है कि आपको कुछ नहीं हो रहा, आप फीवर हुआ, आप वॉक कर रहे हो, आप थोड़ा सा हिट करे बेड से किसी से तो वहां वो रैश आ गया, देन वी शुड बी वेरी अलर्ट कि दिस इज नॉट नॉर्मल।
0: अच्छा,
1: उस वक्त हमें डॉक्टर को देखना चाहिए। और प्लेटलेट मॉनिटर, अगर आपका प्लेटलेट 1 लाख और 50,000 के बीच में भी है तो डेंगी चिकनगुनिया में आपको, स्पेशली डेंगी में आपको डेली प्लेटलेट मॉनिटरिंग करनी चाहिए,
0: करनी चाहिए। तो ये जब प्लेटलेट अगर पता चल जाता है कि ये डेंजरस लेवल पे है तो फिर क्या किया जाता है, किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाता है?
1: सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि हमें पेशेंट को एडमिट करना और ऑब्जर्व करना कि कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। बिलो 50,000 भी हम इन्फ्यूज नहीं करते, बट इफ इट इज गोइंग बिलो 10,000 to 50,000 में वी एडमिट द पेशेंट, वी ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी ब्लीडिंग, उनका रेगुलर बीपी टेम्परेचर वगैरह हम मॉनिटर करते रहते हैं और उनको फ्लूइड्स देते रहते हैं। डेंगी में थर्ड स्पेस लॉसेस बोलते हैं, वो जैसे अगर आपके वेसल से निकल के पानी हार्ट के आसपास इकट्ठा हो गया या पेट में इकट्ठा हो गया तो दिस इज कॉल्ड, या लंग्स में इकट्ठा हो गया तो थर्ड स्पेस लॉसेज होते हैं, तो उसमें आपका बीपी वगैरह फॉल करता है, तो हम उस चीज को हाइड्रेट करते रहते हैं, पेशेंट को देखते रहते हैं। बट बिलो 10,000 जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम प्लेटलेट्स इन्फ्यूज कर दें क्योंकि उसमें ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है।
0: जी, आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, हम एक गीत सुनेंगे अब यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौट कर आएंगे। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, आपकी फोन कॉल्स हम तक पहुंच रही हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए। आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। तो इसी तरह से कार्यक्रम में हम और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपने दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की। एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो
1: जी। हेलो
0: जी।
1: सबसे पहले तो रेडियो डॉक्टर की डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंकर शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार।
1: और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से। उम्र मेरी 48 वर्ष है
2: जी।
1: डॉक्टर साहिबा, सवाल मेरा ये है कि इन दिनों मैम हीट ह्यूमिडिटी इतनी पड़ती है बहुत ज्यादा, और मुझे ना क्या है कि हीट ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, मैं व्हाइट स्किन का मालिक हूँ।
2: क्या जी एक बार रिपीट करेंगे, किस चीज के प्रॉब्लम है?
1: व्हाइट स्किन, व्हाइट जो फॉर्नर होते हैं जैसे।
2: अच्छा, विटिलाइगो आप बोल रहे हो?
1: ऐसे मेरी स्किन है मैम
2: जी।
1: ह्यूमिडिटी मुझे कतई ही बर्दाश्त नहीं होती है
2: जी जी।
1: तो अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि मच्छर ही नहीं मैम, इसमें बरसाती कीड़े और हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ
2: जी।
1: उससे होता ये है कि पेट में गैस जलन, और दूसरी चीज कि मैम फ्रिज में जो खुजली और आंखों में जलन, चुभन और पैरों में फंगस, जिसे हम कुकुरमुत्ता रोग कहते हैं ना।
2: अच्छा।
1: तो इन ये कुछ परेशानी से जो है दो चार हो रहा हो, अगर कुछ बारे में प्रकाश डाले, अगर घरेलू उपाय हो तो और बढ़िया। हॉस्पिटल में बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती
0: है। चलिए डॉक्टर साहब समझ गई हैं, आपको जवाब दे रही हैं, आप रेडियो पे सुने
2: जी। देखिए, एक तो वही है कि आपको अगर लाइट से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के अपने आपको कवर करके रखिए, और दूसरी चीज है कि अम्ब्रेला लेके निकल सकते हैं। बाकी आपका जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए आपको हाइजीन मेंटेन करनी होगी, और अगर ये है कि आपको फिर भी फंगल इन्फेक्शन नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आपको थोड़ा ड्राई रखना होगा। फंगस ग्रो करती है वेट एरियाज में, जैसे हाथों के फिंगर्स के बीच की स्किन हो गई या फिर ग्रोइन एरिया हो गया, तो क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। पाउडर यूज कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, स्किन डॉक्टर को
0: जी। हमारे पास एक मैसेज भेजा है पुरुषोत्तम पाटिल जी ने जलगांव महाराष्ट्र से। इन्होंने दो प्रश्न किए हैं डॉक्टर साहब आपसे, और ये कह रहे हैं कि आई सफर्ड फ्रॉम चिकनगुनिया इन 2006।
2: ओके।
0: व्हेन एवर डेंगू मॉस्किटो बाइट्स मी, आई फील ज्वाइंट पेन एंड पेन इन फिंगर्स ऑन द साइड वेयर द मॉस्किटो बाइट्स। अब इनको ये कैसे पता है कि डेंगू ही का मच्छर काट रहा है? मुझे लगता है शायद मस्किटो ही लिखना चाह रहे होंगे कि जब भी मच्छर काटता है तो इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा दर्द हो रहा है। तो क्या इसका कारण यह है कि मुझे चिकनगुनिया हुआ था? एक तो ये प्रश्न है इनका, आप इसका दे दें, मैं दूसरा प्रश्न बाद में ले लूं।
2: 2006 में हुआ था, 26 आने।
0: हाँ जी जी जी, वही
2: बहुत अनलाइकली रिलेशन लगता है, दिस मे बी मोर ऑफ अ फियर यू हैव। आई अग्री, आप सही कह रहे हो, कई बार चिकनगुनिया के पेन्स लंबे खिंच जाते हैं, दो दो तीन तीन साल तक खिंच जाते हैं, बट 20 years is a very long time.
0: इतना नहीं गिर सकते जी। और दूसरा इन्होंने प्रश्न किया है कि डेंगू में जब प्लेटलेट्स रिड्यूस होते हैं, ये तो हमें पता है, तो हम उनको नेचुरली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ? इन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं, तो इस पे कुछ आप कहेंगे?
2: दिस क्वेश्चन आई वांट टू आंसर इन द वे दैट आप जो बात कर रहे हो दैट डजंट गो विद एलोपैथी। इन एलोपैथी सर हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है जो प्लेटलेट्स आपके राइज करा पाए। एज योर इन्फेक्शन सेटल्स, एज एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी वायरस सेटल, जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम रिकवर करता है, प्लेटलेट्स ग्रेजुअली राइज करना शुरू कर देते हैं, एंड देन इट स्टेज रिजन। बट ये जो चीजें हैं कि जो प्लेटलेट राइज कराते हैं, गोट्स मिल्क हो गया, पपाया, आई हर्ड, वी हैव नो साइंटिफिक बेसिस, वी हैव नो साइंटिफिक स्टडीज टू सपोर्ट देम
0: जी। और ये लिखकर हमें भेजा है हमारे एक श्रोता ने, उमेश कुमार खयाला से। इनका एक प्रश्न पहले भी लिया था कि ये जो मच्छर के काटने से बुखार होता है, इसको जब दवाई शुरू होती है या इसका पीरियड कितना होता है, कब कितने दिन में ये ठीक होता
2: है? जनरली आप मलेरिया ले लो या डेंगू चिकनगुनिया ले लो, इट इज 3 to 7 days।
0: अच्छा,
2: आपके विद बाइट ऑफ मस्किटो एंड अपियरेंस ऑफ सिम्टम्स में।
0: और ये प्रश्न हमें लिखकर भेजा है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू मैडम शालिनी मित्तल जी एंड हर टीम हु आर वर्किंग ऑन सच वंडरफुल प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन इनका ये है कि विच पीपल आर मोर वल्नरेबल टू दीज डिजीजेस।
2: ओके, तो आप हाई रिस्क ग्रुप्स की बात कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो हाई रिस्क ग्रुप्स में हमारे पास इन्फेंट्स आते हैं, बच्चे लेस देन 1 ईयर, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड एज, बाकी जिनको कोमॉर्बिडिटीज है जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, किडनी डिजीज हो गई, या जिनको हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिनको बोलते हैं ना सिकल सेल एनीमिया होता है, या फिर कुछ मतलब हीमोग्लोबिन की डिजीजेज होती हैं, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, एचआईवी पॉजिटिव हो गए, एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस है, या एक्टिव हेपेटाइटिस बी सी, दीज आर ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, या फिर कुछ पेशेंट जो स्पेसिफिक दवाइयां ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, वो ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम लो करते हैं, या फिर जो जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है या मेलिग्नेंसीज हैं, जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रहे हैं जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, आइसोथायोप्रिम, देर आर एन नंबर ऑफ इम्यूनो, जैकस्टैट इनहिबिटर्स, बहुत सारे होते हैं तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे, या फिर जो ऑलरेडी एंटीकोएगुलेशन ले रहे हैं जैसे जिनको हार्ट वाल्व्स हैं या जिनको कोई थ्रोम्बोसिस की बीमारी है, सो दीज आर ऑल हाई रिस्क ग्रुप्स, दे शुड बी मोर केयरफुल अबाउट द डिजीजेस, एनी डिजीज इनफैक्ट,
0: मतलब कोई भी और अगर आपको डिजीज है, मुझे ये समझ में आया कि कोई भी और डिजीज है
2: एज ग्रुप तो, या फिर कोई और सीवियर डिजीज है, या कोई आप ऐसी मेडिकेशन ले,
0: इम्यूनिटी प्लेज अ मेजर रोल,
2: एब्सोल्युटली मैम।
0: ये हमें लिखकर भेजा है सुशील ठाकुर जी ने दिल्ली से, इनकी उम्र है 41 इयर्स और लिख रहे हैं जब भी मैं पैदल चलता हूं तो टांगों में दर्द होता है, डॉक्टर को दिखलाया तो उन्होंने सिर्फ मुझे पैरासिटामोल दे दिया, तो क्या कहीं से ये रिलेटेड हो रहा है हमारे आज के जो टॉपिक है या कुछ अलग ही है ये?
2: ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देर आर एन नंबर ऑफ कॉजेज जिससे टांगों में दर्द हो सकता है, मोस्ट कॉमन इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी है।
0: अच्छा,
2: सो पैरासिटामोल बेसिकली वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है जो आपके दर्द को कम करने में हेल्प करती है, दैट्स व्हाई उन्होंने दिया होगा, अदरवाइज आप एक बार ऐसा तो नहीं

0: कि आपके चलते चलते चप्पल निकल जाती है, आप गिर जाते हो, बैठे से उठ नहीं पाते, अगर वो सब सिम्टम्स नहीं तो नॉन स्पेसिफिक मसल पेन्स जैसा ही लग रहा है।
1: अच्छा, तो इन्हें कुछ ऐसा खास कुछ करने की जरूरत नहीं है।
0: इट डजंट लुक कि ये बहुत स्केरी है, बट फिर भी आप एक बार इवेल्युएट करा सकते हो अपने कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स और
1: विटामिन डी का चेक करा ले।
0: एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये कि आप अपने रेगुलर रूटीन में ना हर इंडियन को एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी चाहिए। वी आर नॉट डूइंग इट,
1: दैट रियली एक मेजर रोल है।
0: वो इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, स्ट्रेस लेवल्स भी कम करता है और मसल्स एंड बोन मास बिल्ड करने में भी हेल्प करता है।
1: यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स आए हैं अभी तक डॉक्टर प्रिंसी, वो हर कार्यक्रम में हमारी यही बात हुई है कि एक्सरसाइज का एक मेजर रोल होता है।
0: लाइफ
1: स्ट्रेस है और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो भी हैं हमारी, वो सारी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड तो हैं।
0: मेजरली नाउ अ डेज इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रादर देन दीज इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीजेस, और उसमें आपके लाइफस्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
1: जी, तो इसी तरह से कार्यक्रम में हम और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ।

0: रेडियो डॉक्टर में आप हैं अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और मेरे साथ हैं मेरे आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर प्रिंसी जैन। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। हमें मोहम्मद इम्तियाज लिख रहे हैं कीर्ति नगर नई दिल्ली से, नमस्कार। तो नमस्ते कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने बस ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि मैं भी कार्यक्रम सुन रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहां पर जो मैं चाह रही थी कि हमारे सभी सुनने वालों तक आप पहुंचाए कि ट्रीटमेंट की तो हमने बात की, सिम्टम्स की भी हमने बात की, हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, प्रिवेंशन जो कि एक बहुत मेजर एक डिजीज के लिए होता है कि प्रिवेंशन किया जाए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर हम सही तरीके से कार्य करें तो हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को तो प्रिवेंट कर ही सकते हैं।
1: मैम, दिस इज अ गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोग्राम
0: विच वॉज केप्ट फॉर द लास्ट।
1: थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। बेसिकली जो मेन हमारा जो समरी है ना, इट गोज विद इट, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल इफ वी वर्क ऑन द प्रिवेंशन। बेसिकली हमारे वेक्टर्स क्या हैं भाई, आप मेनली देख रहे हो मेन चंक इज फ्रॉम दी मस्किटोज। सो इफ वी प्रिवेंट द स्प्रेड एंड द ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कंट्रोल हो जाएंगे। सो फॉर दिस वी कैन गो फॉर पर्सनल मेजर्स एंड देन वी हैव जनरल पब्लिक मेजर्स, तो उसमें बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल होता है। तो पर्सनल मेजर्स में हम लोग अपनी, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक, कि हम मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स लिक्विड्स यूज कर सकते हैं, रूम में कॉइल्स मैट्स यूज कर सकते हैं, अपने आप को फुली कवर्ड रख सकते हैं, और स्लीपिंग के टाइम पे खुद को या बच्चे को मॉस्किटो नेट्स या मॉस्किटो क्रीम लगा के कर सकते हैं। दिस इज द पर्सनल मेजर। फॉर द कम्युनिटी वी हैव बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दिस वेक्टर बॉर्न डिजीजेस एंड हाउ टू कंट्रोल देम। वी कैन टेक डिफरेंट कम्युनिटीज एंड स्प्रेड थ्रू द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो कम्युनिटी में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी हो रहा है कि अगर आप देखो कि हम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी आर लिविंग इन अ ट्रॉपिकल कंट्री जो ऑलरेडी एक ससेप्टेबिलिटी है टुवर्ड्स द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटोज बिकॉज हमारा बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है। दूसरा, इफ यू लुक एट इट, वी आर फास्टली हेडिंग टुवर्ड्स द मेजर डिफॉरेस्टेशन। सो डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ दीज माइक्रोब्स, ऑल दीज पैरासाइट्स इज ऑल्सो लीडिंग, एंड दिस फास्ट अर्बनाइजेशन, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कि इतना ज्यादा हमारे पास अब ये डिजीजेस का लोड आ रहा है। तो इफ वी ग्रो मोर प्लांट्स, इफ वी रिप्लेस दोज फॉरेस्ट, एंड अर्बनाइजेशन को भी अगर हम एक कंट्रोल रेट पे चलाएं, दैट वुड बी वन स्टेप टूवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज। देन इन इंडिविजुअल, एट इंडिविजुअल लेवल, अपने घर में हम लाइक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि कहीं भी पानी भर रहा है या आप कहीं भी देख रहे हो कि ब्रीडिंग ग्राउंड मस्किटो ब्रीड कर रहे हैं, आप उन प्लेसेस को खाली कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। देन आप यूज कर सकते हो कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स में आपके जैसे लार्वी वोरस फिश होते हैं,

0: अच्छा
1: और आउटसाइड द हाउस आप केमिकल्स यूज कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यूज होते हैं, मेलेथियन, ऑर्गेनोक्लोरीन्स यूज होते हैं, डीडीटी पहले यूज किया जाता था, अब कंपेरेटिवली कम यूज हो गया, बट डीडीटी इज वन ऑफ द केमिकल दैट कैन बी यूज, या फिर प्रोपॉक्सर के नाम से कार्बामेट्स आता है, वो आपके जो क्रीम्स यूज होते हैं ना उसमें भी होता है, जो मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स होते हैं. सो दीज मेजर्स यू कैन यूज टू प्रिवेंट.
0: जी काफी विस्तार से आपने बताया कि किन किन, क्योंकि एक्चुअली जैसा आपने कहा इस कार्यक्रम का यही है कि हम कैसे इससे बचाव करें, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जरूरत है सिर्फ अवेयरनेस की कि आप ये जानें कि किस तरह से हम किस चीज को, आपने बताया बहुत सारे तरह से केमिकली भी, ऑइंटमेंट भी,
1: कम्युनिटी लेवल पे भी, वी कैन हैव एन नंबर ऑफ, एंड वी हैव एन नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर गोइंग ऑन.
0: जी जी
1: विल बी कवरिंग.
0: बिल्कुल, मैं ये किसी और कार्यक्रम में हम बात करेंगे, अब तो समय इतना नहीं है, कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे मेजर्स ले रही है कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, वो भी मैनमेड ही होते हैं कई बार, तो
1: एज वी जस्ट स्पोक अबाउट देम कि एक तो एक हमारी कंट्री की लोकेशन, वी आर द ट्रॉपिकल कंट्री, वी हैव अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सो दैट इज वन थिंग. अगर आप कश्मीर वगैरह में जाके देखेंगे, वी डोंट हैव दोज मस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड, सो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ आर कंट्री इज हॉट एंड ह्यूमिड, दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग अगेन डिफॉरेस्टेशन.
0: जी
1: सो प्लीज अटेंशन पे करिए फॉर दी ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड प्लांटेशंस. और एक जो अर्बनाइजेशन इतना रैपिड रेट पे हो रहा है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर.
0: इसको भी जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो अवेयरनेस है वो इस दिशा में भी हो रही है, तो इसमें भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और इस चीज को फैलाना चाहिए कि कोशिश करें कि कम से कम पेड़ कटें, आप लगाएं पेड़ों को,
1: ग्रो करिए. अगर आप पेड़ बेसिकली अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो आप इनका हैबिटेट रिप्लेस कर रहे हो, तो दे विल गो बैक टू द हैबिटेट, दे विल नॉट स्टे इन आवर होम.
0: बिल्कुल सही बात है. और आज हमने विस्तार से बात की वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की, तो चलते चलते कोई और मैसेज आपका हो या कुछ आप बताना चाहें कि ट्रीटमेंट के बाद, जैसे ट्रीटमेंट हो जाता है और लोग रिकवर हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि दोबारा ना हो, और सेकेंडली कुछ ऐसा खान पान रख सकते हैं जिससे कि वो जल्दी से कवर अप हो जाए उनकी वीकनेस.
1: मैम ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो जैसे डेंगू चिकनगुनिया के फीवर हो गए, इवन पोस्ट मलेरिया भी, पेशेंट फील लॉट ऑफ वीकनेस.
0: यस
1: सो जनरली एक तो हमारा इनके साथ एसोसिएटेड लिवर डिसफंक्शन होता है, तो दैट इज मेन कॉज. तो आप ये कर सकते हो कि एक तो अपने आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रखो, टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स विद सॉल्ट, प्लेन फ्लूइड्स विल नॉट हेल्प, टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, मेंटेन गुड ब्लड प्रेशर, और एक न्यूट्रिशियस डाइट होती है. ऐसा नहीं है जैसे आजकल बच्चे हैं जंक फूड खा रहे हैं सर. आप रिकवर करते हो, टेक लॉट ऑफ, टेक अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट. आप सिर्फ ये नहीं है कि चपाती खा रहे हो, सिर्फ ये नहीं है कि वेजिटेबल्स खा रहे हो, फ्रूट्स इंक्लूड करिए, एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करिए, मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हो अगर डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली आप रिकवर कर जाते हो तो कर जाते हो, बट इफ द डॉक्टर इज कॉलिंग यू फॉर सम फॉलो अप, प्लीज डू दैट फॉलो अप, डू नॉट स्किप दैट.
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई. अवेयरनेस के साथ साथ आप अपनी डॉक्टर को भी जरूर सुने, उनको इग्नोर ना करें. अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको आना है
1: फॉलोअप
0: के लिए, तो जरूर पहुंचे. तो आज का कार्यक्रम हमें यहीं समेटना होगा. आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और प्रश्न पूछे और जवाब आपको बिल्कुल सही सही मिले. हमारी आज की रेडियो डॉक्टर रही डॉक्टर प्रिंसी जैन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. और ढेर सारी बातें डॉक्टर साहब ने, काम की बातें हम सबको बताई, और उम्मीद है कि ये आपको आज का रेडियो डॉक्टर का अंक पसंद आया होगा. अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप health@aaidelhi.com पर हमें लिख सकते हैं. और अब हमें इजाजत लेनी होगी, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए, और मेरी तरफ से स्वीकार करिए नमस्कार. और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार.
1: नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक स्थगित। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय रेलवे ने 440 करोड़ रुपए की लागत से निमपुरा पश्चिम आउटर कैबिन और दक्षिण पूर्वी रेलवे के मिदनापुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

आज हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन, नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। आज हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जाबाज पायलट इसका हिस्सा है।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। माँ भी एक अकम्प्लिश एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी रहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोल वेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। ये एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से

इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। यह टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के 3 अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी हुआ। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशंस दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण

के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था। पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ?

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट

पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस के कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग फाइटर क्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रेनक मिशन्स में जाने लगे।

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के, उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे। जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसें उड़ाने भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसमिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। कुछ मिशंस तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटन टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंग्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनोसेंस मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे, लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने उस चुनौती को सामना किया और इंडियन एयरफोर्स ने जहां जहां हो सका वहां मदद पहुंचाई।

आज हम संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर। लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे, खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन, आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

नमस्कार, समय आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिंदी में मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक स्थगित। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री मनोहर लाल ने बताया कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से अधिक हो गई है। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया। कहा, सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के हिंदी में मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं मुझे, मैं मीना जैन अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन कार्यक्रम सैटेलाइट्स ऑफ कोर्स मैं मिस ब्राइट वो तो हूँ ही आपके साथ मिलकर पिछले हफ्ते मैनिफेस्ट किया था ना कि खिड़की के बाहर झांको क्या मौसम आया है, तो मौसम आ ही गया। चलिए मिलकर एक और मैनिफेस्ट करते हैं कि कुछ समय तक ये मौसम यूं ही बना रहे, हम और आप खुश स्वस्थ और मस्त ऐसे ही रहे।

मौसम तो वाकई बहुत खूबसूरत आया है दोस्तों, और फिर आज का दिन उसका कहना ही क्या। हम यहाँ भारत में हर साल 23 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, क्योंकि 1927 में इसी दिन देश में हुआ था पहला रेडियो प्रसारण, और उसकी स्मृति को हम हमेशा संजो के रख सके, उसका मान कर सके, उसके महत्व को समझ सके, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। ये दिन भारत में प्रसारण उद्योग के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और उन अग्रदूतों को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने भारत को मीडिया और संचार के क्षेत्र में अग्रणी बनने में सक्षम बनाया। मेलविल डी मेलो, रामानुज प्रसाद सिंह, विनोद कश्यप, देवकी नंदन पांडे, इंदु वाही, विजय डैनियल्स, सुरोजीत सेन, सुशील झवेरी, ये कुछ ऐसे नाम हैं दोस्तों जिनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। दिल में उतर जाए जो वो आवाज तुम्हारी है, सुनकर जिसे रूह खिल उठे वो राग तुम्हारी है। लफ्ज़ तो बस एक जरिया है मेरे जज्बात समझने का, मुझे तो सुकून तुम्हारी उस मीठी आवाज से मिलता है। असर है तेरी आवाज में किसी जादू की तरह, सुनते ही ठहर जाती हैं धड़कने मेरी एक पल के लिए। कोई तो बात है तेरी इस आवाज में सनम, जो काने से होकर सीधे दिल को छू जाती है। दोस्तों यूं ही नहीं इन्हें नेशंस वॉइस कहा गया, वेदर इन जॉय और इन ग्रीफ। जी हाँ, ये वो सम्मानित न्यूज रीडर्स हैं, अटूट विश्वसनीय रीडर्स हैं, जो कि क्लियर, एलिगेंट, फ्लॉलेस पढ़ते थे। फॉर्मल क्रिस्प आवाज थी, अथॉरिटेटिव प्रेजेंटेशन था, ग्रिपिंग थी, पैशनेट था, मतलब क्या ही कहूँ क्या ना कहूँ। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं भी इसी एक ब्रॉडकास्टिंग दुनिया का हिस्सा हूँ। जी दोस्तों, तो आज के दिन की हम सभी को, हमारे सुनने वालों को और हमें बहुत बहुत बधाई। क्यों बनती है ना दोस्तों।

आज का दिन इतना खास और स्पेशल है ना हमारे लिए कि हम इस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन दो तीन बातें और हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग और यू नो ऐसी वाह ऐसी वाली लगती है। ये तो आप जानते हैं कि आज पहला प्रसारण हुआ था, और ये भी आपको पता है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा बॉम्बे से किया गया था। दोस्तों 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, और फिर 1956 में ऑल इंडिया रेडियो ने आकाशवाणी नाम अपनाया। है ना कमाल की बात, और अच्छी बात है ना। और फिर 1957 में विविध भारती सेवा शुरू की गई। क्या इसके बारे में आपसे कुछ कहना जरूरी है? नहीं ना, मुझे पता है कि ये आपके दिल के बहुत करीब है।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: ऐसे कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: खुदा की उस गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है।

भी कोई बड़ा काम शुरू करने लगते हैं तो बहुत स्ट्रेस होता है, शुरू कर रहे हैं कब खत्म होगा, लेकिन फिर एक समय आता है जब इतने लोग मुस्तैदी से काम कर रहे होते हैं तो फिर कंप्लीशन का टाइम सामने नजर आने लगता है। दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली में वजीराबाद रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम इस दिसंबर तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 88% काम टनल का पूरा हो चुका है। जी हाँ, पूरे 74 डेस्क स्लैब का निर्माण हुआ है और तो और 14 एक्सपेंशन जॉइंट्स बनाए जा चुके हैं, 4 का सिर्फ काम बचा है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो 65-70% जो ट्रैफिक है वो सीधा इस डबल डेकर फ्लाईओवर से गुजरेगा, जिसकी वजह से नीचे की सड़क पर केवल लोकल ट्रैवल ट्रैफिक रहेगा और जाम की समस्या में काफी कमी आ जाएगी। गोकुलपुरी से सिग्नेचर ब्रिज तक लोगों को सिग्नल फ्री आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। वाह, क्या बात है।

अक्सर ऐसा होता है जो जनरली जो हाउसवाइफ्स हैं, दिन भर का समय तो कैसे भी कट जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना जाने क्यों एक बेचैनी सी अपने आप अंदर आ जाती है और समझ नहीं आता कि ये समय कटेगा कैसे। और वैसे ही कई बार जो ऑफिस जाते हैं या बाहर काम कर रहे होते हैं जिनकी डे ड्यूटीज़ है, हम अभी सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि बस अब जल्दी से घर जाए या बस अब निकले यहाँ से, लगता ना दोस्तों। और ऐसे में अगर कोई बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा हो तो फिर कितना मज़ा आए ना। लेकिन आपको कैसे पता कि दिल्ली में कहाँ क्या चल रहा है, नहीं आइडिया ना। जल्दबाजी में आपाधापी की जिंदगी में आपके पास नहीं है समय, हम हैं ना आपको यहाँ आकाशवाणी एफएम रेनबो कार्यक्रम से डिलाइट्स में बताने के लिए कि आज शाम दिल्ली में कहाँ क्या हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी फिक्स नहीं किया है तो अपना जरा कान थोड़ा और पास ले आइए और ध्यान से सुनिए। मिरर्स डिस्टेंस बिटवीन वर्ल्ड्स ये एक ड्यूअल शो एग्जीबिशन है, कहाँ, इंडिया गेट के पास पंडारा रोड पर, 23 से 29 तारीख तक ये एग्जीबिशन है, तो जाके देख सकते हैं। अगर नृत्य का शौक रखते हैं तो आप स्टेन ऑडिटोरियम इंडिया हैबिटेट सेंटर जा सकते हैं, शाम 7 बजे आज वहां पर भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति है। सीनी देशमुख ऑडिटोरियम यानी कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मेन में शाम 6 बजे भी आज नृत्य की प्रस्तुति है। एक एग्जीबिशन है श्रीधरनी गैलरी में शॉट्स इन द डार्क, 24 जुलाई तक एग्जीबिशन चलने वाली है, तो आपके पास अब 2 ही दिन बचे हैं। और त्रिवेणी गैलरी में चल रही एग्जीबिशन जिसका नाम है इंटेंगल्ड इकोलॉजीज, सोलो एग्जीबिशन है और 31 जुलाई तक चलने वाली है। फिर आप रुख कर सकते हैं त्रिवेणी कला संगम की तरफ क्योंकि वहां पर है आज दास्ताने बरसात। जी दोस्तों, लाइव संगीत और कहानी कहने के जरिए क्लासिक हिंदी सिनेमा के सदाबहार गानों और यादगार पलों का जश्न मनाया जाएगा। समय शाम 6:30 बजे और एंट्री बिल्कुल फ्री, लेकिन पहले आओ पहले पाओ वाला प्रिंसिपल अपनाया जाएगा। तो अगर आपके पास समय है और अभी आप निकल सकते हैं तो वेल स्ट्रेट टू वेयर त्रिवेणी कला संगम।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम

0: की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
1: शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

खिड़की से बाहर टुकुर टुकुर झांकने का समय अब गया। जी हाँ, फाइनली मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अब दिल्ली के कई कॉलोनीज, कई एरियाज में रेगुलर, कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी तेज तो कभी मध्यम तो कभी हल्की, लेकिन हो ही रही है क्या बरसात। माना कि रिज एरिया में थोड़ी ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं। वैसे भी दोस्तों आप जानते हैं कि मॉनसून दिल्ली जरा 5 दिन देरी से आया था। आई डोंट नो, लेट आया और फिर ब्रेक पे चला गया। क्या वो दिन याद है ना, 11 से 19 जुलाई कितनी गर्मी, कितनी उमस थी। लेकिन उसके बाद जब से वो अपने रूप में आया है ना, हाँ, मौसम खुशनुमा बना हुआ है, तापमान भी कम हुआ है और हल्की फुल्की बरसात तो हो ही रही है। और फिर मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी हल्की वर्षा होती रहेगी। सो लेट्स एंजॉय।

हम चाहते हैं कि बस आप यूं ही मस्ती में छम छम नाचते रहे, यानी कि मस्त रहे दोस्तों। देखिए, गिरोह ने की है 500 से अधिक वारदातें, 4 लाख रुपए एटीएम से चुराई रकम, ऐसे अभी भी न्यूज आ रही है। और ये क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो थोड़े से डिफोकस हो जाते हैं या कम अलर्ट हो जाते हैं, और जब

जाम हो जाता है तो हमारी ये मस्ती जो है ना गायब हो जाती है। तो ये मस्ती बरकरार रहे इसके लिए आज एक छोटा सा रिमाइंडर। वेल, आप जब भी एटीएम में जाएं पैसे निकालने, नंबर वन सबसे पहले तो देखिए वहाँ का कैमरा काम कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा या कर रहा है तो वहाँ जो गार्ड खड़ा होता है आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। नंबर टू, जहाँ पर हम नंबर प्रेस करते हैं थोड़ा सा वहाँ ज़रा चेक करिए ऊपर नीचे देख कर कि कोई क्लोनिंग डिवाइस या कुछ डिफरेंट तो नहीं है। अगर कुछ भी अटपटा या डिफरेंट या अजीब या रेगुलर नहीं लग रहा है तो आप वहाँ से पैसे मत निकालिए और अपना ये संदेह वहाँ के गार्ड, नहीं तो अगर बड़ा ऑफिस है तो वहाँ जाके दर्ज कराइए। तीसरी बात, मेक श्योर आप जब भी अपना एटीएम का पिन नंबर दबा रहे हैं उसको कवर कर लें। कई बार कोई अंदर नहीं होता लेकिन बाहर खड़े होके मोबाइल का पोजीशन इस तरह से रख सकता है कि वो आपके नंबर प्रेसिंग प्रोसेस का वीडियो बना ले और उसके बाद क्या होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो मेक श्योर जब आप पिन दबा रहे हैं आपके जो क्यूबिकल है उसके अंदर और उसके बाहर भी आसपास कोई नहीं खड़ा है, या आप नंबर इस तरह से छुपा लें कि सिवाय आपके उसे और कोई देख ना सके। चौथी बात, मेक श्योर कि आपको एटीएम प्रॉपरली यूज़ करना आता है। ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हुई तो आप वहाँ खड़े हुए किसी से मदद ले रहे हैं, मदद ली नहीं और दुर्घटना घटी। नहीं समझ आ रहा, सब कुछ ख़त्म करके बाहर आ जाइए। जब आपका काम हो जाए, पैसे निकल जाए, कुछ भी रैंडम नंबर दबा दीजिए या जो नंबर जो दबाएँ उसको एक बार क्लीन कर दीजिए ताकि कोई पाउडर डाल के या किसी और तरीके से भी लास्ट नंबर्स के आप प्रेस किए हैं वो उनको ना पढ़ सके। So all the very best, हमेशा alert रहिए।

0: जीवन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सब्र पर दिल को तो आमादा किया है, सब्र पर दिल को तो आमादा किया है, लेकिन होश उड़ जाते हैं जब तेरी आवाज आती है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड बाय फ्रेंड्स, क्योंकि अगली प्रेजेंटर गीता जी तैयार है स्टूडियो में।

नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए एफएम पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सरकार परीक्षा प्रश्न लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी और आश्वासन दिया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि नीट पेपर लीक मामले के अपराधियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित हो गई है। मनीला में आयोजित आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की है। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया है और कहा है कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावे झूठे हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है और इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान मालदीव और युगांडा के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 6:04, यह है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ गीता। सभी को प्यारा सा नमस्कार। जिंदगी की भागदौड़ में कितने ही चेहरे मिलते हैं, कितने लोग मिलते हैं और कितनी ही बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कभी अजनबी नहीं होती, और अजनबी होकर भी वो अपनी सी लगती है ना। सुबह की पहली चाय हो, रात का सन्नाटा हो, लंबा सफर हो, या दिल का कोई अनकहा एहसास, एक आवाज हमेशा साथ चलती है बिना किसी शर्त के। आप सोच रहे होंगे कि गीता पहेलियां क्यों बुझा रही है। जी हाँ, यही तो है रेडियो का जादू, जो दूर रहकर भी दिलों के सबसे करीब, सबसे ज्यादा करीब होता है। आज का दिन उसी अनमोल सफर, उन अनगिनत आवाजों और हर उस लिसनर्स को, हर उस श्रोता को समर्पित है जिसने इस रिश्ते को बरसों तक जिंदा रखा है। ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ, वैसे तो सुबह से ही बहुत सारे हमारे आरजेज इस विषय पर बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा मेरा प्रोग्राम है तो छोटी सी बात मैं भी कर लूँ, क्योंकि आज हम मना रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। मैं हूँ गीता।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो और यह है आपका अपना पसंदीदा शो मैसेज मसाला मिक्स। और एज प्रोमिस्ड मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ प्रोग्राम लेकर और अगले एक घंटे तक मैं रहूंगी आपके साथ। वेल दोस्तों, इस एक घंटे में होंगे आपके पसंदीदा गीत, बहुत ही प्यारे प्यारे इनफैक्ट आपको गाने सुनाऊंगी, ढेर सारी मस्ती वाली बातें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस भी होंगे। सो आराम से बैठ जाइए, चाय या कॉफ़ी की एक प्याली उठा लीजिए, या फिर आप जहाँ भी हैं, ड्राइव कर रहे हैं, घर पर हैं, कहीं पर भी हैं, तो तैयार हो जाइए कैसी चर्चा के लिए जो शायद आपके घर में कभी ना कभी ज़रूर होती है। वेल दोस्तों, आज की बातचीत हर उस घर की कहानी है जहाँ कभी ना कभी ये दो वाक्य, ये दो सेंटेंसेस ज़रूर सुनाई देते हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में तो वो होता, आज तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं। और जवाब पता है क्या आता है? मॉम एंड डैड, ज़माना बदल गया है, आप अपने ज़माने की बात हमसे ना करा करें। और बस यहीं से शुरू होता है जनरेशन गैप। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ सोच का टकराव है या फिर एक दूसरे को ठीक से ना समझ पाने की वजह हो सकती है? तो दोस्तों, आज का सवाल बस इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। मेरा सवाल बहुत ही इजी है, पेरेंट्स वर्सेस आज का यूथ, क्या है गैप? आखिर सबसे बड़ा जो जनरेशन गैप है वो किस बात पर आता है? क्या वजह हो सकती है? करियर हो सकता है, उनकी फ्रीडम हो सकती है, उनका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, रिलेशनशिप पर वो उनकी जो डिस्टेंस हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ या फिर लाइफस्टाइल। टिप्स मैंने दे दिए हैं, आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए क्योंकि आज आपकी आवाज़ बनेगी इस चर्चा का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम हिस्सा, राइट? तो फिर देर किस बात की है? मेरा व्हाट्सएप नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए, 9868107070। जो मेरे नए दोस्त इस वक्त इस प्रोग्राम से जुड़ गए हैं उनके लिए धीरे से बता देती हूँ क्योंकि मेरे पुराने लिसनर्स हैं, वो सब जानते हैं नंबर, लेकिन नए दोस्तों के लिए नंबर धीरे से बताती हूँ, 9868107070। अपने दिल की बात क्या कहना चाहते हैं, किस बात पर जो गैप है आज के पेरेंट्स में और बच्चों के बीच, मेरे साथ शेयर कीजिए।

वेलकम बैक। मैसेजेस आने लगे हैं। पहला मैसेज आया है सुकलाल बाला फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। लिखते हैं कि आज के टॉपिक के बारे में मैं कुछ नहीं कहना, हम आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये बोलना है। देखिए, मैंने जो टॉपिक दिया है उसके बारे में आप ज़रूर लिख के भेजिए। मेरा टॉपिक यही है, अगर अभी तक नहीं सुना है तो दोबारा से सुन लीजिए। पेरेंट्स वर्सेस जो आज की यूथ है, आखिर सबसे बड़ा जनरेशन गैप किस बात पर होता है? आपको मैंने बताया था, करियर के मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है, लाइफ स्टाइल के मामले में हो सकता है। बहुत सारे मैंने टिप्स आपको दी हैं। बताना आपको है कि किस बात पर उनका जनरेशन गैप, चिक चिक बाजी जैसे होती है ना, वो किस बात पर होती है। सोनू बिजनौर से जुड़ गए हैं। लिखते हैं, जी बिल्कुल आपने सही सवाल किया था। मेरे घर में जब चर्चा होती है मेरी बेटी और बेटे को लेकर, अब तो LG और UKG और LKG का ज़माना है, नर्सरी का ज़माना है, आ गया है बच्चों में। पर हमारे ज़माने में पहली क्लास से ही एडमिशन होता था। बदलाव की बात करी जाए तो समय जो है बदलाव का है, पर अपनी विचारधारा बिल्कुल सही होनी चाहिए। थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि सबसे बड़ा जनरेशन गैप संवाद की कमी और बदलती सोच का है। ट्रू, फैंटास्टिक। पेरेंट्स अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जबकि बच्चे आज़ादी, नई तकनीक और अपनी पसंद को अधिक महत्व देते हैं। कई बार माता पिता सुरक्षा और अनुशासन चाहते हैं, जबकि बच्चे समझाए जाने और अपनी बात खुलकर कहने की अपेक्षा रखते हैं। जब दोनों एक दूसरे की बात धैर्य से सुनते हैं और सम्मान देते हैं तो ये दूरी कम हो जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है सरफराज आलम जी, कि जहाँ बच्चों और पेरेंट्स में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो मेल खाए, ऐसा बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। नमस्कार, FM रेनबो, मैं हूं अमन कुमार, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से। आज की सबसे मजेदार लड़ाई पेरेंट्स वर्सेस आज का यूथ। आगे लिखते हैं कि मम्मी कहती है फोन छोड़ दो, आंखें खराब हो जाएंगी, और 5 मिनट बाद बेटा जरा मेरा फोन ढूंढ दो। होता है ये, आजकल होता है। मम्मी पूछती है इतनी देर तक मोबाइल में क्या करते रहते हो, हम बोलते हैं कुछ नहीं, और वही कुछ नहीं रोज 4 घंटे चलता है। लेकिन एक बात है, मम्मी की डांट हो या पापा की सलाह, उसमें भी प्यार फुल स्पीड से चलता है। बस जनरेशन बदल गई है, मम्मी पापा कहते हैं जल्दी सो जाओ, और यूथ कहता है बस 5 मिनट और ये 5 मिनट ही रात के 2 बजे कर देते हैं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर में बहस कम, प्यार ज़्यादा रखिए। अमन कुमार, ज़िला बागपत, बहुत ही खूबसूरत मैसेज, थैंक यू सो मच। मोनिश इद्रिस लिखते हैं, कहाँ से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश और बिलासपुर से। लिखते हैं, मुझको लगता है सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल की वजह से होती है, ये भी एक वजह है। पेरेंट्स कहते हैं ऐसे कपड़े पहनो, बच्चे कहते हैं नहीं मुझे ये पसंद है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। थैंक यू।

कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से जुड़े हैं। आज की बात पे कहना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में सभी लोग संयुक्त परिवारों के जॉइंट फैमिली में रहते थे, आज के समय में अकेले रहने को तैयार रहते हैं। आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई हो गई है, मगर पहले जो फिज़िकल था वो अपने आप को मजबूत समझता था। फिजिकल, मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी ये जितनी भी आगे बढ़ रही है, अगर परिवार नहीं साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। वैसे बदलाव के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता, थैंक यू सो मच। जी हाँ, देखिए टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें बहुत एडवांस हो रही हैं, लेकिन ज़रा सा ठहर कर सोचिए, क्या सच में ज़माना बदल रहा है या फिर पीढ़ियाँ बदलती हैं? क्योंकि हर जनरेशन जब जवान होती है तब वही उसका नया ज़माना होता है। हम भी जब जवान होते हैं तो हम सोचते हैं हमारा ये ज़माना है और मतलब ये सोचते हैं कि हाँ मॉडर्न ज़माना है। समय आगे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है और वही जनरेशन एक दिन पुराने ज़माने वाली कहलाने लगती है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो लगता है, एक चीज़ कभी भी पुरानी नहीं होती दोस्तों, और वो मेरे एक दोस्त ने लिखा भी था, वो है एक्सपीरियंस, वो है आपका अनुभव। वक्त बदल सकता है और तकनीक भी बदल सकती है, सोच भी बदल सकती है, लेकिन ज़िंदगी के जो अनुभव हैं वो हमेशा हम सभी को रास्ता दिखाते हैं, राइट? एक बहुत प्यारा सा गाना सुनवाती हूँ, उसके बाद वापस लौटती हूँ। टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:21, यह है 102.6 एफएम रेनबो, प्रोग्राम MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूँ गीता।

वेलकम बैक दोस्तों. मैसेजेस भेजने का क्या फ़ायदा जब सिर्फ तुम्हारे पास हमारे संदेश शामिल करने के लिए पूरे घंटे टाइम ही नहीं होता. ये थोड़ी सी नाराज़गी जताई है अनिल शर्मा जी, जो पुराने श्रोता हैं हमारे सरिता विहार से. देखिए अनिल जी, आपने मैसेज किया था 6:19 पर और अब जो वक्त हो रहा है वो है 6:25. तो अभी तो बहुत टाइम है, इतनी जल्दी नाराज़गी काहे की? छोटी छोटी बातों पर नाराज़ किसी से भी ना हुआ करें. जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो ये तो एक मैसेज अगर मैंने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जिंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा मत कीजिए. थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आपने लिखा. रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से जुड़े हैं, लिखते हैं, मेरे विचार से जनरेशन गैप का मुख्य कारण मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रीडम है. हाँ ये तो है ट्रू. मैसेज मसाला मिक्स में आरजे साहिबा जी को प्यार भरा नमस्कार. आदाब अर्ज है आपको भी, बहुत ही प्यारा सा नमस्कार. शुभ संध्या. लिखते हैं ये कि हम वहाँ नहीं खेलते थे जहाँ बड़े होते थे. हम बड़ों की इज्जत करते थे, डरते थे, कहना मानते थे. मोबाइल का ज़माना नया ज़माना, आगे कुछ नहीं कहना है. ये मैसेज किया है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली. थैंक यू सो मच. आज के टॉपिक में बहुत ही समसामयिक विषय दिया है आपने. समय के साथ साथ बच्चों और पेरेंट्स के बीच की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन हुआ है. ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की, माँ को बेटी के साथ सहेली के रूप में और पिता को पुत्र के साथ मित्रता की व्यवहार करना चाहिए. ये मैसेज आया मेरे पास हीरामणि वर्मा का. कहाँ से लिखते हैं? भाटापारा छत्तीसगढ़ से. बिल्कुल सही कहा है आपने, और मैं भी अगर इस आपके मैसेज में कुछ अपनी ओपिनियन, अपनी बात जोड़ूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सिर्फ सुनिए नहीं, उनको समझने की भी ज़रूरत है. उनको समझने की कोशिश कीजिए. एक तरफा हम दोष कभी भी नहीं दे सकते, और कई बार उन्हें सलाह से ज़्यादा आपकी समझ की ज़रूरत होती है. हमेशा उनको सलाह मत देते रहिए, ये कर लो, वो कर लो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. दूसरी बात दोस्तों, हर नई सोच को ज़िद मत समझिए, ये बहुत ज़रूरी बात है. और हो सकता है जिस रास्ते से आप अनजान हो, आपको पता ही ना हो कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, और वही रास्ता उनके लिए एक नया अवसर हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है. तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तुलना करने से बचिए. किसी से भी तुलना मत कीजिए अपने बच्चे की. शर्मा जी का बेटा ऐसा है, फलानी का बेटा ऐसा है, हमारे ज़माने में ये फलाना ढिमकाना, बिल्कुल मत कीजिए इस तरह की बातें. पता है क्या, कई बार बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम कर देते हैं. बस वो यही सोचते रहते हैं कि अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत नीचे गिर जाता है. और गलती करने का थोड़ा सा अधिकार भी दीजिए. ये नहीं हमेशा स्कोल्ड करें, डांटें उनको, क्योंकि अनुभव सिर्फ सुनकर नहीं आता, जीकर भी मिलता है. और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, अपने अनुभव उनके साथ ज़रूर साझा कीजिए, लेकिन फैसले मत थोपिए.

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
6: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की, तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

वेल, एक मैसेज मेरे पास आया है विष्णु प्रसाद दांगी, गांव खजूरिया, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। लिखते हैं, पुराने समय में लोगों में अपनेपन की भावना ज़्यादा होती थी। पूरा गांव एक परिवार जैसे रहता था और सब प्यार से रहते थे। लोगों ने एक दूसरे की सहायता करने की भावना होती थी। अब ये धरोहर जो है, जो हम विरासत में हमें मिली थी, धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए हमें इसे बचाए रखना है और ये कार्यक्रम रेडियो द्वारा बहुत ही सराहनीय तौर पर किया जाता है। आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका विष्णु प्रसाद जी, जो आपने इतना अच्छा मैसेज लिखा है, क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स के साथ रहना भी ज्वाइंट फैमिली कहलाती है, तो ये थोड़ा सोचने का विषय है।

वेलकम बैक दोस्तों। टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 6:43। प्रोग्राम चल रहा है ट्रिपल एम, जी हाँ, मैसेज मसाला मिक्स, और मैं हूँ आपके साथ गीता। एक दोस्त जुड़े हैं मेरे साथ, आरजे संदीप सिंह हैं, आकाशवाणी चुरू से जुड़े हैं। लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आगे लिखते हैं कि पीढ़ीगत अंतर जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और समाज में तीव्र परिवर्तन और समाज की गतिशीलता के कारण उत्पन्न होता है। पीढ़ीगत अंतर के प्रभावों में विभिन्न पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और गलतफहमियां शामिल हैं। बच्चे और माता पिता को एक दूसरे की भावना को समझना चाहिए और किसी बात की जिद करनी नहीं चाहिए। एक दूसरे की तुलना बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने जो मैसेज किया है और जो तुलना

वाली बात आपने की है। निसंदेह ये बात मैं पहले कह चुकी हूँ, कभी बच्चों की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो माइंडसेट है, उसका जो कैलिबर है, वो हर बच्चे से अलग होता है। जो बच्चा जो करना चाहे ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, उसको वो करने दीजिए। अगर आप उसके ऊपर थोप देंगे कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बनना तो उसे पेंटर है, तो ऐसा कभी मत कीजिए। थैंक यू सो मच। हीरा मणि वर्मा दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, लिखते हैं, आज का टॉपिक बहुत ही समसामयिक विषय है और समय के साथ साथ बच्चों और पेरेंट्स के बीच की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन हुआ है। ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की, माँ को बेटी के साथ सहेली के रूप में और पिता को पुत्र के साथ मित्रता की व्यवहार करना चाहिए। आई थिंक आपका जो मैसेज है मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच। प्रवीण चौहान जुड़े हैं खरगोन मध्य प्रदेश से, लिखते हैं कि मेरे घर में मुझे जनरेशन गैप बिल्कुल लगता है। हाँ, वो सबके घर में होता है, वो स्पेशली ऐसा नहीं है कि आपके ही घर में है, सबके साथ ऐसा होता है। मेरे माता पिता की थिंकिंग थोड़ी अलग रहती है, जिसके चलते मुझे अपनी पूरी आज़ादी महसूस नहीं होती और करियर में भी रुकावट आती है। प्रवीण जी लिखते हैं, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक बीच का रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और पेरेंट्स आपको ये कहते हैं कि नहीं वो मत करो ये कर लो, तो उनको प्यार से समझा दीजिए, मान जाएंगे वो। थोड़ा प्यार से समझाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने आज़ादी की बात की है, तो आज़ादी किस तरह की आज़ादी आप चाहते हैं, ये भी आपको अपने मम्मी पापा से डिस्कस करनी होगी। उनका अनुभव, उनके एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज्यादा हैं। थैंक यू सो मच। हाय, गुड इवनिंग डियर गीतू मैम। ओहो, बहुत देर बाद जुड़ी हैं। आई थिंक ये लिखती हैं गीतू मैम, कैसी हैं आप? और मैं आपसे नाराज हूँ, आपने पिछली बार भी मेरा मैसेज नहीं, अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया था, एंड आज का टॉपिक नहीं पता है, प्लीज़ रिपीट कीजिए। आई एम अंशी शर्मा, हस्तिनापुर। मेरा मैसेज तो आपने आज भी नहीं पढ़ा। तो मैंने पहले भी बताया था, अब दोबारा बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है ना, वो हमारा हर घर की कहानी है। हर घर में रोज़ इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं कि हमारे ज़माने में तो ये होता था। बच्चे कहते नहीं मम्मा पापा, अपने ज़माने की बात मत कीजिए, आज का ज़माना चेंज है। टॉपिक भी हमारा यही है, पेरेंट्स वर्सेस आज का जो यूथ है, उनके बीच में जनरेशन जो गैप है, वो किस बात पर सबसे ज़्यादा चिक चिक चिक चिक होती है? क्या फ़र्क है आप बताना? करियर में, फ्रीडम में, मोबाइल फ़ोन में, रिलेशनशिप हो सकता है, मेंटल हेल्थ को लेके हो सकती है, लाइफस्टाइल को लेके भी हो सकती है। तो आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए।

0: जावेद आलम मोहम्मद जायान जयपुर से जुड़े हैं, लिखते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन में जो काम करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे वही काम करना चाहिए, क्योंकि जब मन का काम होता है तो दिल से हम काम करते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच। जब जो हम चाहते हैं वो काम अगर हम करते हैं तो वाकई दिल से करते हैं। थैंक यू सो मच।
1: मैं

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से, ये भी थोड़े से नाराज़ हो गए हैं। देखिए एक घंटा होता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस इनफेक्ट में लेती भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। लिखते हैं कि पहले समय में जॉइंट फैमिली कल्चर था, एक दूसरे के साथ बहुत अटैचमेंट होता था, आज सिंगल फैमिली कल्चर हो गया है, मोबाइल के कारण फेस टू फेस मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया और आपने नीचे शिकायत भी दर्ज की है। मैंने 6:10 पर मैसेज किया था, फिर भी मेरा मैसेज शामिल नहीं हुआ, अब शामिल कर लिया मैंने मैसेज, नाराज़गी खत्म। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए।

हर बात पर सलाह होती थी, अब आजकल गूगल ही एकमात्र उनका सहारा बन गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब तक आप पेरेंट्स के साथ बैठकर डिस्कस नहीं करेंगे, उनकी सलाह नहीं लेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।

प्रेमचंद प्रेमी जी जुड़े हैं धामपुर से, लिखते हैं सिस्टर गीता जी नमस्ते। हालांकि पिछले कई शो से आप हमारा मैसेजेस शामिल नहीं कर रही हैं। झूठ झूठ झूठ मत बोलिए, लेकिन मैं आपसे ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ। बहुत सुंदर प्रोग्राम, आपका हार्दिक बधाई, यूं ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, थैंक यू सो मच। आगे लिखते हैं, शिकवा ना कोई गिला देंगे हम, बेरुखी का ऐसा सिला देंगे हम, बेशक ये तपिश अपना नसीब सही, लेकिन चांद की रोशनी में सबको नहला देंगे हम, नहला देंगे हम। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत शेर लिखा है और उस शेर के साथ मैं जाना चाहूँगी। 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। इट्स दैट टाइम ऑफ द वीक वेयर वी गो डाउन द मेमोरी लेन एंड रिविजिट द सॉन्ग्स, द रिदम्स, द मेलोडीज दैट कंटिन्यू टू मूव अस एज डीपली एज दे डिड द फर्स्ट टाइम वी हर्ड देम। सो वेलकम टू हिट्स एंड मेमोरीज विद अ होस्ट Shubhankar, back on this hot seat at your service. Dear listeners, today we are celebrating the National Broadcasting Day, marking 99 years since India's first organized radio broadcast took place, which led to your favorite radio on the face of the earth, which is All India Radio. So, to celebrate this monumental day, let's play Song on the Radio by Al Stewart.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक टू हिट्स एंड मेमोरीज। डियर लिसनर्स, लव इज अ ब्यूटीफुल वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन। इट कैन मेक अस फील अलाइव एंड इट कैन टियर अस अपार्ट। That spark of young love, that excitement, that limitless feeling, that beautiful confusion gave birth to some of the most unforgettable hits ever written. Up next, we have a track that is often considered to be one of the biggest love songs ever. But don't let its gentleness fool you. This song is a perfect soundtrack of pure obsession. Next track is called Every Breath You Take by The Police.

0: So that was Time by Pink Floyd. Well, dear listeners, it's time for a quick break, but the festivities of hit music from the past continues on the other side. You're listening to Hits and Memories.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: वेलकम बैक टू हिट्स एंड मेमोरीज। डियर लिसनर्स, बिफोर वी कंटिन्यू द प्रोग्राम, एज ऑलवेज इट्स अ रिमाइंडर दैट वेयर एवर यू आर एट वर्क, on your way home, or enjoying our program right now on your couch, hydrate yourself. Take a cup of cold water and gently sip and relax. That's non-negotiable. Well, up next, let's continue our journey through iconic rock music. Here is "Since I've Been Loving You" by Led Zeppelin.

0: So that was Brothers in Arms by Dire Straits. It's more than just a song. It's the singer Mark Knopfler plea for us to stop fighting over futile things and give each other grace and compassion. It's time for another short break, dear listeners, but don't you touch that dial. Some of the best songs are still waiting for you to be heard on the other side. You're listening to Hits and Memories.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है.
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है. आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
4: ठीक है.
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
5: प्रिय उपयोगकर्ता आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
2: व्हाट्सएप कॉल SMS फ्रॉड लिंक लॉटरी में जीत वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना न जाने क्या क्या.
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए.
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है.
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए.
2: याद रखिए साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं.
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
0: वेलकम बैक टू हिट्स एंड मेमोरीज. बिफोर वी बिगिन द फाइनल सेट ऑफ आवर सॉन्ग्स डियर लिसनर्स वी इनवाइट यू टू जॉइन अस एट 10:45 PM फॉर आवर वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम All That Jazz, where we'll bring you some of the finest jazz standards tonight, from Sammy Davis Jr. to Miles Davis. So please join us at 10:45 PM for our show, All That Jazz. Dear listeners, the world we live in is a reflection of the choices we make. If we hope to make it better, then we found out. We must first learn to acknowledge our differences. And then learn to grow together with understanding over hatred, with peace over conflict. And that's when the real change comes.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26

ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा और इस बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र के में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है और कहा है कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है और इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान मालदीव और युगांडा के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी शामिल। ये थे अब तक के FM रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 8:53 और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। यह है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ गीता इस गाने के साथ और आपको कहूंगी टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगी ठीक 9 बजे। आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद प्रियंका आपके साथ होंगी, प्रोग्राम होगा आपकी याद आती रहेगी।

और अब पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि स्थगित रहेगी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने आज लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सफलता भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड महामारी के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर के परिजनों को वर्षों से लंबित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग

हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होंगे और भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है।

0: साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जहन में कुछ बातें जब अधूरी रह जाती हैं ना, तो वो यादें बन जाती हैं। और कभी कभी उन यादों में ख्याल ये आता है कि काश कह दिया होता उनसे। क्या यही कि तुमसे बात ना हो तो पल पल याद करते हैं हम, तुमसे बात ना हो तो पल पल याद करते हैं हम, तुम्हारी कसम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं हम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर।

हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन 11 बजे रंगे महफिल में फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, और छोड़े जा रहे हैं आपको एक खूबसूरत 90s सॉन्ग के साथ। ठीक है, फिर सॉफ़।

0: वार्तालाप का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारणकर्मी गौरा धवन लाल।
1: वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स, ऑल आर व्यूअर्स हियर इन द लाइव ऑडियंस हियर, एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक री इमेजिनिंग ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण का बदलता क्षितिज। इस टॉपिक में दो शब्दों ने बहुत एक्साइट किया, और सबसे पहला है री इमेजिनिंग और दूसरा है बदलता, क्योंकि यही दो शब्द हैं जिनमें गति है, प्रगति है। दिस क्रिएटिविटी, दिस एक्साइटमेंट, दिस मूवमेंट। एंड आज का फोकस भी इन द कॉन्वर्सेशन, वी हैव अ वेरी एस्टीम्ड पैनल, डाइवर्स पैनल अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स। आई थिंक हर 5 साल में जनरेशन बदलती है, तो डेफिनेटली अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हमारी पैनल भी है, विद वेरिड एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और इसमें से बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली पिछले 15-20 सालों में इस क्षितिज को बदलता हुआ देखा है। सो इट्स लाइक अ बिफोर एंड आफ्टर सी चेंज आया है। सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अर्चना कपूर इज अ वेल नोन कम्युनिटी मीडिया स्पेशलिस्ट, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर विद ओवर 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हर फ्लैगशिप इनिशिएटिव रेडियो मेवात इज अ 2-टाइम नेशनल अवार्ड विनर। शी इज द रिसिपिएंट ऑफ क्वाइट अ फ्यू लॉरल्स एंड अवार्ड्स। अर्चना, वेलकम टू द प्रोग्राम। हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर अंजुम शर्मा। डॉक्टर अंजुम शर्मा कवि, संपादक और पत्रकार हैं, जिन्हें साहित्यिक और सांस्कृतिक एरियाज में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। वे कम्युनिटी रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, बीबीसी हिंदी से भी जुड़े हैं। डॉक्टर अंजुम को अनेक अवार्ड से भी नवाजा गया है। अगले पैनलिस्ट उमेश चतुर्वेदी। With over 30 years of experience in the news industry, including the print and electronic media, Umesh joins us here today. More than 15 of these years were spent in television news, covering the entire functional gamut of the news business. That is reporting, scripting, research and post-production. Well, currently he's working with Prasar Bharati. He's also a media teacher and also engages with actually designing the syllabus, which he's done for a number of universities for their mass communication course. Our final panelist, Dr. K.G. Suresh. Dr. K.G. Suresh is a senior journalist turned academician. He is currently the director of the India Habitat Center and is also a senior adjunct fellow with a leading think tank of the Global South Research and Information System for Developing Countries. He has served as the vice chancellor of many universities, including the Indian Institute of Mass Communication, Delhi, which is India's premier media training institute. And of course, he also is a recipient of many prestigious awards. And of course, a very, very warm welcome once again to the audience. I think when we're talking in front of a live audience, the tone, tenor and energy changes rather than just a discussion in the studio. So thank you very much, All India Radio, for ensuring all this for us today. So I'd like to actually start with you, Anjum. जब हम क्षितिज की बात करते हैं, जब हम एक न्यू होराइजन की बात करते हैं, एंड जेनरेशनली जब हम चेंज देखते हैं, तो अगर हम रीइमेजिन कर रहे हैं, रीविजिट कर रहे हैं, इंटरजेनरेशनल शिफ्ट जो इस रीइमेजिनिंग में और रीक्रिएटिंग में आएगा, वो किन एरियाज में आना चाहिए?
2: मुझे लगता है कि जब हम रीइमेजिन कोई भी चीज कर रहे होते हैं, इसमें एक शब्द है री, हमें फिर से विचार करना है, फिर से इमेजिन करना है, तो जाहिर है आपके पास अगर स्मृतियां नहीं है तो आप नई स्मृतियां बना भी नहीं पाएंगे। यानी आप रीइमेजिन कैसे करेंगे? आपके पास पहले का कुछ ना कुछ होगा, उसके आधार पर आप रीइमेजिन कर पाएंगे। तो मैंने वो दौर देखा है जब अमीन सयानी के बाकायदा कार्यक्रम आया करते थे और हम उन्हें सुना करते थे, तो हमने भाषा के स्तर पर हमने रीइमेजिन करना शुरू किया। जब हम कहते हैं कि रेडियो की भाषा बहुत चित्रात्मक होनी चाहिए ताकि मैं उसको इमेजिन कर सकूं, क्योंकि रेडियो का जो मीडियम है वो सबके लिए है, उनके लिए भी है जिनके पास दृष्टि नहीं है और उनके लिए भी है जिनके पास है, कि हम किस तरीके से भाषा के स्तर पर हम बदलाव लाते चले गए। जब मैं अब उसको रीइमेजिन करने की कोशिश करता हूं तो पूरा 2000 का दशक निकल जाता है और 2010 का पूरा एक दौर आता है जिसमें हमने चैनल्स की बाढ़ देखी, और उसके बाद 2020 के अगर हम दशक में आए, खासतौर पर 2012-13-14 के बाद में जब हमने इंटरनेट की क्रांति देखी, जो क्षितिज में बदलाव आया है वो फीडबैक के लेवल पे आया है। विल्बर श्रम जिसे केवल सेंडर, मैसेज और रिसीवर की बात करते थे, वहां पर डेनिस मैकक्वेल की एक थ्योरी काम करती है जिसमें वो बोलते हैं कि श्रोता या रिसीवर

0: अब पैसिव फॉर्म में नहीं रह गया है, वो एक्टिव है। तो बदलते हुए क्षितिज में मुझे तुरंत आवाज अपनी सुनाई दे रही है। पहले मुझे साप्ताहिक रूप से एक पत्र लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं तुरंत उसको देख पा रहा हूँ। इस बदलते हुए क्षितिज में हमने रेडियो को टीवी पर आते हुए देखा है, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि रेडियो जो सुनने की चीज है वो मैं देखते हुए सुन सकता हूँ। यानी आपकी एक चित्र लगा दिया गया है और अब मुझे पता है कि गौरा जी कैसी दिखती हैं। पहले मुझे नहीं पता था वो कैसी दिखती हैं, तो मैं उनको इमेजिन करते हुए, उनका चित्र देखते हुए, हम चारों का मुझे पता है शाम को यूट्यूब पे एक थंबनेल लग जाएगा और बाकायदा उस पर लिखा जाएगा कि क्या क्या आ रहा है, रात में हम किस बारे में विचार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। पहले आपके पास सुविधाएं नहीं थी, तो बदलते हुए क्षितिज में हमने ये सब चीजें देखी।
1: थैंक यू अंजुम। कभी कभी ना देखने में ही सुंदरता होती है, और कभी कभी ये चिंता भी होती है कि जो विजुअल मीडियम होता है, के जी विल बी कमिंग टू यू फॉर दिस, दैट समटाइम्स द विजुअल मीडियम कैन टेक अवे फ्रॉम द ऑडियो इम्पैक्ट। यू हैव सीन ट्रांजिशन, टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ अ विजुअल रेडियो। हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन, हाउ डू यू सी दिस?
2: आई थिंक दैट रेडियो इज समथिंग दैट हैज सर्वाइव्ड द विसिसिट्यूड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेलीग्राम हैज वाउंड अप, landline telephone has wound up, but not radio. The romance with radio continues, the charm of the radio continues even today in different formats. And I think one of the reasons is that radio carries a certain amount of trust and credibility. I have worked in other media also, but when you make a comparative study, it becomes clear that radio has earned, and it's an earning, earned much more trust and credibility than many other media. So that is one reason that people continue to trust it. Secondly, radio remains relevant to a large segment of our population, whether it is the agriculturists or the fishermen, it remains relevant to the common man. It hasn't become irrelevant, disconnected with the people at large. Now, in this context, I'll come to your question.
1: Right.
2: And that is, the future is certainly visual storytelling. Storytelling has always been the, I would say, the forte of mass communication. But now we are getting into the age of visual storytelling, where, because it has been said that a photograph can speak 1,000 times better than a word, so it is more powerful. So the visual is now part of audio. That's why now we are talking about audio-visual mediums, and the digital revolution which has happened has enabled this. And I'm glad, I must say, that one of the most important programs in recent times on radio worldwide has been Mann Ki Baat. It has become a force multiplier. What visual does is force multiplication. Because what is in the realm of imagination, as he said, you can see it there. So I believe that people are increasingly, yet at the same time, you also see, when you talk about the future or reimagining broadcast, you also talk about podcasts. Now, podcasts are no more just the audio part of it. It is also the video part of it. So I think that broadcast is entering a very, very exciting era. There is a combination of both audio and video, and this is going to be the defining, so far as the paradigm shift in broadcasting that is happening.
1: Umesh, KG just spoke about, I think, the understanding that broadcasting and telecasting are now, broadcasting is going to subsume in itself for telecast. That's the need of the hour. Then he earlier spoke of romance and charm. So do you think that when we're looking at broadcasting as visual and audio, in the future, as we're looking at, would radio by itself, as separate, I know broadcasting is definitely an umbrella term, would radio still retain a USP, and what would it be?
3: Akashvani ke 90 saal haal hi mein pure hue hain. 8 June ko 90 साल पूरे होने पर इसी कैंपस में कार्यक्रम हुआ था, और उसमें हमारे आकाशवाणी के महानिदेशक ने बाकायदा इसकी घोषणा की थी कि अगले साल से हम कुछ शहरों में विजुअल रेडियो स्थापित करेंगे, कि विजुअल रेडियो की किस तरह से उपयोगिता भविष्य में दिखेगी और किस तरह से उसको विकसित होना है, किस तरह से उसको प्रसारित होना है, किस तरह से उसका प्रसार होना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको याद करना चाहिए यहाँ कि रेडियो के विकास में, वैसे तो 1923 से ही भारत में प्रसारण शुरू हो गया था, रेडियो क्लबों से शुरू हुई ये प्रसारण की यात्रा यहाँ तक पहुंची है, और इसमें तकनीक के तमाम तरह के सोपान तय हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि 1995 का साल है जो रेडियो के लिए एक अलग तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इंटरनेट उसी दौर में आता है, और उसी दौर में कमोबेश एक आध साल आगे पीछे एफएम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूला कहते हैं, वो आता है। उस दौर में हमारा बचपन रहा है, जब हमारे यहाँ रेडियो आता था

0: तो उसको एक सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता था। हमने वो यात्रा भी देखी है जो पारंपरिक तकनीक थी उसको भी देखा है और एफएम और इंटरनेट के बाद की भी तकनीक को देख रहे हैं। और 1995 की जो इंटरनेट क्रांति है उस रेडियो को एक जीवंत राह देता है। विजुअल रेडियो थोड़ा सा कल्पना करना कठिन होता है कि एक रेडियो भी ऐसा हो सकता है जो विजुअल हो सकता है। 1995 के बाद इंटरनेट आता है और जो माध्यमों का मीडियम्स का कन्वर्जेंस होता है तो आप उसमें देखेंगे कि हर माध्यम में समाया हुआ है। अखबार जो है वो भी इंटरनेट पर है और ट्रेडिशनल अखबार भी है जो हम पढ़ते हैं कागज पर। रेडियो भी उसी फॉर्म में आ चुका है, ट्रेडिशनल रेडियो सेट में भी सुन रहे हैं और हम उसको इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रहे हैं। रेडियो के भी जो छोटे छोटे बाइट्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, वो भी आ रहे हैं। स्मृतियों से शुरू हुई यात्रा तकनीक के इस लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन इस सब पूरी यात्रा में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हर आशंका को झुठलाते हुए रेडियो जिंदा है और रेडियो के पास 70-80 साल का प्रतिबद्ध श्रोता भी है, डिवोटेड लिसनर, और जेन जी भी है, और सबकी चुनौती को सामना करना है रेडियो को।
1: जी, आपने एक बात कही कि रेडियो अभी भी जिंदा है और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सारे मीडियम एक मीडियम दूसरे मीडियम में समाया हुआ है। बट जस्ट टू शेयर कि आकाशवाणी का एजेंडा हमेशा अलग रहा है, आउटरीच का है, किसान का है, डिफरेंट, तो आई थिंक उसको रखते हुए इन टर्म्स ऑफ लिसनरशिप जब हम देखते हैं और आंकड़े भी सामने आए हैं तो आउटरीच अभी है। मैं आपसे ये सुन रही हूँ कि हमारे जो श्रोताओं की जो डिवीजन होती है, जो लिसनर्स की डिवीजन होती है, कैटेगरीज अलग होती हैं और अलग अलग कैटेगरीज को केटर करने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडियम एंड वी ऑल एवरी मीडियम परफॉर्म्स अ रोल, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे आउटरीच हो, चाहे सोशल ब्रॉडकास्टिंग। आपके पास आते हैं अर्चना, जब सबका अलग अलग रोल है, कम्युनिटी रेडियो में आपकी माहिरता है, यू हैव बीन फ्रंट रनर इन प्रोपगेटिंग दिस एंड एस्टैब्लिशिंग दिस एज अ वायबल मीडियम, इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू सी द होराइजन एंड व्हेन यू सी आगे, Before you talk about community radio and understanding from you and your experience, what are, say, three new ideas that could actually reimagine broadcasting?
2: जो माध्यम जिसके लिए बना है वो अगर उसी में एक्सेल करे तो उसकी रीच, उसकी आइडेंटिटी, उसकी यूनिकनेस बनी रहेगी। इफ वी स्टार्ट गेटिंग विजुअल वी आर ओनली सेकंड बेस्ट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दूरदर्शन, वी हैव सेवरल अदर प्राइवेट चैनल्स, वी ऑलरेडी आर सीइंग द प्रेशर ऑन प्राइवेट एफएम्स टू गो डिजिटल। आई डू द रेडियो फेस्टिवल, आई हैव डन 9 एडिशंस ऑलरेडी एंड व्हाट आई हैव सीन देयर एंड आई हैव टॉक्ड टू सम ऑफ द बेस्ट, लाइक यू नो द मोस्ट फेमस पीपल, एंकर्स, आरजेस, व्हाटएवर यू कॉल देम, फ्रॉम सम ऑफ द channels that he mentioned and others also in smaller towns, they said कि हमारी आवाज हमारी पहचान थी, हम जब किसी दुकान में घुसते थे कहीं लोग हमें सुनते थे। अभी ये जो एक होड़ मची हुई है ना visual, visual, visual, we have no recall। हम आज भी 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद अमीन सयानी को याद करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी आवाज हमारे कानों में अब भी गूंजती है। We do not need to know his face। I think that words give you the possibility of a million fantasies. So it gives you so much of scope, so much of play, so much of fantasy, which visuals limit it. Because an AI, I'm sorry to say, is limiting us further. Because what is happening is that everybody is using AI to generate messages and to create posters. That entire creativity is just getting lost. I'm not saying that don't use it. Use it as a tool, but not as a content creator. That is what I'm trying to say. Now, coming back to your question, everybody talked about when there was this transformation. Community radios, the policy came in 2002. We got operational only in 2004, the first radio, Anna Radio. And then 2006, tak only educational institutions were allowed to broadcast, to operate a community radio. In 2006, and the policy changed, 2008, the first NGO-owned community radio came into being. What is important is what are these radios doing? This is a medium which belongs to the people. This is a true representative of democracy. It is by the people, for the people, and of the people. That is what a community radio is. You can only get the license if you have a community. यू हैव टू हैव अ कॉन्टेंट कम्युनिटी लोकल, यू हैव टू हैव अ गवर्नेंस कम्युनिटी दैट इज लोकल, एंड यू हैव टू ब्रॉडकास्ट 50% ऑफ द कॉन्टेंट.

0: which is produced by the community, and out of that 50%, 25% has to be about women, by women, and for them. I think which other medium is doing this? And that is why I have so much faith in community radios, and we are going slow, it's fine, but we are stable. And that is what is important. As long as hum haashe pe rehne wale logon ki awaazein la rahe hain, tab tak hum अपना काम कर रहे हैं. हम ये माइक कुछ ऐसे लोगों के सामने रख रहे हैं, उनकी आवाज़ों को एक मंच दे रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके पास भी कुछ कहने को है. यही हमारे देश की विविधता, यही हमारे देश का राष्ट्र निर्माण का कदम, और यही हमें वो बनाता है जो हम आज हैं. मेलबर्न की एक रिपोर्ट थी, जब कोविड हुआ रेडियो को ही लोगों ने ट्यून इन किया. एक ही विश्वसनीय सोर्स था, वो था रेडियो. एंड दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड थिंग आई थिंक कि रेडियो के पास जितनी आर्काइव्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो इज इन इटसेल्फ
1: अ लाइब्रेरी. इट्स अ ट्रेजर ट्रोव.
0: या इट्स अ ट्रेजर ट्रोव. तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आई सी द रोल ऑफ रेडियो एज अ लाइब्रेरी ऑफ द पास्ट ऑफ हिस्ट्री, एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड थर्डली आई सी इट एज द वॉइस ऑफ पीपल. I see it as a local medium that connects with people, that talks to them in their language, and that talks to them about what concerns them. Because if we get into the AI trap, we will become subjects of algorithms. As Anjum said, we'll come back to that.
1: I think you're right. There are lots of many views on this. And before I come to you, Anjum, I'd like to also say that dissent is the essence of progress. ये भी समझते हुए अंजुम कि क्षितिज, so थोड़ी डूम्सडे प्रेडिक्शंस हुई, एंड वी ऑल्सो नो दैट थिंग्स कैन गो बैड, थिंग्स कैन गो गुड. एंड आई थिंक टू से दैट रेडियो इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म. आई थिंक अगेन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स आर ऑलरेडी प्लेइंग दैट रोल. आर्काइव्स आर हैपनिंग, अ लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट्स द वे टू गो. अंजुम, आपकी हम नज़र लाते हैं क्षितिज पे, वो नज़र ही डाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पहुँचता तो कोई नहीं है, जितने पास जाओ उतना दूर चला जाता है. तो जब हम कोई क्षितिज को देखते हैं आगे, और ये अच्छी बात है, इसी बहाने हम क्षितिज की डिमांड में या नीड में आगे बढ़ते हैं. सो जब हम आगे देखते हैं और हम ऑडियो विजुअल इससे अलग जाते हुए ये समझने के लिए कि आजकल अगर हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, देखिए कितना कुछ है. वो कहते हैं जब चूज़ करने के लिए इतना कुछ होता है तो मैं कुछ भी नहीं चूज़ कर पाती. तो इसमें हम डिफ्रेंसिएशन कैसे ला सकते हैं? क्वालिटी पे एम्फेसिस इन ब्रॉडकास्टिंग कैसे आ सकता है?
2: जी, एक शब्द उठा, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है. जाहिर सी बात है, विजुअल पॉडकास्ट तो बहुत बाद में आया. साल 2002 में द गार्जियन के रिपोर्टर थे बेन हैमर्सले, उन्होंने कहा कि आने वाला दशक पॉडकास्टिंग का होगा, क्योंकि उस टाइम पे आईपॉड बहुत फेमस हुआ करते थे. तो आईपॉड पर जो कास्टिंग हुई उसके थ्रू वो पॉडकास्ट फैलता चला गया. साल 2007 में रिकी जार्विस, बहुत बड़े पॉडकास्टर रहे, किसी को अंदाजा नहीं था कि चार साल के भीतर भीतर जो मीडियम अभी अभी आया है वो मीडियम इतना लोकप्रिय हो जाएगा कि 1 मिलियन डाउनलोड हो जाएंगे और आप उसको बाद में सुन सकते हैं. बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा से लेकर तमाम लोगों ने पॉडकास्टिंग शुरू की और लोगों ने उसको दूर तक पहुंचाया. कोविड के समय पर ऑडियो पॉडकास्टिंग बूम पर थी. कोविड के बाद जब रील्स का दौर आया उसमें 50% की गिरावट हुई है, यानी ऑडियो पॉडकास्टिंग धीरे धीरे कम होती चली गई. क्यों? क्योंकि आपका ध्यान धीरे धीरे वीडियो पॉडकास्टिंग पर चला गया, तो आप ऑटोमेटिकली विजुअल मीडियम की तरफ बढ़ चुके हैं. हाँ, जो बात इन्होंने क्वालिटी की कही है, मैं मानता हूँ. दरअसल होता क्या है, जब आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं अचानक से, तो आपका ध्यान समाज की तरफ कम, ऑडियंस की गिरफ्त पकड़ने की तरफ ज़्यादा रहता है. आप अपने एल्गोरिदम को एक ही तरीके से ले जाना चाहते हैं क्योंकि रेंज आपकी बहुत बड़ी हो जाती है. वहाँ पर क्वालिटी गिरती है क्योंकि मुझे व्यूज की अब दरकार है, मुझे कंटेंट नहीं, मुझे इस टाइम क्वालिटी नहीं, मुझे क्वांटिटी चाहिए. जैसे ही आप व्यूज की तरफ जाएंगे आप क्वालिटी से गिर जाएंगे. आकाशवाणी रेडियो ने हमको उच्चारण सिखाया, हमें सिखाया कि क ख ग घ ङ के बाद ख और क और ग भी एक ध्वनि होती है. यहां पर आप बदलते हुए क्षितिज को देखते हो.
1: आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं कंटेंट की, और कंटेंट को कौन ड्राइव करता है, क्या ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट को इन्फ्लुएंस करता है या लोग जो कंटेंट मांगते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं या कंटेंट में. एंड आई ऑलवेज नो दैट दिस इज अ वॉर व्हिच इज इनवेरिएबली देयर. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी?

0: वी गिव व्हाट इज आस्क्ड फॉर और डू वी टेल देम व्हाट यू शुड आस्क फॉर. एंड आई थिंक ये दुविधा रही है. के जी, कमिंग टू यू, टू थिंग्स. वन इज ऑफकोर्स हाउ वी द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी लाइक यू स्पोक अबाउट इन द फोर्स मल्टीप्लायर, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट इन टर्म्स ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेज स्पेशली फॉर द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कि कॉन्टेंट के गार्ड रेल्स कुछ ज्यादा ही हैं. कभी कभी हम मानते हैं कि गार्ड रेल्स हमें बढ़ने नहीं दे रही, हमें एक्सपैंड नहीं करने दे रही, हमारी विजन सीमित रख रही है, बट कभी कभी हमें ये भी लगता है कि ये मेरी टारगेट और गार्ड रेल्स मुझे आगे लेके जा रही है. तो ये बैलेंस कैसे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर मेंटेन करेगा कि हम फिर भी रेलिवेंट रहें.
1: जब मैं रेडियो में प्रोग्राम देके बाहर निकलता हूँ और वो ब्रॉडकास्ट होता है तो मुझे 10 फोन आज भी आते हैं लोगों का कि आपको आज इस विषय पर सुना. ये मुझे किसी और माध्यम में नहीं मिलता है. आई गो टू सेवरल प्लेटफॉर्म्स बट दिस इज़ द वन प्लेटफॉर्म वेयर आई स्टिल रिसीव फीडबैक एंड पीपल टेल मी दैट सर. कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो शाम को ड्राइव कर रहे हैं, मैंने किसी को बताया नहीं होता है और हमने चलते चलते सुना. तो ये रेडियो का चार्म है. रेडियो का चार्म है कि मैं बगैर टीवी में देखे, बगैर मोबाइल को पकड़े, मैं अपना डे टू डे काम करते हुए भी मैं रेडियो के म्यूजिक को, डिस्कशंस को सुन सकता हूँ. दैट इज द चार्म ऑफ द रेडियो दैट स्टिल एंड्योर्स. ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बात कही. क्रेडिबिलिटी ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है, इंडिविजुअल्स के साथ नहीं जुड़ी है. ऑल इंडिया रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ, यस, तो ऑल इंडिया रेडियो की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज भी मेजॉरिटी ब्रॉडकास्टिंग मतलब ऑल इंडिया रेडियो है. ऑल इंडिया रेडियो इज सिनोनिमस विद ब्रॉडकास्टिंग. आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट FM चैनल्स बट रेडियो टुडे इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज द ऑल इंडिया रेडियो, द आकाशवाणी नेटवर्क. एंड हाउ क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी बिकॉज हम सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं, हम सनसनी नहीं फैलाते हैं, हम TRP के रेस में नहीं हैं, हमें जो है माहौल बनाने की जरूरत नहीं है. आज जब मैं रेडियो का बुलेटिन सुनता हूँ तो मुझे पता है कि आज देश में क्या हुआ है, खेलकूद के क्षेत्र में क्या हुआ है, राजनीति में क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हुआ है. आई गेट ए बैलेंस्ड परस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल न्यूज. आई डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद वन न्यूज. आई बिलीव दैट ऑल इंडिया रेडियो में आज भी आप शाम को सुनेंगे तो उसमें पूरे देश भर के समाचार होंगे. लास्ट क्रेडिबिलिटी की बात. हम मन की बात कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है. मन की बात की स्वीकार्यता पर PhDs हुए हैं कि क्या सोशल इंपैक्ट उसका हो रहा. एक प्रोग्राम है जहां लोगों को सुना जाता है, उनके व्यूज को लिया जाता है, उनसे बात किया जाता है और ऐसे ऐसे चीजों के बारे में हमको बताया जाता है जिसके बारे में देश के मुख्य धारा की मीडिया को भी कोई खबर नहीं है कि ऐसा अच्छे काम हो रहे हैं देश में. उसके बारे में स्पेसिफिकली द प्राइम मिनिस्टर रेजेस दोस पॉइंट्स. अब मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग की जो आपने बात कही, मैं ये कहूं कि भाई हमारा तो टेलीफोन का तो मतलब तो लैंडलाइन था तो उसको तो रिटेन करना ही है. हमको इनोवेट करना है. उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने फंडामेंटल्स को छोड़ दें, लेकिन हम डाइवर्सिफाई करेंगे. हम जो है विजुअल मोड में भी जाएंगे, हम जो है सोशल मीडिया में भी जाएंगे, लेकिन हमारा कोर स्ट्रेंथ हमारा ब्रॉडकास्टिंग रहेगा. बट वी विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट विल रिमेन, दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर. बिकॉज टेलीविजन चैनल्स का काम नहीं था वेबसाइट चलाना. क्यों चला रहे हैं? शॉर्ट न्यूज क्यों चला रहे हैं? रील्स के फॉर्मेट में क्यों आ रहे हैं?
2: अखबार भी निकाल रहे हैं
1: क्यों? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आपको टेक्नोलॉजी और वक्त के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना है. दैट डज नॉट इन एनी वे डाइल्यूट योर कोर स्ट्रेंथ. और हमारा कोर स्ट्रेंथ ब्रॉडकास्टिंग है. एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक लास्ट बात मैं कह दूं, आई बिलीव दैट नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू फार्मर्स एंड फिशरमैन एंड ऑल दैट, इस देश के कलाओं को, संस्कृति को संवर्धन करने में आकाशवाणी का एक बहुत बड़ी भूमिका है. इस देश के कलाकारों को तैयार करने में, आज भी कलाकार मुझसे आके मिलते हैं हैबिटेट सेंटर में और मुझसे कहते हैं सर मैं आकाशवाणी ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, मैं ये ग्रेड आर्टिस्ट हूँ. उनका रिकग्निशन है. आकाशवाणी की इतनी बड़ी एक भूमिका है. इट टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी. When it comes to development journalism, sorry to say, none of the private channels are talking about development journalism. Only Prasar Bharati is talking about, and community radios, of course, are an integral part of that.
0: Umesh, I think social interest ho, chai entertainment ho, commercial interest, sustainability of any medium, even sustainability of a channel, a lot depends on kya wo sustainable hai. To ye commerce, social, entertainment, isko balance karna future mein aap kaise dekhte hain?
3: मुझे लगता है कि थोड़ा
2: अपने

0: इतिहास को भी और उसके बेस को भी झांकना चाहिए कि आज जो प्रसार भारती रन कर रही है बीजी बर्गीज कमेटी की सिफारिशों से रन कर रही है। जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को जो होना चाहिए उसको अपनी परंपरा की पूंजी की बुनियाद पर, अपने संस्कृति की पूंजी की बुनियाद पर आगे बढ़ना होगा और उस पहचान को बनाए रखना होगा। और कमर्शियलाइजेशन की आप जो बात कर रही हैं, वो कमर्शियलाइज प्रसारक और सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका में कुछ तो अंतर होगा ही, वो उस तरह से बाजार के हवाले नहीं हो सकता। आपको मैं बता दूं, चुनाव की गिनती होती थी ना, तो जो फाइनल ब्रॉडकास्ट करने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए और भरोसा करने के लिए हम सब लोग रेडियो की कमेंट्री सुनते थे और अपने एक इनपुट डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी लगा के रखते थे कि भैया जरा रेडियो से टैली करते रहो। क्यों? क्योंकि रेडियो ने उसने डूज और डोंट का एक बहुत क्लियर वो बना के रखा। मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत स्पष्ट है कि जब तक हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करते हैं तो हम कोई खबर नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है जो आपने कहा, प्रसार भारती या रेडियो प्रसारण जो है, जो यहाँ चर्चा चली, तो मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि हमारी पहचान हमारे मूल ऑडियो मीडियम के ही रूप में है और बनी रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, रेडियो अगर विजुअल हो रहा है तो विकास के साथ कदम ताल कर रहा है और तकनीक जो है ना आपको अपनी पुरानी पहचान में बांधने नहीं देती। वो आप एडाप्ट करें चाहे ना करें, वो आपको एडाप्ट करने के लिए मजबूर करती है। मुझे लगता है रेडियो प्रसारण के साथ भी वही बात है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना अपना परसेप्शन सिर्फ थ्रो करते रहेंगे।
1: एक सुंदर शब्द पे आपने इस कार्यक्रम को एक आई थिंक अंतिम पड़ाव पे ले आए हैं, परसेप्शन। और वही शब्द है जिससे हमने शुरुआत की थी, हमने व्यूइंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू की बात की थी। एंड मेनी ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस आर कनेक्टेड टू ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक काफी सारे तार अंदर भी खनके होंगे, है ना, सितार बजा होगा। लाइक टू इनवाइट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस।
2: जी, मेरा नाम कीर्ति बैद है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ आकाशवाणी के प्रसारण कर्मियों पर। तो आकाशवाणी का जो आर्काइव है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बात करें।
1: सो मैं ये सवाल अपने सारे एक्सपर्ट्स को देती हूँ, एंड कौन बात करना चाहेगा?
0: आकाशवाणी का बहुत ही समृद्ध आर्काइव है। रेडियो ने खासतौर पर शास्त्रीय संगीत को निष्ठा से संरक्षित किया है और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी थाती है। ना सिर्फ आकाशवाणी की यह थाती है, ना सिर्फ यह प्रसार भारती की है, बल्कि यह भारत की थाती है। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहूँगा, आपको संविधान सभा की पूरी डिबेट्स मिल जाएगी यहाँ। और जिन आवाज़ों की पहचान की हम बात करते हैं, उन पहचान को भी अगर आपको ढूंढना है, खोजना है, तो आर्काइव में जा सकते हैं। और एक बात और है कि आर्काइव का अपना यूट्यूब एक अलग से चैनल भी है, आप उसमें अद्भुत अद्भुत इंटरव्यू भी सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल। आई थिंक वी विल क्लोज द प्रोग्राम हियर। अर्चना, अंजुम, उमेश, केजी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम।
3: प्रसारण का बदलता क्षितिज। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये विशेष वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर केजी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और संपादक अंजुम शर्मा और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही थीं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल, प्रस्तुति सहयोग जय सिंह और प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: So that was Blue and Sentimental with Count Basie on that gentle piano, Freddie Green on guitar, Walter Page on that double bass, and Joe Jones on drums. What makes this jazz standard so special is the chemistry between the musicians. No instrument is trying to outshine another. The piano quietly sets the mood, rhythm section gives the track its gentle groove, and Lester Young on that saxophone effortlessly just floats above it all, capturing that late night melancholy, and that's what makes this track oh so blue and oh so sentimental. Well, it's time for a short break, but we'll be back with all that jazz, only on Akashwani Rainbow 102.6 MHz.
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
0: वेलकम बैक टू ऑल दैट जैज़। अप नेक्स्ट वी हैव अ पीस दैट फील्स लाइक अ क्वाइट कॉन्वर्सेशन यू हैव विद योरसेल्फ एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे, टेंडर, इंटिमेट एंड ब्यूटिफुली अंडरस्टेटेड। हियर्स इट नेवर एंटर्ड माय माइंड by Miles Davis Quintet.

0: That was "On a Clear Day You Can See Forever" by Frank Sinatra. Originally written by Alan J. Lerner and Burton Lane in 1965, but the song got more attention once Sinatra recorded his rendition for his hit album Strangers in the Night. This is one of Sinatra's more laid-back performances, not too flashy, but with a whole lot of heart and his effortless charm, as you can imagine, coming through in these lyrics. The track is empowering and is a reminder that each one of us has the potential to become the best versions of ourselves and recognize our limitless potential on a clear day. Well, it's time for another short break, but the journey of great jazz music is only getting started. You're listening to All That Jazz.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: की बात है जन जन

0: की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Welcome back to All That Jazz. Some songs turn heartbreak into tragedy. Others find beauty in accepting it. And this next track does it with grace like no other. So warm and inviting. Here's one of the greatest saxophonists of all time, Charlie Parker, with Everything Happens With Me.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
4: इट्स फनी हाउ द स्वीटेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइव्स आर ऑफन द फ्लीटिंग वंस, बिकॉज वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम ऑल द जैज़। Thank you for joining us at this hour. We hope you had a wonderful time as much as we had playing these tracks for you. Dear listeners, we started our program with the song Blue and Sentimental by Count Basie, and we are finally ending it with an acclaimed composition by the legendary jazz guitarist Wes Montgomery with the song No Blues. So, here's your host, Shubhankar, signing off for the night, wishing you blue skies and golden sunshine all along your way, and leaving you with no blues.

और पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि स्थगित रहेगी। भारत ने 350 किलो के थ्रस्टर श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान ने विकसित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड महामारी के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर के परिजनों को वर्षों से लंबित 1 करोड़ रूपये की सहायता राशि प्रदान की। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज रात ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। और भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

प्रोग्राम चल रहा रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। बगैर तेरे गली बेजान सी लगती है, रात होते पूरी सुनसान हो जाती है। बगैर तेरे गली बेजान सी लगती है, रात होते पूरी सुनसान हो जाती है। इसलिए सन्नाटा देख कर लौट आए हैं, जब से नजरअंदाज हमें किया तुमने, बदलते हालात से दिल लगा लिया मैंने, जान कर इरादा तेरा लौट आए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी खूबसूरत अल्फाजों के साथ कुछ ऐसी आवाज़ें जिन्होंने इन अल्फाजों को एक तरीके से जिंदा कर दिया। खूबसूरत गजलों के साथ 11 बजे तक हम और आप साथ, और फिलहाल ही खूबसूरत गजल आपके लिए जगशेर साहब की आवाज़ में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एक ही ख्वाब ने सारी रात जगाया है, एक ही ख्वाब ने सारी रात जगाया है। मैंने हर करवट सोने की कोशिश की।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

प्रोग्राम चल रहा रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। खुली किताब के सफहे उलटते रहते हैं, खुली किताब के सफहे उलटते रहते हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

थम कर रह जाती है जिंदगी, थम कर रह जाती है जिंदगी, जब जम कर बरसती हैं पुरानी यादें।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

11 बजे हैं, प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सरकार ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि सीमा पर आतंकवाद समाप्त होने तक संधि स्थगित रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। भारत ने 350 किलो के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजल बेल टर्बो जेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टाइबन अनुसंधान प्रतिष्ठान ने विकसित किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज रात ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है और भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 12:02:50 हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जीरो आवर शो लेकर हाजिर हूं मैं सिम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। सरकार ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखापेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि स्थगित रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। भारत ने 350 किलो के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान ने विकसित किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज रात ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। और भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते

सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

की शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसो और डैन के बीच बुखापेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। भारत ने 350 किलो के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ हो गया है और भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे और 7 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और लीजिए अब समय है भुलाए ना बने कार्यक्रम का, लीजिए सुनते हैं।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
7: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज़ ऑन एयर ऐप।

0: चलिका, ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं। मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते हैं।
1: तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है।
0: अब बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ।
1: कल रात मैंने एक सपना देखा था।
0: सपना? कैसा सपना?
1: चारों तरफ आग ही आग है, धुएं के बादल, मशीन गनों की धार धार, टैंकों की घरघराहट, भयानक जंग हो रही। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठ जाता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, जूम आसमान में 300, 400, 700 की रफ्तार होते ही नीचे दुश्मनों का एयरपोर्ट नजर आता है। धड़म धड़म धड़म, 3 बॉम्ब जाके निशाने पे गिरते हैं, एयरपोर्ट साफ।
0: उसके बाद?
1: उसके बाद एक धड़ाम से आवाज आती है, मेरा प्लेन हिल उठता है। पीछे देखता हूँ तो आधा प्लेन गायब, नीचे देखता हूँ तो होश गायब। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, आंखें बंद करके धड़ाम से नीचे कूद पड़ता हूँ, और जब आंख खुलती है अपने आप को एक अनजाने से शहर में एक अनजाने घर के सामने पाता हूँ। दरवाजा खुलता, एक खूबसूरत सी लड़की मुझ पर एक बाल्टी ठंडे पानी की डाल देती, आंख खुल जाती।
0: शुक्र है आंख खुली तो सही, मैं तो डर रही थी कि आपका सपना शायद खत्म ही नहीं होगा।
1: खत्म? अब तो शुरू हुआ है मेरा सपना।
0: अरुण बाबू, मैंने आपके हाथ में दवा लगाकर पट्टी बांध दी है, अब आप।
1: पट्टी? आपने गलत हाथ में बांध दी।
0: गलत?
1: जानती हूँ ये क्या हो गया वंदना
0: जी,
1: तुम मेरे सपने में खो गई थी। सच होगा मेरा सपना?
0: मुझे क्या मालूम।
1: तो फिर किसे मालूम?
0: बाबा को।

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं।

ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर कल मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से

का रेड अलर्ट जारी किया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ हो गया है और भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सिया राम की, और जय हो बंबई धाम की।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

प्रातः के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर कल मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: प्रातः के 4:03 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रोग्राम सारे गामा।

0: सी तेरी बोली,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

हाथ का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।

प्रातः के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर कल मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज रात केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का घोषणा की। भारत ने 350 किलो के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया और भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: हमारी वाणी आकाशवाणी।
1: प्रातः के 5:03 हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम आराधना।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।